सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर

केंद्र से बोल रहे हैं। आज दिन बुधवार, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 मई सन 2026। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:55 और 45 सेकंड्स हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी गोरखपुर है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचार अब से कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय

0: संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तोलाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी गोरखपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आपसे प्रार्थना है भगवान मेरे, मन कर्म और वचन से कभी किसी को भी थोड़ा सा दुख ना पहुंचे मुझसे। मैं कभी ना पाप करूं, ना होता देखूं, ना सुनूं और ना ही कभी किसी के पाप का बखान करूं। ऐसी कृपा, ऐसे उपकार मेरे पर कीजिए।

हे ईश्वर, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपका साथ न छूटे, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, आपके मंगलमय विधान देख सदैव प्रसन्न रहे हम सब, ऐसी चाहत रखती हूँ।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: पार्टी का कहना है कि उसके लीडर जोसेफ विजय आज गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात करके रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए पार्टी का दावा पेश करेंगे। टीवीके को रियासती असेंबली में अक्सरियत हासिल करने के लिए मजीद 10 अरकान असेंबली की हिमायत की ज़रूरत है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी तहकीकती एजेंसी NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म अवामी मकामात पर लोगों को एक बायोलॉजिकल जहर देने की ISIS की एक साजिश में इन लोगों के मुलव्वस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। हैदराबाद में मुकीम डॉक्टर सैयद अहमद मुहीउद्दीन और उत्तर प्रदेश के साथी मुलजिम आज़ाद और मोहम्मद सुहेल को गुजरात के शहर अहमदाबाद में NIA की एक खसूसी अदालत के सामने ये फर्द जुर्म पेश की गई है। मुलजमीन ने दौलत इस्लामिया से वाबस्ता बैरून मुल्क मुकीम अपने आकाओं की हिदायत में काम करते हुए अपने आकाओं की तरफ से कमज़ोर नौजवानों को इंतहा पसंद बनाकर भर्ती करने के लिए उनसे मिलजुल कर काम किया था ताकि जिहाद में मदद दी जा सके और ममनुआ हथियारों नीज बायो टेररिज्म के जरिए दहशत फैलाई जा सके। उन्होंने एक इंतहाई जहरीले मादे रिसिन या अरंड के इस्तेमाल की मनसूबाबंदी की थी जिसे कीमियावी हथियारों के कन्वेंशन की पहली फहरिस्त में शामिल किया गया है। इन लोगों का मकसद ISIS के इन नफरत अंगेज एजेंडे को आगे बढ़ाना था। यह केस इब्तदाई तौर पर चीन के एक MBBS डॉक्टर मुहीउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने दर्ज किया था। मुहीउद्दीन गैर कानूनी हथियार एक टोल प्लाजा से गुजारते हुए पकड़ा गया था। उसके पास से नवंबर 2025 को अरंड के 4 लीटर तेल पर मुश्तमिल एक बोतल और मुजरिमाना नौयत की कुछ दीगर चीज़ें बरामद की गई थीं। ATS ने तफ्तीश के बाद उसी दिन मजीद 2 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया था। पंजाब में कल शाम जालंधर में सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स के सख्त हिफाजती इंतजाम वाले मरकजी दरवाजे के करीब एक धमाका होने से इलाके में खौफ व हिरास और तश्वीश पैदा हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ऑनलाइन सामान डिलीवरी कंपनी में काम करने वाला एक डिलीवरी बॉय BSF एहलकारों को पार्सल पहुंचाने आया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाज़ों की रहनुमाई करने वाला एक मिशन है कुछ वक्फे के लिए रोका जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि महाजराई को ख़त्म करने के लिए ईरान के नुमाइंदों के साथ एक जामे मुआहदा किए जाने की तरफ बड़ी पेशरफ हुई है। उन्होंने वजाहत की कि हालिया फौजी कार्रवाई और सिफारती बातचीत की पेशरफ की रोशनी में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक मुख्तसर वक्फे के लिए आबनाए हुरमुज में जहाज़ों की इस कार्रवाई को रोकने का एक बाहमी फैसला किया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस वक्फे से इस बात पर गौर वखोज करने का वक्त मिल जाएगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक कतई मुआहदा किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने यह ऐलान वजीर खारजा मार्को रूबियो की तरफ से ये कहे जाने के बाद किया है कि ईरान में अमरीका इसराइल के इब्तदाई हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इस कार्रवाई के मकासद हासिल हो जाने के बाद ख़त्म कर दिए गए हैं। इतवार को ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक ने अमरीकी मदद के लिए दरख्वास्त की थी कि उनके जहाज़ों को लड़ाई में फंसे हुए जहाज़ों को बहिफाजत निकाल लिया जाए। IPL क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के नॉट आउट 87 रन और कार्तिक शर्मा के 41 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए दरकार 156 रन के लिए खेलते हुए नई चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 ओवर्स और 3 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर जीत का हदफ हासिल कर लिया। संजू सैमसन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज बिहार और मगरबी बंगाल के गंगा की तराई वाले इलाके में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि इन खित्तों में कल तक 60 किलोमीटर फी घंटे तक की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमे ने यह भी बताया है कि आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और सिक्किम में भी शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में इतवार तक मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है। इस दौरान महकमे ने मगरबी राजस्थान में हफ्ते से पहर तक इक्का दुक्का मकामात पर शदीद गर्मी पड़ने की भी पेशगोई की है। ये थी खबरें اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔
1: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے روزنامہ انقلاب، پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس کے علاوہ دیگر اخبارات نے بھی وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے متحدہ عرب امارات پر حملے کی سخت مذمت کیے جانے کی خبر کو اپنے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ بھارت اور جاپان کا صحت کے شعبے میں تعاون کو مضبوط کرنے پر زور، اس خبر کو ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے اپنے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ بی جے پی صدر نتن نبین کے اس بیان کو بھی آج کے اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی مغربی بنگال اور آسام سمیت پورے ملک کو ترقی دیں گے۔ بی جے پی نے امت شاہ کو مغربی بنگال اور جے پی نڈا کو آسام کا مبصر مقرر کیا ہے۔ اس خبر کو تقریباً سبھی اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں ویتنام کے صدر تو لام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال کے چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اور مرکزی مسلح پولیس دستوں سے کہا ہے کہ وہ چناؤ کے بعد کے تشدد کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا اصول لاگو کریں۔ انتخابی کمیشن نے انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد مغربی بنگال، آسام، کیرلم، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں نئی اسمبلیوں کی تشکیل کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ این آئی اے نے آئی ایس آئی ایس کے رابطے والی بائیو ٹیرر سازش میں ایک ڈاکٹر اور دو دیگر کو بڑے پیمانے پر لوگوں کو زہر دینے کے الزام میں ماخوذ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم، جو آب نائی ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، اسے مختصر وقفے کے لیے روکا جائے گا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے دہلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, हिट सुपर हिट कार्यक्रम में फिल्म झुक गया आसमान से कार्यक्रम का आगाज़ हुआ। इस गाने को आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी। कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है नाइट इन लंदन, इस फिल्म से गीतकार आनंद बख्शी, गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और मखमली आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आ रहा है, शंकर जयकिशन का संगीत दिया हुआ है, लिखा है शैलेंद्र ने और फिल्म का नाम है

0: संगीत के बोल चश्मे बदूर हसरत जयपुरी ने लिखे थे श्रोताओं, और संगीत दिया था जय किशन ने। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, और फिल्म थी 1961 में आई फिल्म ससुराल। इसी के साथ हिट सुपर हिट ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। ज़िले की हलचल के लिए आइए चलते हैं लखनऊ स्टूडियो।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए बलरामपुर और देवरिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का।
3: जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा योजनाओं का लगातार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा है जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के ग्राम मुड़ेवा एवं मोतीपुर खुर्द का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान, दस्तक अभियान, टीकाकरण, पेंशन योजनाओं से संतृप्तिकरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दिए जा रहे लाभ की हकीकत का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने ग्राम मुड़ेवा मोतीपुर खुर्द में घर घर जाकर ग्रामीणों से संवाद किया तथा अभिभावकों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों का विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे तथा अभियान के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे का नामांकन अनिवार्य रूप से कराया जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करें। जनपद बलराम में विकास एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ला द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के ग्राम चौका कला एवं माधोपुर में राप्ती नदी के कटान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित कटान निरोधक परियोजना का शुभारंभ भूमि पूजन कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तटवर्ती एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनपद में कटान एवं बाढ़ से बचाव कई प्रभावी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जनपद बलरामपुर में महिलाओं द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल के ना पास होने पर विरोध में महिला जन आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने संबोधित किया। महिलाओं द्वारा विरोध पग यात्रा निकाल कर किया गया एवं विपक्ष का पुतला भी फूंका गया। महिलाओं ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का जो लोग विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में महिलाएं उनको इसका करारा जवाब देंगी। 27 अप्रैल को सम्मेलन पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता को कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने संबोधित करते हुए सपा एवं कांग्रेस को महिलाओं को आगे न बढ़ने देने की बात कही। उन्होंने कहा
4: ये लोग नहीं चाहते कि हमारी माँ बहने विधानसभा और लोकसभा में जा करके जो तमाम तरह के नियम कानून बनते उनमें हिस्सेदारी इन महिलाओं को मिले।
3: जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में संचालित प्रमुख विकास परियोजनाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा बलरामपुर बाईपास, तुलसीपुर में आरओबी निर्माण, जिला चिकित्सालय में 100 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट, नगर पालिका में एसटीपी निर्माण, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, प्रोजेक्ट संवर्धन, थारू गांव में विद्युतीकरण एवं संपर्क मार्ग, बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना तथा अन्य विभागों के क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। जनपद बलरामपुर के समस्त विकास खंडों में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग, चिन्हांकन, शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, दुकान संचालन योजना और शल्य चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मौके पर ही आवेदन और आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने अपील की है कि सभी पात्र दिव्यांगजन अपने साथ अनिवार्य दस्तावेज जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा नवीनतम फोटो लेकर शिविर में अवश्य पहुँचे। समस्त ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके। जनपद बलरामपुर पुलिस साइबर सेल CEIR टीम द्वारा 144 गुमशुदा स्मार्टफोन अनुमानित कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए बरामद किया गया। बरामद शुदा स्मार्टफोन को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल लौटाए जाने के दौरान उपस्थित नागरिकों ने बलरामपुर पुलिस विशेषकर साइबर सेल थानों पर गठित की गई साइबर टीम की प्रशंसा की। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा,
5: ये सभी ऐसे मोबाइल हैं जो कि खो गए थे, जिनका गुमशुदगी CIR पोर्टल पे या थाने पर पंजीकृत कराया गया था, उसको पुलिस ने खोजा है। बलरामपुर पुलिस इस कार्य के माध्यम से ये सूचित करना चाहती है, बलरामपुर की पूरी जनता के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: जनपद बलरामपुर में पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के अंतर्गत देवीपाटन मंडल के जनपद बलरामपुर की विभिन्न विधानसभाओं में पर्यटन विकास की 7 परियोजनाओं के लिए 786 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से विभिन्न विधानसभाओं में धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं उनके आसपास बुनियादी सुविधाओं सुलभ कराई जाएगी। इस कार्य के लिए UPSTDDC को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यों गुणवत्ता और समय के साथ पूरा करें। इसका मुख्य उद्देश्य अल्प ज्ञात धार्मिक स्थलों में सुधार कर वहां बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराकर श्रद्धालुओं को आकर्षित करना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा श्रद्धालुओं को आस्था स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी।
2: बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश शर्मा का।
6: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण एवं बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर साक्षी दुबे को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिलाओं व बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना हमारा उद्देश्य है, जिसके क्रम में साक्षी ने विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनके कार्यों की जानकारी भी प्राप्त किया।
7: मुझे बहुत गर्व हो रहा है बताते हुए कि केवल 10वीं की वो छात्रा है, उसने बहुत ही धैर्य से बहुत ही अच्छे से सब लोगों की सुनवाई करी और उसने अच्छे निर्णय भी लिए।
6: जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिले में 7 से 21 मई तक स्वगणना अभियान संचालित किया जाएगा। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक घर घर सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा। जिलाधिकारी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश देते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वगणना के तहत नागरिक ऑनलाइन पोर्टल या QR कोड के माध्यम से स्वयं अपने वो अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने उन मेधावियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आगामी समय में आने वाले बाढ़ की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की एक बैठक कर बाढ़ निरोधी कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आपदा राहत सहित अन्य सभी आवश्यक सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखें। उन्होंने बिजली, पेयजल, भूसा, चोकर, गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण, राहत सामग्री आदि के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए चेताया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने बाढ़ तटबंधों की सतत निगरानी रखने, नाव नाविक गोताखोरों का भी चिन्हांकन करने का निर्देश देते हुए कहा कि राहत शिविरों व बाढ़ नियंत्रण कक्षों को तत्काल प्रभाव से सक्रिय किया जाए। शासन के निर्देश पर सुरक्षित बचपन योजना के तहत जिला कारागार में गठित संयुक्त निगरानी समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला कारागार में महिला बंदियों के साथ निरुद्ध 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास व संरक्षण को सुनिश्चित किया गया। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने EBM वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने EBM व VVPAT को सुरक्षित रखने से संबंधित सभी सुरक्षात्मक बिंदुओं की गहनता से पड़ताल किया। विगत दिनों जिले के पथरदेवा विकास खंड के मलगोट बिरेचा गाँव में जिलाधिकारी द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा उसका त्वरित निस्तारण करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया। ग्राम चौपाल के दौरान जिलाधिकारी ने गोद भराई व अन्न प्राशन संस्कार भी कराया। तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश होमगार्ड एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा का आयोजन जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। यह परीक्षा दो पालियों में संपन्न हुई। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर गुणवत्ता व पारदर्शी पूर्वक परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिए। जिले में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अपर निदेशक गोरखपुर मंडल डॉक्टर जयंत कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपर निदेशक ने कहा कि यह प्रचार वाहन गांव गांव गली गली जाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जागरूक करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी CHO ANM आशा वर्कर अपने अपने कार्य क्षेत्र के तहत आने वाले गांव में शिविर लगाकर पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जिले के चौतरफा विकास की बात कही गई। साथ ही यह भी कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे कि जिले का चौतरफा विकास हो सके। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने का भी स्पष्ट निर्देश दिया गया। बंगाल, असम व पांडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर जिले में भाजपाइयों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दिया। इस दौरान सदस्य सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि बंगाल की जनता ने तुष्टिकरण को नकार कर विकास व राष्ट्रवाद को चुना है। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनके प्रति जनता के विश्वास की जीत है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: ये आकाशवाणी गोरखपुर है, आइए सुनते हैं देश गान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गोरखपुर से देश कान। उर्दू कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से अब से कुछ ही देर में।

श्रोताओं, इस गीत को अल्फाज और आवाज़ दी थी अभिजीत ने, और साथ में प्रभाती मुखर्जी की आवाज़ थी। और अब आइए अख्तर ज़ियाई का एक शेर अर्ज करती हूँ कि जा रहे या ना रहे नाम रहे, जा रहे या ना रहे नाम रहे, साथियों रस्म जुनू आम रहे।

शाहीन इकबाल का लिखा गीत था आवाज़ अभिजीत की। गमजदा जिंदगी रही ना रही, गमजदा जिंदगी रही ना रही, खुश रहे हम यही ख्वाहिश रही। श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। आज का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में मैंने यानी श्वेता ने पेश किया। आकाशवाणी गोरखपुर से ये कार्यक्रम प्रसारित किया गया। सुबह के 10 बजे हैं, समय है समाचारों का, जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ आया है। इस वर्ष अप्रैल में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति तो लैम की ये भारत की पहली राजकीय यात्रा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे।

0: मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान, और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: पश्चिम में शपथ ग्रहण समारोह 9 को होने की संभावना, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और रेलवे परियोजनाओं को कहा कि इन परियोजनाओं से क्षमता में सुधार। इसके साथ ही देश के बुनियादी और सुधार होगा। इसके साथ ही देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल कर सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मुहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। IPL क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का प्रोग्राम गाते गुनगुनाते अब से कुछ ही देर में।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

श्रोताओं, फिल्म डॉन 2 से कार्यक्रम का आगाज हुआ है आवाज अलीशा चिनॉय, महालक्ष्मी और सोनू निगम की। म्यूजिक शंकर एहसान लॉय और इस गाने को लिखा है जावेद अख्तर ने।

एयरलिफ्ट फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना। कार्यक्रम का अगला गाना आ रहा है भाग जॉनी फिल्म से। श्रोताओं, इस गाने को आवाज़ दी है अंकित तिवारी ने और इस गीत को लिखा है आरको और साजिद वाजिद ने, माफ़ कीजिएगा, आरको और फैज़ अनवर ने, और संगीत दिया आरको और साजिद वाजिद ने।

भाग जॉनी फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना। अगला गाना आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह, हमसिका और जॉय की आवाज़ में फिल्म एजेंट विनोद से। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिसिस्ट हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

एजेंट विनोद, इस फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना। श्रोताओं, अगला ट्रैक है ब्लफ मास्टर फिल्म से। इसे आवाज़ दी है अभिषेक बच्चन, सुनिधि चौहान ने। म्यूजिक और लिरिसिस्ट हैं विशाल शेखर।

ब्लफ मास्टर फिल्म से भी आपने ये गाना सुना। अगला ट्रैक आ रहा है बेशर्म फिल्म से आपकी रेडियो सेट पर। म्यूजिक कुमार का है, लिरिसिस्ट हैं ललित सेन और आवाज़ अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की।

बेशर्म फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना, और श्रोताओं अब आ रहा है ग्रूवी ट्रैक कॉकटेल फिल्म से। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने, लिरिसिस्ट हैं अमिताभ भट्टाचार्य, और आवाज़ है नेहा कक्कड़, पूजा और नखास अजीज़ की।

कॉकटेल फिल्म से ये सॉन्ग था। श्रोताओं, प्रोग्राम गाते गुनगुनाते आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से। अगला सॉफ्ट ब्रीजी ट्रैक है चांदनी चौक टू चाइना इस फिल्म से। इस गाने को आवाज़ दी है शंकर एहसान लॉय, शंकर महादेवन ने, श्रेया घोषाल ने, लिरिसिस्ट हैं रजत अरोरा, म्यूजिक डायरेक्टर हैं शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, 2011 में आई फिल्म गेम से भी आपने ये ट्रैक सुना, जिसे आवाज़ दी थी श्रेया घोषाल, क्षितिज वाघ ने, गाने के बोल थे जावेद अख्तर के और म्यूज़िक था शंकर एहसान लॉय का।

एक था टाइगर, इस फिल्म से भी आपने ये ट्रैक सुना। सिंगर थे वाजिद खान, श्रेया घोषाल, लिरिक्स थे कौसर मुनीर के और म्यूजिक दिया था साजिद वाजिद ने। और अब आइए सुनते हैं गुंडे फिल्म से ये ट्रैक।

विशाल ददलानी, नीति मोहन, के बप्पी लहड़ी, इन सब की आवाज़ में अभी आपने गुंडे फिल्म से ये गाना सुना। म्यूजिक था सोहेल सेन का और लिरिसिस्ट थे इरशाद कामिल। श्रोताओं, कार्यक्रम का लास्ट सॉन्ग आ रहा है सुनिधि चौहान और सहेल हारा की आवाज़ में, गुजारिश फिल्म से।

गुजारिश फिल्म के इस गाने के साथ गाते गुनगुनाते ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले वियतनाम के राष्ट्रपति का आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जारी होने से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है।

0: इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और भाजपा के पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को पुदुचेरी में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करने वाली रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। पंजाब और अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग बस कुछ ही क्षणों में।
2: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
3: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
2: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: लोक रंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं राम ज्ञान व साथी कलाकारों को, और वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में अभी आप सुन रहे थे राम ज्ञान व साथी कलाकारों को। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

बचना ए हसीनो फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे के और शिल्पा राव की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म राज रिबूट से, आवाज़ अरिजीत सिंह की।

नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना,

कॉन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

हमारी अधूरी कहानी इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे पापोन की आवाज़ में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म उंगली से गुलराज सिंह की आवाज़ में।

0: गुलराज सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे उंगली फिल्म से ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं समाप्त होता है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
3: और मैं हूं आपका साथी अजीत। नमस्कार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई और माध्यम नहीं है जिसने मानवता और पूरे विश्व का उपकार किया है। अच्छी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में मानवता सिखाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। श्रोताओं, इस संदर्भ में मुझे महान भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन याद आता है। उन्होंने कहा था,
2: शिक्षा केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है, लेकिन ये मन और मस्तिष्क को नवाचारी ढंग से सोचने के लिए विकसित करना है।
3: जी, तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: उपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
3: और संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी एवं अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में सुश्रुत के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ यमुना नदी के उद्गम और बकरवाल

0: जनजाति के जीवन पर दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की हमें आपसे अपेक्षा है।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की।
1: कल हमने बुनियादी जानकारी ली थी सागर और महासागर की, और इनके बीच के अंतर को जाना था। आज जानेंगे एक और रोचक बात। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को बताइए ना कि वो रोचक बात क्या है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे।
0: विमलेश जी, बहुत पहले इसी कार्यक्रम में मैंने अपना संस्मरण बताया था, आपको याद होगा
1: जी।
0: और वो ये था कि जब मैं पहली बार चेन्नई के समुद्री तट मरीना बीच पर गया था तो समुद्र की विशालता को देखकर मैं चकित रह गया था। लेकिन आपको याद तो जरूर होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था सबसे पहले।
1: अजीत जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने सबसे पहले समुद्र के पानी को चखा था।
0: जी, आपको बिल्कुल याद है, पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ा था कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया था।
1: तो फिर क्यों ना आज चर्चा की जाए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है।
0: अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली विमलेश जी। तो फिर आइए सबसे पहले जाने कि शुरुआत कहाँ से होती है।
1: शुरुआत होती है वर्षा से। वर्षा का पानी जब धरती पर गिरता है, ये पानी मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है।
0: जी,
1: मिट्टी और चट्टानों में कई प्रकार के खनिज होते हैं जो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। मुख्य खनिज है सोडियम क्लोराइड।
0: जी जी नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड ही तो है।
1: बिल्कुल। फिर होता यह है कि वर्षा का जल या भूमिगत झरनों का जल बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियाँ इन घुले हुए खनिजों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। सैकड़ों नदियाँ यदि अपवाद छोड़ दें तो समुद्र में ही मिलती हैं।
0: तो फिर इस तरह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक समुद्र में जमा होता रहता है।
1: बिल्कुल।
0: अब विमलेश जी, हम बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कोई एक दो दिनों की तो होती नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है ना।
1: जी अजीत जी, फिर तो जाहिर है कि लाखों करोड़ों वर्षों में नदियों ने कितना नमक समुद्र में जमा कर दिया होगा। चलिए अब एक दूसरे आयाम को समझते हैं। दूसरा आयाम है वाष्पीकरण।
0: तो दूसरे आयाम को जरा आप ही विस्तार से समझाइए।
1: जी जरूर। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक नहीं उड़ता, नमक वहीं रह जाता है। एक उदाहरण देती हूँ।
0: जी,
1: यदि आप किसी बर्तन के पानी में नमक घोलकर उस पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक वहीं रह जाएगा। यही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है।
0: विमलेश जी, श्रोताओं को बता दें कि एक और भी बहुत बड़ा कारण है
1: जी,
0: समुद्र के पानी के खारा होने का,
1: बताइए।
0: और वो ये है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और पानी के अन्य स्रोत भी तो होते हैं
1: जी
0: जो पानी में नमक मिलाते हैं। यानी नमक सिर्फ नदियों से ही नहीं लेकिन समुद्र के अंदर से भी आता है।
1: जी, ये बात तो है, लेकिन अजीत जी मेरे मन में एक और प्रश्न है। वो ये है कि इस प्रकार तो नमक बढ़ता ही रहेगा, फिर पानी कहाँ बचेगा? वो तो नमक का गाढ़ा घोल बन जाएगा। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ।
0: वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने विमलेश जी, यही तो कमाल है प्रकृति का। दरअसल होता यह है कि कुछ नमक समुद्री जीव उपयोग कर लेते हैं जैसे कोरल, और कुछ नमक समुद्र की तलहटी में ही रह जाता है।
1: जी,
0: तभी तो समुद्र में नमक की मात्रा में संतुलन बना रहता है।
1: जी सचमुच अद्भुत है प्रकृति। इस संतुलन को आंकड़ों में ऐसे समझना चाहिए कि औसतन समुद्र के पानी में 3.5% नमक होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी।
1: जी
0: तो श्रोताओ, अब ये भी जानिए, श्रृंखला में आज की चर्चा हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से एक बंदर की मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है, और विशेषकर कूड़े के समुचित निपटान की चर्चा की गई है।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of gram.

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: राग देसी।
1: राग रस पर से श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में राग देसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग देसी की व्युत्पत्ति, थाट, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में।

राग देसी। राग देसी की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद अर्थात कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी-कभी इसमें कोमल धैवत अर्थात कोमल ध का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके आरोह में गंधार और धैवत यानी ग और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग देसी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग देसी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका की स्थाई

राग देसी की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, आजादी का ध्वज लहराया। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने, बस कुछ ही क्षणों में।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details, log on to www.ddindia.com।
7: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
8: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
7: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
8: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
7: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
8: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: गाने सुहाने कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाज़ में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से ये गीत। इस रोमांटिक गाने का संगीत विशाल शेखर ने दिया है और इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म खामोशियां से, स्वर अरिजीत सिंह का।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से ये गीत। अगला गीत है फिल्म छिछोरे से।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे मेजर राफ फिल्म से ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं, इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
1: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 870-001-4242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिजीत को। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पूरी दुनिया को एक ख़ानदान के तौर पर जोड़ने का जज्बा हिंदुस्तानी सकाफत में शामिल है, लेकिन हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी पर हमला करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजिक और अंदरूनी ताकत में इजाफा नहीं कर रहा, बल्कि तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि कोई हमारी सकाफत को मजबूरी न समझे।
1: आज हम अपनी सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, अपितु इसलिए कि हमारी उदारता को कोई हमारी व्यवस्था न समझ। राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक भी होता है।
0: 4 मई को शुरू होने वाले इस प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया था, जबकि कल इस प्रोग्राम में वज़ीर मुमलकत बराए दिफा संजय सेठ शामिल हुए। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सेहरा दिफाई अफवाज की बेमिसाल हिम्मत और अज़्म को करार दिया, जिसे मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद तरीन हथियारों और निज़ामों से मजीद तकवीत मिली। इससे कबल वज़ीर आला अपने एक रोज़ा दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में शिरकत की और बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल मुफाद आमा में कई अहम फैसले लिए। काबीना ने मुल्क में कपास के शोबे में रुकावटों, गिरती हुई तरक्की और मियार के खदशात को दूर करने के लिए 5,600 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ कपास की पैदावारी मशीन को मंजूरी दी। नई दिल्ली में काबीना की मीटिंग के बाद इतलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने की मुनासिब और मुआवजे कीमत 365 फी क्विंटल मुकर्रर की गई है। काबीना ने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के 5वें मरहले को भी मंजूरी दी। इस स्कीम के तहत छोटी, बहुत छोटी, दरमियाना सनतों को 100% लोन गारंटी फराहम की जाएगी, जबकि नॉन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजर और एयरलाइन सेक्टर को 90% गारंटी फराहम की जाएगी। इत्तला और नशियात के वजीर जनाब वैष्णव ने बताया कि काबीना ने सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद तरमीमी बिल 2026 को पार्लियामेंट में पेश करने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी है। काबीना ने नागदा मथुरा और बुड़वल सीतापुर के दरमियान तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी काबीना के मुफाद आमा के फैसलों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दौरे के दूसरे दिन आज गोरखनाथ मंदिर मुनक़दा जनता दर्शन के दौरान लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। जनता दर्शन में संगीन बीमारियों के इलाज पर भी बात की गई। उन्होंने जनता दर्शन में आने वाले लोगों से आयुष्मान कार्ड के बारे में संगीन बीमारियों के इलाज के लिए माली मदद की दरख्वास्त की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत इलाज की फराहमी मुकम्मल तौर फराहम करेगी। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर ज़रूरतमंद और अहल शख्स के पास आयुष्मान कार्ड मौजूद रहे, ताकि उन्हें इलाज कराने मुश्किल का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के रियासती सतह के शिक्षा मित्र एजाज तकरीब में शिक्षा मित्रों को एजाज से नवाजा और उन्हें उनके बढ़े हुए एजाजिया के लिए चेक पेश किया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प ने स्कूलों की हालत बदल दी है। स्कूल छोड़ने की शरह को 19 से कम करके 3% कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने शिक्षा मित्रों को सालाना 5 लाख रुपये का कैशलेस हेल्थ कवर फराहम करने का फैसला किया है। रियासत के कई अजला में कल शिक्षा मित्र एजाज की तकरीब भी मुनक़द की गई। आगरा मुनक़द इसी तरह के एक प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर मुमलकत प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि प्राइमरी तालीम हमारी बुनियाद है। गाजीपुर में कोडिन खांसी के सीरे से मुतालिक मुंशियात की स्मगलिंग के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता रोज़ 2 मुलजमान ने खुद को अदालत में पेश किया। NDPS के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रत्नाकर दुबे ने तस्दीक की कि मुलजिम राहुल यादव और दयाराम सिंह ने अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी। उनके खिलाफ NDPS एक्ट के संगीन दफात के तहत कार्रवाई की जा रही है और कुर्की का अमल भी शुरू हो चुका था। गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में तकरीबन 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रियासत में 2027 की मरदमशुमारी कल से शुरू होगी। ये डिजिटल मरदमशुमारी जो पहली बार की जा रही है, लोगों को खुद गिनती करने की इजाज़त देगी, जिससे वो घर बैठे मरदमशुमारी के फॉर्म भर सकेंगे। محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے کئی اضلاع میں آج تیز بارش گرج چمک کے ساتھ اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ دریاستہ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کو سخت ہدایت جاری کی ہے کہ قدرتی آفات سے متاثر افراد کو 24 گھنٹے کے اندر امدادی رقم فراہم کی جائے۔ انہوں نے ضلع مجسٹریٹ کو فیلڈ میں رہنے اور راحت و بچاؤ کاموں کی مسلسل نگرانی کرنے کی ہدایت دی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत की बातें। आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय है आँखों से जुड़ी समस्याएं एवं समाधान। बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कमलेश शर्मा से मनोज कुमार यादव।
3: स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत की बातें के प्रायोजक है ब्लू ऑप्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश शर्मा, शर्मा आई केयर, सिविल लाइन्स, गोरखपुर से हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आंखें ईश्वर की दी हुई एक अनमोल धरोहर है। बिना आंखों के हम सभी इस रंग बरंगी दुनिया को देख नहीं सकते। अतः आंखों को स्वस्थ रखना ही हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। किसी भी बीमारी के सफल इलाज के पीछे सिर्फ डॉक्टर का ही हाथ नहीं होता, इसके पीछे पूरी टीम होती है। हम सब इस टीम को फार्मा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये लोग दवाओं से संबंधित है नई जानकारी, दवाओं की रिसर्च, वो इलाज के नए तरीके देते हैं जिससे हम मरीजों के लिए सही इलाज के लिए सही फैसला ले सकें। ये काम ये लोग बहुत ही शांति, समझदारी वो मुस्कान के साथ करते हैं। ये पूरे धैर्य पूर्वक अपना कर्तव्य निभाते हैं। हम सब सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दिल से धन्यवाद देते हैं।
5: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम सेहत की बातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मनोज यादव और आज हम बातें करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, आंखों के रोग। और हमारे साथ स्टूडियो में है प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
4: धन्यवाद
5: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सामान्य आंखों के कौन कौन से रोग होते हैं।
4: जैसे जो भी आंखों के रोग होते हैं ना, वो हम लोग को बचपन से शुरू हो जाते हैं। जैसे हम 5 साल 6 साल के हैं तो उसी एज में हम लोग को डिसाइड हो जाता है या तो चश्मा लगेगा या तो नहीं लगेगा, ये 20 साल तक मान के चलिए। उसके बाद क्या होता है, जब हम 40 के होते हैं फिर हम लोग का थोड़ा थोड़ा नगीची कम होने लगता है, उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। फिर जब हम लोग 50 साल के होते हैं तो हम लोग का दूरी कम होने लगता है। 50 साल के बाद हम लोग की आंखों में हल्का सा कैटरेक्ट की शुरुआत हो जाती है और 70 साल पे 70% को होना है, 80 साल पे 80% को, 90 साल पे 90% को कैटरेक्ट होना ही है।
5: जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आंखों की बीमारियों का शुरुआती लक्षण क्या होता है जिसे नजरअंदाज करना घातक साबित हो सकता है।
4: जैसे आंखों की जो भी बीमारियां होती हैं, हम लोग इंग्लिश को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, हम लोग को 5 साल 6 साल से शुरुआत हो जाता है। या तो उस एज में चश्मा हमको लगेगी या तो नहीं लगेगी, इसलिए प्रॉपर आई चेकअप।

0: छह साल से रेगुलर आपको कराना ही है 20 साल तक।
1: तो वो कौन से लक्षण?
0: माइपिया बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो माइपिया में क्या होता है, उनको पास का अच्छा दिखता है और हाइपोमेट्रोपिया में दूर का अच्छा दिखता है। तो इसके लिए क्या होता है ना, हम लोग रिफ्रैक्शन करके उनको चश्मा दे देते हैं और एवरी ईयर उनका आई चेकअप करते हैं
1: जी। और बात करते हैं एक और बीमारी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये बीमारी होती कैसे है और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं?
0: इंडिया में इसमें डायबिटिक के पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं और डायबिटिक क्या करता है, सबसे ज्यादा असर आंख को करता है, उसके बाद किडनी, तब नर्व को। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको एनुअल आई चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है डायबिटिक धीरे धीरे रेटिना को क्या करता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी करता है। तो इसके 5 स्टेज होते हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट से रोशनी बहुत अच्छी आ जाती है। इन पेशेंट को हम लोग स्ट्रिक्ट एडवाइस करते हैं कि अपना ब्लड शुगर एकदम पूरा मेंटेन रखें।
1: तो उन्हें रेगुलर जांच करवाते रहना चाहिए
0: एवरी 6 मंथ।
1: जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि ऐसे मरीज जो डायबिटिक हैं और हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, उनको अपने खान पान या किस तरह का उनको ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले तो उन्हें शुगर फ्री हो जाना चाहिए
1: जी,
0: ठीक है, और शुगर नहीं लेना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट कंट्रोल, देन उनको अपना मेडिसिन पे ध्यान देना है
1: जी। और आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां भी
0: right.
1: हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो भ्रांतियां कितनी सच है और कितनी झूठ है।
0: पेशेंट का पहला क्वेश्चन होता है कि चश्मा उतर जाएगा, ये जिसे पॉसिबल नहीं है। चश्मा केवल रिफ्रैक्टिव सर्जरी से उतरता है। आपको अगर चश्मा लगाया है, आप हर साल चेक कराइए, जब आप 20 साल के हो जा रहे हैं तो लेस देन 5 पावर है तो हम लोग अवॉइड करते हैं, मोर देन 5 पावर है देन वी एडवाइज फॉर सर्जरी।
1: जैसे बोलते हैं कि कुछ बीमारियां फैल जाती है देखने से, फैलती
0: है कंजक्टिवाइटिस, देखने से नहीं फैलती है, छूने से फैलती है। जैसे जब भी होता है ना तो पेशेंट को बस अपनी आंख को टच नहीं कर।
1: डॉक्टर साहब बातें हमारी जारी रहेंगे, लेकिन अब समय हो चला है कि आप अपनी पसंद का कोई गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: जैसे जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, लता जी का, किशोर जी का गाना बहुत हम लोग सुन के पढ़ाई करते, रेट नाइट स्टडी। तो किशोर कुमार का एक गाना था, नीले लेने अंबर चांद,
1: बहुत अच्छी पसंद है। आई सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: इस गीत के बाद डॉक्टर साहब हम कार्यक्रम में वापस लौटते हैं और हम बातें कर रहे थे इस गीत से पहले भ्रांतियों के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे कि लोगों को ऑपरेशंस आंखों के ऑपरेशन के बारे में कई सारी भ्रांतियां रहती हैं, वो डरते हैं कि आंख ऑपरेशन कराएंगे सही से नहीं होगा तो उनकी रोशनी चली जाएगी, तो इस तरह की भ्रांतियों को आप कैसे दूर करते हैं?
1: जैसे मैं कैटरेक्ट सर्जरी मोर देन 10,000 से अब तक कर चुका हूँ, तो इसमें क्या है ना, पेशेंट को पहले हम लोग काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले उनका रेटना चेक करेंगे, रेटना ठीक है तो बोलते हैं रोशनी अच्छी आएगी, रेटना अगर नहीं सही है तो उनको पहले हम लोग बता देते हैं कि रोशनी कम आएगी ऑपरेशन के बाद। और एक बहुत ही सेफ सर्जरी है, इसको हम लोग ओपीडी प्रोसीजर कहते हैं। पेशेंट आएगा, उसको हम लोग थोड़ा सा सुन करके लेंस निकाल के लेंस डाल के फिर उसको तुरंत घर भेज देते हैं। ओपीडी प्रोसीजर है इसमें। जैसे कैटरेक्ट को एक सर्जरी नहीं बोला जाता है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, और कैटरेक्ट एक बीमारी नहीं है। ये जस्ट क्या होता है ना, जैसे हम लोग का एज बढ़ता है लेंस का कलर चेंज होने लगता है
0: जी,
1: मतलब बहुत सेफ प्रोसीजर है।
0: यहीं पे डॉक्टर साहब आपको एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे, मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद, ये है क्या, ये किस तरह की बीमारी है और किस तरह के लोगों को ये मोतियाबिंद
1: को इंग्लिश में कैटरेक्ट बोलते हैं, काला मोतियाबिंद को ग्लॉकोमा। क्या होता है, दोनों अलग चीज होता है। ग्लॉकोमा में क्या होता है ना, हम लोग का जो आंख का प्रेशर होता है नॉर्मली 10 से 20 होता है, तो ग्लॉकोमा पेशेंट में क्या होता है, ये 20 से ऊपर चला जाता है। और ये बीमारी जनरली हम लोग के समाज में अनडायग्नोस है, क्योंकि क्या है ना, स्क्रीनिंग नहीं है, लोग आंख नहीं चेक कराते हैं, तो क्या होता है ये जब लेट हो जाता है तब आते हैं। काला मोतिया में क्या होता है, वो सबसे पहले हम लोग का ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज कर देता है। एक बार जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है तो वो उसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते मेडिकल साइंस। तो अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट पे ही मेरा हमेशा जोर रहता है। जैसे आपका एज 40 ईयर्स हो गया, तो 40 ईयर्स के बाद आपको साल में एक बार आंख चेक कराना ही है, बीपी भी शुगर भी, बस यही चीज।
0: श्रोताओं, जैसे आपने सुना डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर 40 के आप हो गए हैं तो आप अपने नजदीक के नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें ताकि भविष्य में कैटरेक यानी मोतियाबिंद और ग्लूकोमा से पीड़ित ना हो रहे हैं।
1: एक मिथ सोसाइटी में और है, जब भी उनकी आंख रेड हो जाती है उन्होंने तुरंत एक आई ड्रॉप आता है डेक्सामिथासोन, वो डाल लेते हैं, तो उनसे क्या होता है, डेक्सामिथासोन डालने से उनकी आंख में मोतियाबिंद और संबल बाई हो जाता है। बहुत पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, और तीसरा उनकी आंख में इन्फेक्शन होता है
0: जी,
1: तो जब वो डेक्सामिथासोन डालते हैं तो उनका जो इन्फेक्शन होता है वो बढ़ जाता है। अब कई बार उनकी कॉर्निया जो होती है वो मेल्ट कर जाती है, तो कभी भी डेक्सामिथासोन आई ड्रॉप मेडिकल स्टोर से लेके ना डालें।
0: डॉक्टर साहब, आजकल मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन का भी इस्तेमाल बढ़ गया है और जिससे आंखों पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, तो इसके लिए आप श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे?
1: इसको हम लोग आजकल नया टर्म दिए हैं, डिजिटल आई स्ट्रेन। क्या होता है, जब एक्सेसिव

0: मोबाइल वर्क यूज करते हैं तो जो उनमें कॉर्निया होती है ना, तो जल्दी जल्दी ऑपरेट होती है, आगे चल के वो ड्राई आई हो जाता है, हेडेक होता है पेशेंट को, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, फोटोफोबिया देखने में दिक्कत होती है, गर्दन में पेन होता है, इसी तरह कई सिम्टम्स होते हैं। तो उनको हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि वो एक आता है एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग ग्लासेस, उसको पहन के यूज करें, तो जो भी उसके हार्मफुल रहेंगे वो कट ऑफ हो जाएंगे।
1: और बच्चों में जो मोबाइल का लत बढ़ रहा है उसके लिए
0: क्या हो रहा
1: है,
0: बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं तो उनका दूर का दृष्टि का विकास नहीं हो पा रहा है, और हम लोग का जो आंख का विकास होता है आई का, वो 5 साल से 15 साल तक मैक्सिमम होता है। इसी एज में जितना वो फोन देखेंगे तो उनका पास का नजर और अच्छा हो जाएगा और दूर का धुंधला हो जाएगा। इसके वजह से उनको माइपिया बोलते हैं, तो उनको फिर चश्मे का नंबर लगना ही है। 30% बच्चों को चश्मा लग गया सिर्फ फोन देखने से।
1: तो आप परिजनों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरह से मोबाइल की आदतों से बचाएं, या फिर अगर
0: उन्हें जो भी दिखाना है बच्चों को आप टीवी पे दिखाइए, क्योंकि टीवी देखने से आंख की रोशनी नहीं डैमेज होती।
1: और कुछ है, आसान एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें करके हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं?
0: सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है।
1: डॉक्टर साहब बातें फिर जारी रखेंगे, लेकिन हम कार्यक्रम के मध्य में आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि एक और गीत श्रोताओं को सुनवाएं।
0: चला जाता हूँ
1: डॉक्टर साहब, आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: इस गीत के बाद डॉक्टर साहब हम बातें करेंगे डाइट यानी खान पान। तो खान पान का आंखों के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है और कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं?
1: तो आंखों के लिए जैसे दो चीज होती है, एक विटामिन ए और एक विटामिन सी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आई के लिए। तो विटामिन ए का दो सोर्स आप मान लीजिए, एक वेज एक नॉन वेज। तो वेज में सबसे अच्छा सोर्स बोला है डार्क, मतलब डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जितनी हरी सब्जी आप खाएंगे, फिर पीला सब्जी फिर खाएंगे, अंकुरित स्प्राउट खाएंगे रात में भिगो के, ड्राई फ्रूट्स आप रात में भिगो के खाइए, गाय का घी भी बोला है उससे भी आंख की रोशनी बढ़ती है। ये सब वेजिटेरियन सोर्स है। नॉनवेज में आपको बोला गया है फिश, नंबर वन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आई के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बच्चों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
0: जी, घरेलू स्तर पर आंखों की सामान्य बीमारियों को किस तरह से लोग दूर कर सकते हैं?
1: घर उसमें में क्या है, जैसे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि कभी भी आपको आंख को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप आंख टच करते हैं उससे आंख से ना इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो कभी भी अपनी आंख को टच ना करें, कभी भी आंख में रेड हो तो डेक्सा ना डालें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ मेडिकल स्टोर से दवा लेके ना डालें, और कोई भी आप मेडिसिन अगर घर पे रखे हैं तो उसको 1 मंथ के बाद डिस्कार्ड कर दीजिए। और एक और मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी दूसरे का आईडॉप नहीं यूज़ करना है, कभी भी दूसरे का चश्मा नहीं पहनना है, क्योंकि जब आईडॉप हम खोलते हैं ना तो कंटामिनेट हो जाता है। अगर मैंने डाला फिर आपने डाला तो उससे क्या होता है ना, इन्फेक्शन मल्टीप्लाई कर।
0: हाँ डॉक्टर साहब, अभी मौसम बदल रहा है तो मौसम में ऐसे कौन से रोग है, मौसमी रोग जो आंखों को प्रभावित करते हैं?
1: सबसे पहले आपका वो आ गया वायरल, आ गया वायरल कंजक्टिवाइटिस, होता तो है वायरल फिर वो बाद में बैक्टीरियल हो जाता है
0: जी।
1: क्योंकि इस समय एनवायरनमेंट पे क्या है ना, थोड़ा सा डस्ट है, पॉल्यूशन है, वो पानी है, धूल है, एलर्जी है, तो ये सब आँख में जैसे चले जाते हैं तो सबके आँख में जाते हैं, जिनमें क्या होता है इम्यूनिटी अगर मेरी लो है तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है हम लोग को।
0: और वायरल कंजक्टिवाइटिस का इलाज क्या है?
1: वायरल कंजक्टिवाइटिस का कोई इलाज नहीं है। इसका क्या होता तो ये वायरल, लेकिन फिर ये बैक्टीरियल हो जाता है, तो 7 से 14 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। उसमें हम लोग थोड़ा सा एक एंटीबायोटिक और एक ऑनमेंट दे देते हैं तो ठीक हो जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, अब नेत्रदान पखवाड़ा भी हमने मनाया और नेत्रदान को लेकर कई सारी सरकार की भी योजनाएं हैं कि इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, तो हम जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को जो भ्रांतियां फैली हैं उनको कैसे दूर करेंगे आप?
1: जैसे जब नेत्रदान करने टीम आती है तो टीम आंख नहीं निकालती है, वो सिर्फ आंख का एक सफेद का लेयर होता है कॉर्निया, उसी को बस लेके जाती है। और जैसे वो कॉर्निया 6 घंटे के अंदर आपको निकालना रहता है, आप अगर एक कॉर्निया दान जब वो करता है तो वो 2 लोगों की आंख की रोशनी आ सकती है। तो जितना हो सके इसको इंकरेज करना है कि आप लोग मरने के बाद अपनी आंख को डोनेट करिए।
0: इसके लिए कोई पहले से फॉर्म भरना होता है?
1: हाँ, एक फॉर्म मेडिकल कॉलेज में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में है, आप जाकर वहाँ पर भर के साइन कर दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए, आप प्लेज ले दीजिए कि हाँ मैं नेत्रदान मुझे करना है,
0: तो ये कोई भी कर सकता है?
1: कोई भी कर सकता
0: है। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। और अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं और एक बीमारी है लेजी आई। लेजी आई होता क्या है और इसका इलाज क्या है?
1: लेजी आई क्या होता है, जब हम बचपन में 6 से 8 साल के एज जब हम लोग का होता है तो क्या होता है, एक आंख में पावर आ जाता है और एक आंख में नहीं आता है, तो हम एक आंख से देखते रहते हैं और दूसरी आंख वीक हो जाती है
0: जी।
1: तो इसका क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस अगर हम लोग पता चल जाता है तो हम लोग ऑक्लूजन थेरेपी करते हैं, तो 13-14 साल तक विजन मैक्सिमम लोगों का आ जाता है, 90% लोगों का आता है, जो लोइंग कराते हैं उनमें फिर विजन बहुत टफ है आना। रिफ्रैक्शन हम लोग नहीं कराते हैं बचपन में, जैसे बचपन में मेरा एज अगर 8 साल है, एक आंख में +3 लग रहा है और एक आंख में कोई पावर नहीं लग रहा है, तो क्या उसने +3 नहीं पहना तो ये नंबर बढ़ते बढ़ते, क्योंकि एवरी ईयर हम लोग का जो आँख का पावर है वो बढ़ता है 18 साल तक।
0: तो अभिभावकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: यही कि 6 से 8 साल जब बच्चों का एज हो तो एक बार बस रूटीन आई चेक करा लेना चाहिए।
0: जी, तो श्रोताओं आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपके बच्चे 6 से 8 साल के हैं और लेजी आई बीमारी से आपको बचना है तो उनका एक बार जांच अवश्य कराएं, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके या अस्पताल में इस बीमारी से आप बचें। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का अंतिम समय है और हम चाहेंगे कि चलते चलते भी आप अपने पसंद का कोई गीत हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: जी डॉक्टर साहब, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: डॉक्टर साहब, चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को नेत्रदान, नेत्र रोग से संबंधित जितनी भ्रांतियां हैं उनको हमारे श्रोताओं को बताएं और कैसे बच सकते हैं।
1: बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों का बच्चों का ये 6 साल का है, उनका रूटीन एक बार आई चेकअप करा दीजिए ताकि उनको जो एक बीमारी होती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये डायग्नोस हो जाए, उनको रेगुलर चश्मा लग जाए। क्योंकि एक बार जब आंख में पावर लग जाता है तो चश्मा उतरता नहीं है, क्योंकि हर साल हम लोग का जो पावर होता है 0.25 से 0.5 बढ़ता रहता है। तो एनुअल आई चेकअप जरूर से कराइए। और जब आपकी एज 40 साल की हो जाए तो आप एक बार आई चेकअप करा लीजिए, बीपी करा लीजिए, शुगर करा लीजिए और थोड़ा सा अपना वर्कआउट किया करिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को नेत्रदान और नेत्र रोग से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद पूरी टीम का।
2: कार्यक्रम सेहत की बातें के प्रायोजक थे ब्लू ऑप्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत की बातें। विषय था आंखों से जुड़ी समस्याएं एवं समाधान। बातचीत कर रहे थे डॉक्टर कमलेश शर्मा से मनोज कुमार यादव।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: परेशान तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, एक नया टीवी चैनल जहां होंगी बातें बदलाव की और आपके कल के बेहतर शुरुआत की। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।
1: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
2: स्वच्छता अपनाए, स्वास्थ्य का आनंद उठाए।
1: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
2: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
3: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। इसमें आज आप सुनेंगे हल्दी की नई प्रजातियों की खेती। इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह से विनय कुमार।
4: किसान भाई हमन के आय दूना करे के बा, आय दूना करे खातिर कई उपाय बा। ऐसन बात नहीं कि जौन गेहूँ 21 में 22 में 20 में बिकत बा वो सीधे 44-45 रुपया किलो बिके लगी, या कृषि का अन्य उत्पाद सीधे दूना दाम पर बिके लगी। हाँ, आय दूना कैला का मतलब खर्चा में कटौती। जौन उत्पादन आपका भइल बा ओके प्रोसेस करके, यानी कि ओकरे रूप में परिवर्तित करके बाजार में अधिक दाम लीहल भी आय दूना कैला का तरीका है। खर्चा में कटौती, रासायनिक खाद से जितना जल्दी हो सके कम से कम ओकर उपयोग कैल जा। लेकिन और भी ऐसन क्षेत्र हुआ कि अगर यह तरह का काम कैल जा तो हमन का बचत ज्यादे होई और लागत काफी कम हो जाई। खास तौर से जब साग भाजी का बात आवेले तो एक हिस्सा हमन को छोड़ दे ला जा मसाला वाली फसल का, दवा बीरो बना वाली फसल का, जौन अपने रसोई घर का सम्मान बढ़ावे ला। बहुत ऐसा तीज त्योहार हुआ, मांगलिक कार्य हुआ जौना में एकर उपयोग होला। बगैर एकरे उपयोग के या उपस्थिति के हमनी का सब चीज अधूरा रह जाला। अब आप लोग समझ गए हो कब हम आज आप लोगों से हरदी के खेती के बारे में बात कर चाहतनी। और आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह। आप हैं प्रभारी अधिकारी औद्यानिक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र बरुआ सागर झांसी। हम आप लोगों के एक बात बतावल चाहब कि बरुआ सागर झांसी में ऐसा जगह है जहां हल्दी, अदरक या कंद वाली फसलन का शोध कार्य होला, प्रजाति निकालल जाली आ कृषि का तकनीक अपनावे का तौर तरीका का होखे एकरे बारे में जानकारी उपलब्ध करावल जाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब, ये बताई कि जौन बरुआ सागर जनपद झांसी में स्थित बा, एकर कंद वाली फसल, सल्क कंद वाली, खास तौर से हल्दी के बारे में कौना तरह से कार्य चलत बा, आ अच्छा प्रजाति, अच्छा उत्पादन क्षमता बढ़ावे खातिर आप लोग का करत हैं ये समय?
5: बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने हमको इसी बहाने जो है किसान भाई से बात करने का मौका दिया। देखिए, पूरे भारत देश में और जो है विदेश में भी जैविक के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, और ये हल्दी ऐसी फसल है कि अगर हम इसको जैविक बीज से करते हैं तो हमारा जो हल्दी का जो कलर है, सुगंध है, और जब उसको हम गांठे बनाते हैं तो वो रिकवरी रेट सभी में इजाफा होता है। अच्छा, एक बात और कि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास जो है धीरे धीरे पारिवारिक बंटवारा होते होते रकबा भी छोटा होता गया है, तो हल्दी को हम जो है खुले खेत में भी कर सकते हैं। अगर बाग बगीचा है, मतलब अगर 50% 60% भी अगर धूप मिल रहा है हल्दी को, तब भी हल्दी की खेती हो जाती है। तो इसको हम लोग जो है जैविक बीज से भी कर सकते हैं, अगर रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तब भी कर सकते हैं।
4: हल्दी की खेती हमारे यहाँ पूर्वांचल में हर जिला में कुछ न कुछ कही जाला घरे अपने मर मसाला में डाले खातिर, लेकिन पड़रौना बा, महाराजगंज बा, सिद्धार्थ नगर बा, एजा बहुतायत में होला हल्दी, और बाहर भी भेजल जाला। आप पूर्वांचल का रहे वाला हैं, खास तौर से जनपद गोरखपुर का ही मूल निवासी।

0: हैं। एजा हल्दी उत्पादन का समस्या का है आ बढ़िया प्रजात, बढ़िया समय से ओकर रोपाई, कंद का उपचार का कुछ सलाह दिहल चाहब कि यह साल हल्दी का उत्पादन और बढ़े, यह पूर्वांचल में जहाँ जहाँ हल्दी का खेती होत बा।
1: सबसे बड़ी बात मौसम होता है। अभी आपने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात औसत से कम होता है, कभी कभी इतना बरसात हो जाता है कि हमारे किसान भाई जल निकासी से परेशान हो जाते हैं, जल भराव हो जाता है। और हल्दी या कंद वाली जितनी फसलें हैं, अगर जल निकास नहीं अच्छा रहेगा तो कंद सड़ जाता है, तो किसान का जो जो बीज जो बोता है, जो उसकी मूल लागत वो भी चली जाती है। और जहाँ तक इसकी अन्य समस्या की बात है, तो कभी कभी अगर मान लीजिए एक ही खेत में हम बार बार खेती कर रहे हैं तो कंद के सड़ने की समस्या आ जाती है। और कभी कभी जो है पत्तियों पे जो है कुछ काले काले भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। लेकिन अगर अब हम 2-3 साल के बाद हम खेत बदलते रहे तो हमको काफी हद तक जो है इन छोटी छोटी समस्याओं से राहत मिल जाती है। लेकिन प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है, तो मौसम का मार किसान बहुत झेलता है और जो है आगे भी मौसम के मार उनके ऊपर पड़ती रहेगी। इससे हम ये कहिए कि मौसम को हम कंट्रोल करने, ये तो बस की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं हम कि ऐसा भूमि का चयन करें जो थोड़ी ऊंची हो, जल निकास अच्छा हो तो अच्छा रहेगा।
0: प्रजात के बारे में आप लोग कौन तरह का सुझाव देला, खास तौर से अपने यहाँ पूर्वांचल के क्षेत्र में उत्पादन बढ़िया होके आ ओकरे अंदर जो तत्व पावल जाला ओकर भी गुणवत्ता बढ़िया होके।
1: हल्दी में जो है जहां से मैं पढ़ाई किया हूँ, आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे बहुत सारे प्रजातियों का कलेक्शन किया गया है और उसमें से कुछ प्रजातियाँ हमारे यहाँ भी हैं। हम लोग जो है जब बस्ती में हम थे तो उद्यान विभाग के माध्यम से राजेंद्र सोनिया और रोमा दो प्रजातियों का हम लोग बढ़ावा दे रहे थे। तो राजेंद्र सोनिया और रोमा प्रजातियाँ अच्छी हैं और उसमें जो जो आपने कहा तत्व की बात, जो कुरकुमिन होता है, ये तत्व तो उसमें होता है कुरकुमिन, तो कुरकुमिन की मात्रा भी इसमें ठीक ठाक है, अच्छा है अन्य अन्य के तुलना में। तो हम तो जो यही राय देंगे कि आजाद हल्दी वन है या नरेंद्र हल्दी है या राजेंद्र सोनिया है या रोमा है, इन सब प्रजातियों के किसान भाई लगाएं।
0: एकरे बुआई कैला का सही समय का हा आ विधि का हा।
1: किसान भाई जो है आलू खेती उधर करते ही हैं, तो जैसे आलू की खेती करते हैं ऐसे ऐसी खेती करते हैं। और मिट्टी में नमी अगर पर्याप्त है तो हम इसको मई से लेकर के जून में जुलाई में बो सकते हैं। गुहा से गुहा की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर, और जो जमीन के अंदर जो लगाते हैं कंद को, ये जो है 6 से 7 सेंटीमीटर रखते हैं।
0: हल्दी की खेती में का आलू की तरह मेड़ भी बनावे को पड़ला या समतल खेत में बुआई का देवे के चाहिए?
1: सर, जो लोग अधिक खेती करते हैं, बड़े बड़े प्लाट वाले खेती करते हैं जहाँ पे जल निकास की कोई समस्या नहीं है, जैसे हमारा एरिया है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, कार्य क्षेत्र है, तो यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, जल निकास की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तो अगर देसी हल टाइप का हो तो उसे कूड़ बना करके उसमें भी बुआई कर देते हैं। हमारे पूर्वांचल में, मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ, इसलिए हमने देखा है हमारे पूर्वांचल में गुहा बना करते हैं सर।
0: प्रति हेक्टेयर या प्रति इकाई के हिसाब से एकर बीज दर कितना है आ बीज का शोधन कैसे करे के चाहिए?
1: सर जो है अगर एकड़ की बात करें तो लगभग 7 कुंतल लगता है 1 एकड़ में। अगर हेक्टेयर की बात करें तो 20 से 25 कुंतल बीज लग जाता है इसमें। एक एक कंद जो हम बोते हैं इसका 25 से 30 ग्राम से छोटा नहीं होना चाहिए। और जो जो है कंद जो होता है, नया कंद बोना चाहिए, पुराना जो है गांठ नहीं बोना चाहिए, जिसको हम लोग लोकल भाषा में वहाँ गोरखपुर में फेद्दा बोलते हैं, तो उसको नहीं बोना चाहिए। जो नया नया राजो निकला होता है उसी की बुआई करनी चाहिए। और जहाँ तक शोधन की बात है सर, तो कार्बेंडाजिम बहुत अच्छी दवाई है। अगर 2 लीटर पानी में 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बना लीजिए और उसमें इन कंदों को हम जो है 1-2 दिन बुआई के 1-2 दिन पहले उसमें डुबो दें 15-20 मिनट के लिए, और फिर निकाल करके छाए में सुखा लें तो अच्छा रहता है।
0: डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, आप इतना अच्छा जानकारी दिहलनी कि हल्दी का बढ़िया प्रजात कौन है, का कौना विधि से बुआई कैल जा तो अच्छा उत्पादन मिल सकेला, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बातचीत, विषय था हल्दी की नई प्रजातियों की खेती। इस विषय पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह से विनय कुमार।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान, तू है देश की शान। तू कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, एक नया टीवी चैनल, जहां होंगी बातें बदलाव की और आपके कल के बेहतर शुरुआत की। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi. Several MOUs exchanged in the fields of digital technology, rare earth and medical product regulations. Hectic parleys continue in Tamil Nadu among parties as TVK is set to stake claim for forming government despite lack of majority figure. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tenders resignation. Swearing-in ceremony of the new government to take place after 11th of May. India and European Union launch joint initiative to strengthen EV battery recycling capacity. IMD forecasts heavy rainfall over Assam, Bihar, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry today. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad to take on Punjab Kings in the evening. And now the news in detail. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system and culture and tourism. The agreements were signed after the talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both leaders held wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. We now go over live at Hyderabad House, where Prime Minister Narendra Modi is briefing the media on the outcomes of the talks.
4: Fast payment system bhi jald hi link hone ja rahe hain. Saath hi, ab hum dono deshon ke beech state to state aur city to city cooperation ko bhi majboot karne ja rahe hain. Friends, Vietnam भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बीजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है. इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है. हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे. वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा. योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं. वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर सरमा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
3: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। ये निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियूर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिवोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा

0: किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
2: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुँच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर IED का इस्तेमाल किया गया था।
3: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ISI की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक FIR रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AR या न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत EV बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि ये पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरल

है पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सा उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: लय बिहार केरल माहे पश्चिम बंगाल का तराई क्षेत्र सिक्किम तमिलनाडु पुडुचेरी र कराईकल का केही स्थानहरूमा मुसलधारे वर्षा को अनुमान व्यक्त गरेको छ। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद को मुकाबला पंजाब किंग्स सित हुनेछ। हैदराबाद में यह मैच साँझ 7:30 बजेदेखि खेलिनेछ। अब अन्तमा यस बुलेटिन का प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी र भियतनाम का राष्ट्रपति तो लाम बीच नया दिल्ली में वार्ता भयो। दुवै देश बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिज र चिकित्सकीय उत्पाद सम्बन्धी विनियमन का क्षेत्र में कयन सम्झौताहरूमा आदान प्रदान भएको छ। तमिलनाडु में टीवीके सित बहुमत नरहे तापनि सरकार गठन गर्ने गतिविधि तीव्र भएको छ। असम का मुख्यमंत्री हिमन्त विश्व शर्माले आफ्नो राजीनामा दिनुभयो। नया सरकार को शपथ ग्रहण 11 मई पछि हुनेछ। भारत र युरोपेली संघले ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमतालाई सुदृढ पार्न संयुक्त पहल को शुभारम्भ गरेका छन् र मौसम विभागले असम बिहार केरलम तमिलनाडु र पुडुचेरी में मुसलधारे वर्षा को अनुमान गरेको छ। यसका साथै आकाशवाणीबाट समाचार पूरा भयो।
1: श्रोता साथी समाचारको प्रस्तुतिपछि अब सुन्नुहोस् यो देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार प्रिया।
1: मीडियम वेव 373.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पे ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। संपन्न होती है हमारी प्रथम प्रसारण सभा। FM बैंड पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। सायंग 5 बजे सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
3: आज के मेहमान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारी एक खास मेहमान आई हुई हैं। आप हैं जानी मानी रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा, और हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे उनकी रंग यात्रा पर, उनकी टीवी यात्रा पर और उनकी फिल्मी यात्रा पर। तो प्रभा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार मंदाकिनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
3: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और ये बताइए कि विविध भारती आने पर आपको क्या लग रहा है?
4: ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने घर में आई हूँ विजिट करने। हाँ, क्योंकि मैं रेडियो आर्टिस्ट भी रही हूँ, अनाउंसर एंड कंपेयरर, ये मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ।
3: अच्छा,
4: हाँ।
3: तो आपने आकाशवाणी में जाकर काम किया है?
4: जी, मैंने किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मैं भारत भवन में सिलेक्ट हो गई थी एज एन एक्ट्रेस। तो बहुत ज्यादा काम रेडियो में नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी। 10 से 12 घंटे तक हम लोगों को वहाँ रहना होता था, और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। तो यहाँ इतनी व्यस्त हो गई कि उसके बाद फिर रेडियो करने का मतलब मौका भी नहीं था। हालांकि मैंने सीखा रेडियो से ही, वॉइसिंग रेडियो से सीखी, माइक का सेंस मुझे रेडियो से आया, जिसने मेरी बहुत बहुत सहायता की बाद में यहाँ डबिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। तो रेडियो प्ले आर्टिस्ट होने के कारण ही मैं वो आवाज़ के उतार चढ़ाव, कैरेक्टर में जाना, कैरेक्टर से निकलना, वो सारी चीज़ें मैं रेडियो की वजह से सीख पाई, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसने मुझे एक्टिंग में भी और बाद में डबिंग फील्ड में, जिसकी मैं मास्टर रही हूँ, मानी जाती हूँ। मुझे भी कोई संकोच नहीं है ये कहने में। हाँ, मैंने बहुत काम किया।
3: बिल्कुल, आपने बहुत काम किया। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रेडियो की दुनिया में आपने सबसे पहले कौन सा काम किया? आप
4: पहले जब मैं अप्रूव आर्टिस्ट हुई थी तो रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट थी।
3: अच्छा।
4: वहाँ एक रेडियो प्ले हुआ था, उसका नाम था किरचे, तो वो रेडियो आर्टिस्ट के साथ किया था मैंने। और बाद में यहाँ बॉम्बे आने के बाद भी 2-3 रेडियो सीरीज की थी
3: जी,
4: आउटसाइडर प्रोड्यूसर और वो लोग होते थे, और रेडियो पे वो यहाँ ब्रॉडकास्ट होता था। तो वो मैंने एक निर्मला किया था, जिसमें मैंने निर्मला प्ले किया था, कोई पंजाब बैकग्राउंड पे भी था, वो भी किया था। चूंकि ये लंबे लंबे थे, 20 एपिसोड्स 13 एपिसोड्स की, तो वो काम काफी महत्वपूर्ण था, और वो सिर्फ रेडियो के लिए था। वैसे मैंने रेडियो वाणी के लिए भी काम किया है।
3: प्रभा जी, थिएटर आने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? कैसे नाटकों की दुनिया में आए? कैसे लगा आपको कि मुझे नाटक करने चाहिए थिएटर की दुनिया में?
4: जी, वो तो बस यूं समझ लीजिए कि जैसे ईश्वर की इच्छा थी कि मैं आऊं एक्टिंग की दुनिया में, क्योंकि मैं छोटी ही थी, करीब होंगी 16-17। तो मेरे पापा के कोई फ्रेंड थे, वो एक प्ले कर रहे थे, एमेच्योर थिएटर की बात कर रही हूँ मैं। उनकी करीब हफ्ते भर पहले उसकी हीरोइन चली गई।
3: अच्छा,
4: छोड़ के
3: जी।
4: तो वो परेशान थे, हीरोइन ढूंढ रहे थे, तो वो पापा से बोले कि आपकी लड़की तो अच्छी है, अच्छी दिखती है, तो ये करेगी क्या? तो पापा बोले अगर उसकी इच्छा है तो कर ले। उन्होंने मुझसे कहा करेगी क्या? मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं है, पर कर लूंगी अगर करवाना है तो। बोले ठीक है, आ जाओ देखो। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़वाई, मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ दी पहली बार में। उन्होंने कहा जाओ, उनको हीरोइन मिल गई और मुझे एक नया जीवन
3: मिल गया।
4: तो वो मेरी शुरुआत थी। पहला प्ले था मुल्ला नसरुद्दीन।
3: अच्छा।
4: हाँ
3: जी।
4: रईस हसन उसके डायरेक्टर थे, जो कि बाद में मेरे रेडियो में भी हीरो थे वो। जो उसमें डायरेक्टर थे और मैं उनको मामा जी कहती थी। आप सोचिए आवाज की दुनिया का विरोधाभास देखिए कि वो मेरे मामा हैं, मतलब मुझसे कितने बड़े होंगे और वो मेरे हीरो थे।
3: तो अब तक आपने कितने नाटक कर लिए होंगे
4: स्टेज पे? तो मैंने मेरे ख्याल से 25-30 नाटक किए होंगे, क्योंकि नाटकों की दुनिया में मैं रही करीब 8-10 साल। उसके बाद वो नाटक मुझसे छूट गए।
3: तो आपने गिरीश कर्नाड का लिखा नाटक था है वदन, उसमें आपने काम किया और जाने माने नाटककार बीबी कारंत साहब के निर्देशन में, एक बहुत बड़ी बात है
4: जी।
3: तो कैसे मिला आपको ये नाटक और क्या अनुभव रहा होगा इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का आपका?
4: जी, इसके लिए तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि मेरे अभिनय की नींव, मेरे करियर की नींव, मेरे व्यक्तित्व की नींव, ये नाटक था है वदन। क्योंकि मैं भारत भवन में गई रंगमंडल में, तो वहाँ पे ये नया नाटक ओपन हुआ था, कास्टिंग की जा रही थी। उस कैरेक्टर में कारण जी को मैं ही सबसे ज्यादा फिक्स, मतलब लगा कि उनको ये इसमें फिट होती है लड़की। नई लड़की थी मैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नाटक था और बहुत प्रेस्टिजियस था कारण जी के लिए भी। तो मुझे बोला गया, स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई, मैंने उसे अच्छे से पढ़ा, उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की मुझ पे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी के लिए भी एक चुनौती था। इससे पहले उन्होंने एनएसडी में ये किया था और कारण जी को जाना जाता था इस नाटक से ही। और वो कैरेक्टर उसमें जो है बदन में जो मेन कैरेक्टर है वो सेंट्रल कैरेक्टर है पद्मिनी का, तो वो पद्मिनी मैंने प्ले किया था। और उसके लिए जो उनको चाहिए था उसके लिए उन्होंने मेरी चाल पे, मेरी आवाज़ पे, मेरी आंखों के एक्सप्रेशन पे, वहाँ से लेके एक एक चीज़ पे काम किया। और वो जो उन्होंने काम किया वो मेरे जीवन भर की कमाई है, समझ लीजिए, क्योंकि वो एंड तक अब तक मेरे काम आ रही है
3: जी।
4: जो जो बताया उससे जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुए। और वो प्ले भी हमने कालिदास समारोह उज्जैन वहाँ भी किया, इलाहाबाद में भी किया, कलकत्ता रविंद्र नाट्य में, उसमें बॉम्बे में भी किया था, मतलब लगभग सारे भारत में उसका हम लोगों ने टूर किया था, तो सभी जगह था। दिल्ली में श्रीराम सेंटर में भी एक फेस्टिवल हुआ था, उसमें हयवदन से ओपन किया गया था। 3 दिन तक पहले हयवदन था, उसके बाद में दूसरे नाटक थे।
3: तो इस नाटक से जुड़ा कोई डायलॉग आपको याद है या कोई घटना जिसे आज भी आप याद करती हो?
4: बिल्कुल, मेरे पास घटना भी और डायलॉग भी दोनों ही कहूंगी मैं आपको। हे भगवान, ये क्या हो गया, दोनों के दोनों दोनों चले गए, दोनों चले गए, मरने से पहले मुझे तो याद कर लेते, मेरा क्या होगा। माँ माँ माँ दुर्गे दुर्गे, अब तू ही बता मेरा कौन है, कौन है, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। कपिल चला गया, देवदत्त भी चला गया, तो ठीक है, इनके पीछे पीछे

0: मैं भी चली जाती हूँ। इस पूरे कैरेक्टर को जीना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है।
1: बिल्कुल,
0: अभी जो मैंने दिखाया वो कितनी सच्ची लग रही है, कितनी भोली लग रही है, लेकिन उसकी चालाकी देखिए,
1: उसके अंदर क्या चल रहा है।
0: हाँ। वो यहाँ देखिए, अब ये दूसरे डायलॉग में आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। चलो चलो देवदत्त। कपिल, ये क्या है? ओफो, हमें क्यों सता रहे हो? जाओ यहां से। देवदत्त, मेरे राजा, मेरे कारण मेरा राजा नया आभूषण पहन के आया है। चलो अब देवदत्त, चलो घर लौटते हैं। हाँ, सुनो देवदत्त, थोड़ा सा ठहरो। हाँ कपिल, उदास मत हो कपिल, फिर मिलेंगे, है ना? सुनो, देवदत्त के साथ जाना मेरा धर्म है। याद रखो, चाहे मैं देवदत्त के साथ चली भले ही जाऊं, पर जा रही हूं तुम्हारी ही काया के संग। फिर मिलेंगे कपिल।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आपको सामने देखकर भी वो भाव नजर आ रहा है जो उस वक्त आपने किया होगा। और चलिए अब हम आपसे आगे सवाल करें, उससे पहले आपकी पसंद का कोई एक गीत सुन लें।
0: जी जरूर, आपने गानों की बात कही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं मोहम्मद रफी की ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट फैन हूँ।
1: अच्छा जी।
0: मैं अपनी जिंदगी में मोहम्मद रफी के अलावा शायद ही कोई किसी दूसरे सिंगर को सुनती हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, या तो डुएट भी होते हैं तो उनके साथ ही होते हैं। तो मेरी पसंद के ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी के ही हैं, और डुएट हैं तो उनके ही साथ हैं। फीमेल में मैं आशा जी को ज्यादा पसंद करती हूँ। उनकी आवाज की जो एक शार्पनेस है ना, एक खनक है उनकी आवाज में, वो मुझे बहुत पसंद है।
1: जी, जी।
0: और जिस तरह से वो वेस्टर्न, इंडियन सारे म्यूजिक में, क्लासिकल और सब में ढल जाती हैं, वेस्टर्न को जिस तरह से वो पकड़ती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। उनका रुत है मिलन की साथी मेरे यार।
1: क्या बात है।

0: प्रभा जी, आपने निर्देशक जो थे NSDN आलोपी वर्मा, उनके साथ भी कई नाटक किए हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उनके साथ कौन कौन से नाटक आपने किए, कोई खास अनुभव?
1: जी, आलोपी जी हमारे भारत भवन में सह निर्देशक थे, तो उनसे हमने बहुत सीखा। एक तो उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज हमको सिखाई थी, मेकअप का भी उन्होंने सिखाया था हमको,
0: बिल्कुल।
1: और उन्होंने प्ले किया था एक मॉक डॉक्टर, उसमें मेन रोल मैंने किया था। जब मैं भी बॉम्बे आ गई थी और आलोपी जी भी बॉम्बे आ गए थे, तो हमने यहाँ पृथ्वी थिएटर में एक प्ले किया था। हमारा एक ग्रुप था कुटुंब,
0: अच्छा,
1: जिसमें अनु कपूर, आलोपी जी तो थे ही, आलोक नाथ, नीना गुप्ता और अरुण वर्मा, रवि केमू वो भी थे, पंकज बेरी वो भी थे, मैं थी, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उस समय।
0: बिल्कुल,
1: उनके साथ में हमने रोशोमन प्ले किया था, आलोपी जी ने डायरेक्ट किया था वो। तो रोशोमन में भी ये पद्मिनी जैसा ही है वो भी कैरेक्टर, तो वो भी मैंने मेन रोल किया था उनका, और ये पृथ्वी में उसका शो हुआ था।
0: तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थिएटर में काम करने के दौरान एक कलाकार को शारीरिक कहें या मानसिक कहें और तकनीकी रूप से गहन तैयारी करनी पड़ती
1: है। जी, बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और जैसे हम कह सकते हैं कि अनुशासन, आवाज
1: जी,
0: या शारीरिक भाषा पर नियंत्रण कैसे रखे एक कलाकार
1: जी,
0: और डायरेक्टर के जो डायरेक्शन है, निर्देश है, उनका पालन करना बाकायदा
1: जी, जी।
0: और संवाद याद करना, जो सबसे मुश्किल काम हो जाता है,
1: मुश्किल
0: संवाद याद रखना, बहुत सारी बातें जिन्हें कलाकार को ध्यान रखना पड़ता है, खुद को इन सब के लिए कैसे तैयार करता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं।
1: ये तो साधना है, मतलब अभिनय को लोग बहुत आसान समझते हैं, सहज समझते हैं कि अभिनय करना मतलब डायलॉग बोल दिए या मेकअप कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बस हो गई एक्टिंग। ऐसा नहीं है, ये पूरी एक साधना है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत की साधना। लोगों को लगता है गाने गाना बहुत आसान है, लेकिन पूछिए उनसे,
0: बहुत मुश्किल,
1: कि शास्त्रीय संगीत कैसे साधा जाता है। ठीक वैसे ही आर्टिस्टों को भी साधना पड़ता है, शरीर को बलिष्ठ बनाना पड़ता है, साथ में लचीला, तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आवाज को उतार चढ़ाव, साथ में दमदार, लंबे समय तक आवाज की, मतलब उसकी लेंथ भी दूर तक जाए, लय भी ना टूटे, साफ भी हो, तो ये सारी ध्यान रखनी पड़ती हैं चीजें, उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: और इस सब को कंट्रोल करने के लिए तो नियंत्रण तो आपने कहा वो है ही और निर्देशक के हिसाब से नहीं चलेगा आर्टिस्ट, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा।
0: बहुत मुश्किल होता है, कई बार निर्देशक की लताड़ भी खानी पड़ती है एक कलाकार को
1: कई बार नहीं बल्कि मैं कहूंगी वो तो रोज खानी पड़ती है। अगर कोई प्रोफेशनल होना चाहता है और अगर कोई वाकई अच्छा कलाकार बनना चाहता है तो उसको तो लगातार डांट खानी पड़ती है, खानी पड़ेगी ही।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे ये डांट खानी पड़ी थी, वो जो मैं आपको बता रहे थे, कारण जी की डांट खाई थी मैंने, सबसे ज्यादा उन्हीं की डांट खाई है। दो तीन चीजों पे खाई, एक तो ये कि मैं बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर है ना वो चालाक नहीं है, सहज और स्वाभाविक हूं मैं, और ये जो कैरेक्टर था ये एकदम अलग था, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, इस कैरेक्टर को, पद्मिनी के कैरेक्टर को, मैं अंदर से इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण बहुत था इसलिए मैं कर रही थी। कारण जी ने कहा है, भारत भवन में हूँ, आर्टिस्ट हूँ वहाँ की, तो मेरी नौकरी थी तो मुझे करना ही था। तो मैं पता नहीं क्यों, चूंकि मैंने अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कारण जी जो चाह रहे थे कि मैं चालाक दिखूं, मैं दिखूं कि एक के साथ रहते हुए दूसरे को रिझा रही हूँ, ये दिखना चाहिए मेरी हरकतों से, मेरी आंखों से, मेरी एक्सप्रेशन से, जो कि नहीं दिखता था। तो मुझे रोज डांट पड़ती थी इस बात पे। शो के बाद हम लोग मीटिंग होती थी, मीटिंग में किसने क्या अच्छा किया, बुरा किया, वो सब बताया जाता था। तो कारण जी ने मुझे, प्रभा मुझे एक बात बताओ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम एक बात बताओ, मैंने तुमको पद्मिनी क्यों लिया? तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, क्यों लिया, आपकी पसंद, आपकी, आपको लगा होगा कि मैं पद्मिनी के लायक हूँ। तो वो मुझे बोले, क्या तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे पद्मिनी को दिखाया गया है? सच बताऊं मुझे नहीं लगता था कि मैं खूबसूरत हूँ। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला, फिर क्यों लिया? तो मैंने कहा मैं नहीं जानती, आप जानते होंगे। बोलते तुम्हारी आंखों की वजह से, तुम्हारी आंखें वो हैं जो किसी के पास नहीं है, वो बोलती हैं, लेकिन तुम इनका यूज नहीं कर रही हो। मैं थक गया हूँ तुमसे, आज आठवां नौवां शो है, तुम कर क्यों नहीं दिखता तुम्हारी आंखों से वो चालाकी, क्यों नहीं दिखता कि तुम छल कर रही हो उसके साथ, यहाँ प्यार में डूबी हो, वहां नहीं डूबी हो, वहां चालाकी कर रही हो, क्यों नहीं। जितना डांटा गया उसके बाद मैंने तकरीबन 20 से 25 शो के बाद इस चीज को पिकअप किया और तब मैंने ये आंखें घुमाना, जो कि मेरा बुनियाद में काम आया,
0: बुनियाद धारावाहिक में काम आया। हाँ, जी जी जी,
1: उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था और मैं नेगेटिव कैरेक्टर पसंद नहीं करती थी। उसमें मैंने जब कैरेक्टर किया ना अपना, जो कैरेक्टर पिकअप किया, तो उसमें ये था कि मैं आंखें घुमा के, चुटीला घुमा के, और मैं वो चुगलियां करती हूँ, इसको देखती हूँ, उस पर वार करती हूँ, ये सब करती हूँ। ये रमेश सिप्पी ने मुझसे कहा था, मतलब वो मुझे देख के, जब मैंने ये किया था पहली बार, ये चोटी घुमाई थी, तो वो लगे वेरी गुड प्रभा, कीप इट अप।
0: सही बात है, यानी कि वो चीज आपको वहाँ काम आई, और एक कलाकार के लिए हर एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं काम आता,
1: काम
0: ही
1: आता
0: है,
1: जो वो सीखता
0: है।
1: महान डायरेक्टरों से उनके साथ काम करना इसीलिए बड़ी अचीवमेंट है।
0: मुझे बताइए प्रभा जी, कि मंच के लिए किसी किरदार की तैयारी का मतलब होता है कि उसके वास्तविक स्वरूप को और नाटक की कहानी के साथ हम जुड़ जाएं, है ना?
1: जी,
0: वैसे के वैसे हो जाए, समाहित हो जाए। तो आप किसी किरदार में कैसे घुसती हैं और फिर कैसे निकल जाती हैं? आपको कभी दिक्कत आई कि किरदार में घुस गई तो घुसी रह गई और निकल नहीं पाई?
1: मुझे ये दिक्कत नहीं हुई, ये मेरे अंदर से स्वाभाविक ही हमेशा से ही रहा। जो भी कैरेक्टर मेरे सामने होता है, मैं ऐसे फील करती हूँ कि मैं यही हूँ, उसको फील करती हूँ, उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसके पर्यावरण को, सब कुछ, तो मैं वही बन जाती हूँ। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, जैसे ही वो खत्म हुआ मैं तुरंत प्रभा हो जाती हूँ।
0: जी, जी, जी।
1: तो इसीलिए यही है कि मैं एकदम, मेरा सामने अपीयरेंस बिल्कुल अलग है और मेरा स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल अलग है। उसका कारण यही है, क्योंकि मैंने प्रभा पे कभी भी कोई कैरेक्टर हावी होने
0: नहीं
1: होने दिया। मैं प्रभा हमेशा बनी रही,
0: बिल्कुल।
1: कैरेक्टर आते हैं जाते हैं, मतलब मुझे कहते थे ये ऐसी एक्ट्रेस है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाँ, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, कैंपस सीरियल जिन्होंने डायरेक्ट किया था, संजीव भट्टाचार्य नाम था उनका। तो एक बार उनके यहाँ ऑडिशन चल रहे थे, तो उस ऑडिशन में मुझे भी कॉल किया गया था। मैं वहाँ गई, मैंने वो ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में एक सोलोलॉकी थी और उसमें वो जो लेडी होती है उसके अंतर्द्वंद को दिखाना था उसमें, जिसमें वो टूट जाती है, मतलब जैसे किसी एक अंधेरी सुरंग में वो बहुत दिनों से फंसी हुई है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक रास्ते की किरण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, और वो प्रार्थना करते हुए वो अपनी पुरानी बातें, अपने अंदर का संघर्ष, ये सब बताते हुए वो टूट जाती है। तो ये था, हे भगवान, कहीं कोई रोशनी की एक किरण तक नहीं, कब कब निकालोगे, क्या मुझे एक किरण भी नहीं दिखाओगे तुम? इस तरह से जैसे मैं उसमें फट पड़ती हूँ, तो मैं इस तरह से रोई हूँ टूट के कि उनको लगा मैं कैरेक्टर में चली गई, अब इसको डिस्टर्ब मत करो। तो वो दो लोग थे, संजीव जी थे और एक उनको असिस्ट कर रहे थे, एसोसिएट थे, वो दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो, बेचारी टूट गई है। तो बहुत देर तक जब उन्होंने मुझे रोका नहीं, तो मैंने देखा पलट के, मैंने कहा क्या हुआ, आप कट क्यों नहीं कर रहे, आर यू ओके? ऑफ कोर्स। तो बोलते हमें लगा कि आप मतलब ट्रांस में चली गई हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो कैरेक्टर था, मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो मैं यू करती, जैसे आपने अभी देखा, मैंने अभी आपके सामने किया।
0: यही एक कलाकार की पहचान है कि वो कब कैरेक्टर में घुसता है और कब निकल आता है। तो चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
1: एक आशा जी का गीत सुन ले। आशा जी के गीत भी मुझे बहुत पसंद है, उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। उनका एक रेयर सॉन्ग है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया।

0: देखिए पृथ्वी थिएटर में भी आपने बहुत काम किया है और हर रंगकर्मी का सपना होता है कि पृथ्वी थिएटर में काम किया जाए।
1: जी,
0: तो नाटक बगुला भगत में आपने राधा का किरदार किया था, विजय वर्मा शायद डायरेक्टर थे इसके। तो ये सभी एनएसडी पास आउट डायरेक्टर हैं, इनके काम करने का तरीका क्या एक आम डायरेक्टर के काम करने के तरीके से कुछ अलग होता है, आपने क्या महसूस किया?
1: हाँ, एनएसडी के लोग बहुत बारीकी में चीजों को समझते हैं, पकड़ते हैं, क्योंकि उनको तो वो तो पूरा एक ग्रेजुएशन है ना एनएसडी में, वहाँ पढ़ना तो पूरा एक लेते हैं, तो वो कारंजी वाली चीजें एनएसडी के सभी लोगों में है। तो मैंने सौभाग्य से उनके साथ काम किया है, ये सारी चीजें मैंने इन्हीं लोगों से सीखी। बगला भगत वो कॉमेडी नाटक था, मैंने जो कुछ भी सीखा जहां जहां से थोड़ा थोड़ा सब जगह से सीखा, मेन तो करण जी से ही सीखा सब कुछ, लेकिन फिर भी हर एक डायरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेरा लास्ट प्ले जयरूप जीवन जी के साथ ही था, ढाई आखर प्रेम का। इसमें क्या हुआ था, तब तक मैं आवाज की दुनिया की काफी बड़ी शख्सियत बन चुकी थी, तो मैं हीरोइंस करती थी ज्यादातर, उस समय सिर्फ फिल्में चला करती थी, उस समय सीरियल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। इंट्रोड्यूस तो हुए थे लेकिन बहुत कम, डीडी पे ही होते थे और वो हफ्ते में एक दिन आता था और वो भी डबिंग नहीं होती थी उनकी, तो मैं फिल्मों में ही कर रही थी। इनका प्ले था ढाई आखर प्रेम का, उसमें मेन रोल में कर रही थी। अब होता ये था कि हमारी जो रिहर्सल्स थी वो होती थी 6 to 8, क्योंकि वो एक स्कूल में हुआ करती थी और 8 बजे स्कूल की तरफ से ये था कि आप ये कंप्लीट कर दीजिए, इसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी, उसके बाद अलाउड नहीं था। और मैं जो डबिंग कर रही होती थी उन दिनों, या शूटिंग भी होती थी, तो उनकी शिफ्ट होती थी 9 to 6, जो कि काम खत्म होते होते तक 6:30 हो जाता था वहाँ से निकलते निकलते तक, और पेमेंट वगैरह लेते थे, ये सब बातें होती थी, तो तब तक वो 7 बज जाते थे उन्हीं जगहों पे, और वहाँ से आते आते 7:30-8:15। तो अब वो रिहर्सल लगातार हो रही है और मैं लगातार 7:30-8:15 यही मेरा टाइम चल रहा है, तो रिहर्सल नहीं मिल पा रही है। तो वो जयरूप जी मुझे बोले, अब एक बात और बताऊँ आपको, जयरूप जी के साथ मैंने यश चोपड़ा की सीरियल डॉक्टर साहब में एक्टिंग भी की है।
0: जी, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे।
1: हाँ हाँ हाँ, वो मेरे अपोजिट थे उसमें, हम लोग थे
0: जी।
1: तो जयरूप जी मुझसे बोले कि प्रभा जी कैसे क्या करें कि पूरा रिहर्सल का टाइम

अगर नहीं कर सकती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतना गिल्ट फील करती थी डेली, यही होना, मैं आऊँ और बस आधा पौन घंटा हो, एक आध सीन हो पाए, उसके बाद बाकी आर्टिस्टों का होता रहे, और जय रूप अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाएं कि आप अब आई हैं।

0: मैं आऊं और बस आधा पौने घंटा हो, एक आध सीन हो पाए, उसके बाद बाकी आर्टिस्टों का होता रहे, और जय रूप अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाएं कि आप अब आई हैं। महेश भट्ट उसके डायरेक्टर थे, वो मैं डब कर रही थी। और एक दिन पहले जब मैंने काम किया तो कुछ किसी कारण से रील नहीं आ पाई, कुछ हो गया, शायद 4-5 रील रह गई उसकी। उन्होंने कहा अब ये हम कल करेंगे, और रिलीज सर पे था और रुक नहीं सकते थे। और कहा कल कल तो पूरे दिन मेरे लिए हॉल लिया गया है। मैंने कहा मैं कल नहीं आ सकूंगी। वो बोले सोच लीजिए, 9 रील हो चुकी हैं आपकी आवाज में। तो मैंने कहा लेकिन मैं कल कैसे आ सकूंगी, क्यों मैं कर नहीं पा रही हूँ। बोले एक काम करते हैं, 2 बजे से रख लेते हैं, सुबह आप रिहर्सल कर लीजिएगा, 2 बजे से रख लेते हैं, लेकिन हम फिर इसे टाल नहीं सकते। और मैं उस जमाने में उस फिल्म में 25,000 रुपये ले रही थी
1: उस समय।
0: तो 25,000 रुपये उस वक्त जब मतलब लोगों की सैलरी 2,000 होती थी महीने में। और वो उन्होंने कहा, महेश भट्ट के एसोसिएट डायरेक्टर थे शायद, उन्होंने मुझे कहा, वो उस दिन समझा रहे थे वो मुझे बैठ के, बोले आप एक्टिंग क्यों करती हैं, आप थिएटर क्यों कर रही हैं, आप तो टॉप डायरेक्टर के साथ कर चुकी, आपको सारे एक्सपीरियंस मिल गए, आप क्यों कर रही हैं थिएटर। मैंने बोला मुझे खुशी होती है। बोले और ये डबिंग इसमें क्या होता है। मैंने कहा ये भी खुशी होती है। तो बोले कौन सी बड़ी खुशी है, ये या वो। मैंने कहा खुशी तो एक बराबर है, लेकिन बोले क्या नहीं करके आप कंफर्टेबल होंगी। मैंने कहा थिएटर, क्योंकि इससे मेरा खर्चा चलता है। तो बोले तो आप सोच लीजिए आप किस चीज़ के लिए किसको छोड़ रही हैं। मैंने कहा ठीक है। बोले कल आप 2 बजे आ सकती हैं तो आ जाइए, वरना टाटा बाय बाय। मैंने कहा ओके। अब हुआ ये कि मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी कि मैं जयरूप जीवन को बोलूं कि मैं कल भी नहीं आऊंगी। मैंने उनको बोला कि कल हम 9 बजे से रखते हैं और हम कम से कम 4 रन थ्रू हम कर लेंगे कल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। उन्होंने मेरे लिए थिएटर लिया। अब हुआ ये कि किसी को नहीं पता था कि मैं 2 बजे चली जाऊंगी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये कह दूं कि मैं 2 बजे जाऊंगी। मैंने बोला सुबह 9 बजे सब लोग आ जाएं और 9 बजे से रिहर्सल करते होंगे। ठीक है, मैं 9 बजे पहुंच गई लेकिन बाकी कोई नहीं पहुंचा। जयरूप जीवन भी 10 बजे पहुंचे, 10:30, कि उनको लगा 9 बोल रही हैं, कहाँ 9 बजे तक आ पाएंगी। और मैं इस वजह से ज़्यादा वो थी कॉन्शियस कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा था। हम वहाँ पहुँचे, देखा कोई नहीं आया आर्टिस्ट। अब जयरूप जीवन बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी, आर्टिस्ट आने शुरू हुए, 10 बजे से शुरू हुए, क्योंकि ये इमेच्योर थिएटर था, पेमेंट तो मिलता नहीं था किसी को। करते करते वो शुरू हुआ 11, 11:30 बजे, 1 रन थ्रू हुआ, दूसरा शुरू हुआ, 2 बज गए। अब 2 बज गए, वहाँ थिएटर ले चुके हैं वो लोग पे कर रहे हैं एक एक मिनट का, और वहाँ मेरा वेट हो रहा है। 2:45 बजे से मैं कॉन्शियस होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैं इधर उधर देख रही, डायलॉग भूल रही। 2 बज गए, अब मैं सोचूं बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूंगी। अरे 1 रन थ्रू हुआ बार, बस जब तक मैं कुछ बोलूं कुछ करूं, जयरूप जीवन मेरे पास आए, बोलने लगे प्रभा जी प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ। 2:15 बजे बोलते क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा मेरी डबिंग है। बोले आज भी। मैंने बताया, मैंने कहा हाँ कल काम रह गया था उनका, तो मुझे आज भी बुलाना है। मैंने कहा आप बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगी। 25,000 रुपये हैं, महेश भट्ट का काम है,
1: सही बात,
0: इतने बड़े उस पर मेरा नाम हो जाएगा खराब, आप कहें तो मैं छोड़ दूंगी और आप कहें तो करूँ। सर पकड़ के बैठ गए, बोले मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम ये काम मत करो, कर लो। मैंने कहा और मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब मैं बहुत गिल्ट में जी रही हूँ 2 महीने से, अब मैं थिएटर नहीं करूंगी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन जब शो हुआ तो शो में वही हुआ कि मेरी हंसी छूट गई,
1: जो नहीं होनी थी,
0: जो नहीं
1: जिसका
0: होना,
1: उन्हें डर था,
0: जिसका उन्हें डर था। और वो इतना स्पॉन्टेनियस था एक्टर सुशील। अब वो लोग मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे करेक्शन करने की कोशिश कर, वो जितना संभालते मैं उतना हंसती, क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि मैं नाराज हो जाती हूँ, झगड़ा करती हूँ और मायके जा रही हूँ, तो बोलते हैं झगड़ा जा रही मायके जा रही हूँ, बड़ी तुम्हारी तमीज है मायके जाने की, ऐसा कुछ उनका था। मेरी हंसी छूट गई, हंसी छूटी तो वो बोलते हैं अरे हंस रही है, देखो वो ऑडियंस को बोल रहे देखो कैसी पागल लड़की है, मैं इस पर नाराज हो रहा हूँ और ये हंस रही है। और वो ऐसे ऐसे मुंह बना के बोले कि मेरी और ज्यादा हंसी।

0: इतनी हंसी छूटी कि मेरे साड़ी का पल्लू था, मैंने पूरा पल्लू अपना मुंह में घुसा लिया, फिर भी मेरी हंसी नहीं बंद हो रही। उसमें वीएम व्यास भी थे, वो मेरे ससुर बने हुए थे और वो मेरा पति बना था। उस दिन जो स्टेज पे मेरी हालत हुई ना, वो मैंने कहा बाप रे, मैं अब इस लायक नहीं हूँ कि मैं थिएटर कर सकूँ, क्योंकि रिहर्सल्स मैं दे नहीं सकती हूँ पूरी, क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज है ना कि आप हर बार एक पूरी परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। एक बार हरिवदन में ये हुआ था कि हम लोग शो कर रहे थे और उसमें देवदत्त को जो मेन रोल था, आलोक चटर्जी, कितना बड़ा नाम है वो, आलोक चटर्जी ने किया था वो, आलोक चटर्जी को लूज मोशन लग गए।
1: अच्छा,
0: हाँ, अब बताइए क्या करें। अब वो बेचारा एक हाथ से पेट पकड़े, एक हाथ से पूरा ये रिहर्सल, मुझे भी पता नहीं चला, बस मुझे लगे वो गायब हो रहा है, थोड़ी देर में एंट्री हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सबने बताया कि उसको डिसेंट्री हो गई थी, उल्टी हो रही थी,
1: बताइए,
0: लूज मोशन हो रहे थे, उसमें वो आ रहा था,
1: बिल्कुल
0: उसमें कर रहा था।
1: उसमें भी अगर कलाकार संभालता है तो उसकी महानता है।
0: आप सोचिए, सोचिए कितना
1: हर परिस्थिति में नाटक को एंड करना चाहता है कि नाटक एंड हो जाए,
0: शो मस्ट गो ऑन।
1: बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, हमारा भी शो चल रहा है और बताइए कौन से गीत आपको सुनवाए। अब
0: गीत आप सुना दीजिए, आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है।
1: क्या बात है।

0: प्रभा जी, सीरियल की दुनिया अब चलते हैं हम, जहाँ आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है और एक मुकाम बनाया है अपना। तो थिएटर की दुनिया से निकलकर जब आप टीवी की दुनिया में आई, तो वो शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि वो जमाना था दूरदर्शन का।
1: जी हाँ जी।
0: तो बुनियाद सीरियल में आपने जाने माने निर्देशक रमेश शिप्पी के साथ काम किया है, उनके निर्देशन में, और बहुत ही क्लासिक विभाजन गाथा थी ये बुनियाद जो है।
1: जी, जी।
0: आपको मतलब किस तरह से चयनित किया गया, क्या ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के जरिए चुना गया? या
1: मैं आपको बताऊं, ये जो ऑडिशन वाला चक्कर है ना, ये बाद में शुरू हुआ है।
0: अच्छा, पहले नहीं होता था?
1: तब नहीं होता था, तब तो डायरेक्टर सीधे देख के और वो अपना जजमेंट होता था उनका। इसके लिए हुआ ये था कि मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक टेलीफिल्म की थी, उसका नाम था ढहती बुनियादें। तो ढहती बुनियादें मैंने आशा शर्मा, जो बुनियाद में चाय जी का रोल कर रही थी, उनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मैंने उनसे कहा कि आज मेरी फिल्म आएगी, आप देखिएगा। उन्होंने देखा, उनको लगा लड़की तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। तो वहाँ एक कैरेक्टर निकला बुनियाद में, तो उन्होंने रमेश जी को बोला कि एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस आई है, थिएटर की है, नई लड़की है, आप देख लीजिए। तो आशा जी ने मुझे वहाँ रिकमेंड किया, रमेश जी ने मुझे बुला लिया जहाँ शूटिंग हो रही थी फिल्म सिटी में। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बात की, मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह देखे, बैकग्राउंड पूछा, थिएटर बैकग्राउंड था मेरा पूरा, फिर वो फिल्म थी टेलीफिल्म, तो उन्होंने बस देखा और मुझे वो स्क्रिप्ट वहीं थी ही, उन्होंने कहा ये ज़रा पढ़ दो, मैंने पढ़ दिया, बस उन्होंने मुझे ले लिया।
0: जी, तो आपका इसमें रोल क्या था, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हाँ जी, मेरा रोल था फूलमती, एक नेगेटिव कैरेक्टर था।
0: बिल्कुल।
1: हाँ।
0: और अगर हम बात करते हैं यश चोपड़ा साहब, उनका एक धारावाहिक आया था डॉक्टर साहब, जिसका जिक्र भी आप कर भी गई थी।
1: जी, जी, जी।
0: तो इसके निर्देशक परीक्षित साहनी थे।
1: जी हाँ।
0: तो प्रभा जी, दूरदर्शन के लिए एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक आया था अधिकार।
1: हाँ जी।
0: तो
1: हाँ।
0: जानू बरुआ साहब इसमें
1: डायरेक्टर थे।
0: तो इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका कैसे मिला आपको?
1: ये तो बस ऐसे सौभाग्य समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो गई थी वो उनसे प्रोड्यूसर से मिलने, वो मंजू सिंह थी ना,
0: मंजू सिंह थी,
1: तो मंजू सिंह जी से मिली। मुझे नहीं पता था कि इस एपिसोड को वो डायरेक्ट करने वाले हैं बरुआ जी, ये तो मुझे वहां जाके पता चला सेट पे कि वो जानू बरुआ जी। मैं तो जानू बरुआ जी को जानती भी नहीं थी तब तक, उतना वो नहीं था। तो उनके साथ मैंने एक चीज देखी, ये मैंने उनसे सीखा कि हम लोगों का उसमें जो रोल था वो था एक मजदूरों की लीडर का। तो उसमें क्या है, फिश का, कोल्ड स्टोरेज का, कि वहां पे वो फिश में वहां काम करती है कोल्ड स्टोरेज में लेडीज, तो उनका जो शोषण होता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ, वो होता है। तो मैं भी वही थी, और मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। अब उसमें तो मछलियां ही मछलियां, क्योंकि वही था मेरी हालत खराब, तो वो थी उसको साफ करने वाली, वो मजदूर हैं। तो वो टोकरे भर भर के और चारों तरफ सफेद सफेद वो मछलियां ही मछलियां। अब मुझे आ रही थी घिन बहुत भयंकर, क्योंकि मैं तो कभी छुआ ही नहीं मैंने। अब मुझे उन्होंने कहा चलो करना है तो करना है। अब जब मैंने किया तो मैं ऐसे घिना घिना के छील रही उसको। ये तो मतलब मैं इस तरह से करके दिखाऊं, कैसे दिखाऊं कि जैसे कोई बहुत पढ़ी लिखी मतलब एजुकेटेड लेडी, बहुत धीरे धीरे नाखून से उठाए, उंगलियों से उठाए, धीमे से रखे, लेकिन आप मजदूर हैं, आपका डेली का काम है वो
0: है।
1: तो आपका तो ऐसा तो नहीं होगा ना।
0: हाँ, हाँ।
1: कि आप इतनी नजाकत से उठाएंगी, इतनी नजाकत से रखेंगी।
0: रखेंगी, सही है।
1: वो जब मैंने ऐसे किया तो जानू बरुआ मुझसे बोले कि आपने कभी मछली नहीं छुई है क्या? मैंने कहा नहीं छुई। बोले क्या बात कर रही है? मैंने कहा हाँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बोले यहाँ मछली साफ करने वाली मजदूर है ये।
0: हाँ।
1: उसका जीवन मछलियों में है, वो दिखना चाहिए आपसे। मैं कहा आप क्या करूं? मैं कहा वो कैसा होता है मुझे नहीं पता। तो बोले इतनी टोकरी रखी थी, इतनी मछलियां आपको साफ करनी है, और उन्होंने रियल मजदूर लेके आए, वहां थे रियल मजदूर जो शूटिंग पे नहीं थे। उन्होंने कहा आप यहाँ बैठिए, इनसे सीखिए।
0: वाह।
1: मैंने उनसे सीखा, जब तक उस परफेक्शन से मैंने मछली छीली नहीं तब तक शूटिंग रुकी रही।
0: बहुत बड़ी बात।
1: और नाक मतलब मुझे ऐसे लगे मैं मर जाऊंगी उस बदबू से। तो मैंने कहा मैं नाक चढ़ रही, बोलने लगे आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका जीवन है वो, आप उन्हीं में रहती हैं, आपके चेहरे से नहीं लग रहा। क्या आप फैमिली अरेंज है?
0: बिल्कुल,
1: ये थे जानवी बरुआ। उन्होंने कहा आप ऐसा लगना चाहिए आपके जीवन है, क्या करती फिर मैं टोकरी ले मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, जितना तुम ये करोगे उतना होगा। तो मैं टोकरी लेकर खूब अच्छे से वो खुद छिल छिल के दिखा रहे कि इसको ऐसे छिलो, उसकी मुंडी ऐसे तोड़ो, इसमें से ऐसे धागा निकालो,
0: क्या
1: इतने फास्ट चलना चाहिए हाथ,
0: क्या बात।
1: तो ये मैंने
0: मतलब वो प्रैक्टिस दिखनी चाहिए,
1: प्रैक्टिस दिखनी
0: मतलब
1: चाहिए, मतलब आप रियल लगना हाँ, चाहिए। यही हाँ, बात है मंदाकिनी जी, जो मैं कह रही थी ना आपसे कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया और मैं चूंकि एपिसोडिक ज्यादा किए मैंने, इसलिए मुझे ये सौभाग्य मिल पाया। आप सोचिए कि एक तरफ रमेश सिप्पी, दूसरी तरफ गुलजार, तीसरी तरफ श्याम बेनेगल, जानू बरुआ,
0: बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर
1: थिएटर में भी और फिल्म्स में
0: टॉप ग्रेड के कलाकार,
1: टॉप ग्रेड के, और आवाज में भी, डबिंग में भी फिर यही लोग थे।
0: तो चलिए आपकी पसंद का कोई गीत सुन लेते हैं।
1: हाँ जरूर, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आए।

0: जाने कहाँ होके बहार,
1: डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि 1988 में धारावाहिक आया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक पर था, भारत एक खोज। तो इसके निर्देशक भी महान थे, श्याम बेनेगल साहब।
2: जी जी बिल्कुल।
1: और इस धारावाहिक में आपका जो किरदार था वो प्रेमवदा का था।
2: प्रेमवदा,
1: किस तरह से आपने प्रेमवदा का ये कैरेक्टर जिया?
2: बस वही जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर को जीना होता है उसको समझ के, उसके जीवन को फील करके। तो उनके साथ वो भी अगेन उतनी ही बारीकी से काम करने वाले थे कि वो मेन कैरेक्टर्स पे ही नहीं बैकग्राउंड पे भी वो उतना ही काम करते हैं। श्याम जी,
1: जी जी,
2: पर्दे को रियलिटी में कैसे आप जिए ये वो श्याम बाबू
1: सिखाते थे। आपने बहुत सारे धारावाहिक में प्रभा जी काम किया है, अगर हम यहाँ जिक्र करने बैठे तो शायद जो समय है वो पूरा हो जाएगा। हाँ। ब्योमकेश बख्शी थे उसमें आपने काम किया है, कई टेलीफिल्म्स में भी आपने काम किया है। इसके अलावा आपने शिव महापुराण की बात करें या आप बीती, कमांडर, सांच को आज, ऐसे बहुत सारे धारावाहिकों में आपने काम किया है, तारा है या एयर होस्टेस है। तो उस समय जो कहानी में गहराई होती थी, एक सामाजिक संदेश था, आज थोड़ा सा कम होता है, एपिसोड बहुत लंबे हो गए हैं।
2: हाँ, वो तो पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि आजकल कमर्शियल ही रह गया है प्रोग्राम बनाना। आजकल मतलब वो गहराई को छूना उनका उद्देश्य भी नहीं रह गया है। तो पहले जो होता था वो लोगों के दिलों में उतरना होता था।
1: जी,
2: अभी क्या है कि खींचना है उनको ज्यादा से ज्यादा।
1: आपने फिल्म अकेला में
2: और अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला, उसमें वो रोल था नर्स का जिसको वो फ्लर्ट करते हैं, तो फिल्म की लंबाई बढ़ गई थी तो उसकी वजह से वो रोल पूरा काट दिया गया मेरा।
1: तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्या आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं? बहुत सारे सीरियल्स में बहुत सारे कैरेक्टर को आपने अपनी आवाज भी दी है, जैसे कि स्मिता पाटिल हैं, मीनाक्षी शेषाद्री हैं, किमी काटकर हैं, रमैया, मुनमुन सेन और बहुत सारी अभिनेत्रियों के अलावा आपने जैसे जेम्स बॉन्ड जो फिल्म थी उसमें भी आपकी अपनी आवाज है।
2: 007 जेम्स बॉन्ड गोल्डन आई नाम था उस फिल्म का,
1: उसमें आपने अपनी आवाज दी। और धारावाहिक जो है ओम नमः शिवाय, मैं दिल्ली हूँ, रामायण और महाभारत में भी आपकी आवाज।
2: जी मेरी आवाज है
1: जी।
2: और उस समय तो लगभग हर सीरियल की हीरोइन मैं ही कर रही थी और फिल्म्स भी मैंने करीब 1000 के ऊपर फिल्म्स में अपनी आवाज दी है।
1: अच्छा।
2: हाँ
1: जी,
2: और उनमें से मैक्सिमम हीरोइंस के लिए मेरी आवाज मैंने दी है। तो जैसे आपने अभी बताया मीनाक्षी शेषाद्री, स्मिता पाटिल इनकी, और मतलब वो वाकई बहुत बड़ी विधा है, इसको डबिंग कहते हैं। अब तो लोग जानने लगे हैं डबिंग के बारे में, उस वक्त लोग नहीं जानते थे। डबिंग क्या है? एक्टिंग है विद लिमिटेशन।
1: तो स्मिता पाटिल के लिए आपको आवाज क्यों देनी पड़ी?
2: स्मिता जी की डेथ हो गई थी तो कुछ फिल्में थी जो तैयार थी और स्मिता जी नहीं रही, तो उनकी आवाज को मैच करती हुई कोई आवाज चाहिए थी, तो ये मेरी थी पेट, पाप और प्यार। इसमें अगर आप देखेंगी ना, मैं गारंटी देती हूँ आपने, मैं खुद नहीं पहचान पाती उस फिल्म को, मैं देखती हूँ सोचती हूँ ये वाकई मेरी आवाज है या स्मिता पाटिल की है।
1: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं?
2: देखिए, मैंने जब तक एक्टिंग की उसके बाद में मैंने अपना पूरा फोकस वॉइसिंग पे शिफ्ट कर दिया। वॉइसिंग का मतलब है आवाज की हर विधा।
1: अच्छा।
2: उसमें कार्टून भी आते हैं, कार्टून नेटवर्क है, उसमें फिल्में भी आती हैं, डबिंग आती हैं, डिस्कवरी है, PBC है, इसकी वॉइस ओवर है, विज्ञापन है, फिल्म्स हैं, ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, करती आ रही हूँ पिछले 20 साल से कम से
1: जी,
2: कम
1: जी।
2: तो सिर्फ आवाज़ कर रही हूँ और यही सारा काम मैं कर

0: रही हूँ।
1: कार्टून फिल्म का कोई एक डायलॉग याद है अगर आपको?
0: ऐसे एकदम पर्टिकुलर तो नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कार्टून में कैसे तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, बनाते हैं, सब आर्टिफिशियल आवाजें बनानी होती, जैसे कि क्या कहाँ से आ रहा है तो, अरे क्या बताओ, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मैं नहीं आ सकता, समझो समझो समझो करो समझो करो, कैसे छोड़ दूंगा,
1: हाँ बात को
0: ऐसे आवाज़ में।
1: चलिए गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: तुझे जीवन की डोर से बांध दिया है।

नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। अब से कुछ ही पलों में होंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। तमिलगा वित्री कजगम टीवी के प्रमुख श्री विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को बहुमत के 118 आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 सीट की आवश्यकता है। अब श्री विजय को सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा। वहीं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम AIADMK के निर्वाचित विधायकों के एक वर्ग ने पार्टी नेतृत्व से टीवीके को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया है। संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी श्री विजय की टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक समर्थन देगी। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा करने की बात कही है। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने आज गुवाहाटी में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माईसोन और हानताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। उन्होंने कहा कि औषधि प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के बाद वियतनाम में भारत की दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की UPI और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। जापान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओनोडा केमी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी LPG वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू LPG सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग LPG का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: और खेलों में IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
2: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
1: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
2: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
1: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के युवाड़ी कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में आप हैं अपनी दोस्त ज्योत्सना के साथ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी होंगी आपसे ढेर सारी बातें, कुछ रोचक जानकारियों और प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक सुविचार से। दोस्तों, लक्ष्य एक होता और रास्ते अनेक, तो यदि कभी रास्ता बंद भी हो जाए तो रास्ता बदलें, लक्ष्य नहीं। दोस्तों, ये था आज का सुविचार। और अब इस सुविचार के बाद हम चलते हैं अपनी चर्चा की ओर, जिसमें सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे वर्ली आर्ट यानी कि वर्ली कला के बारे में। दोस्तों, वर्ली एक प्रकार की जनजाति है जो महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले के धानू, तलासरी एवं जवाहर तालुकाज में मुख्यतः दूसरी जनजातियों के साथ पाई जाती है। ये बहुत ही मेहनती और कृषि प्रधान लोग होते हैं, जो बांस, लकड़ी, घास और मिट्टी से बनी टाइल से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। झोपड़ियों की दीवारें लाल काडू मिट्टी और बांस से बांध कर बनाई जाती है, जिसमें दीवारों को पहले लाल मिट्टी से लेपा जाता है, उसके बाद ऊपर से गाय के गोबर से लिपाई की जाती है। इस कला में मुख्य रूप से सफ़ेद रंग का उपयोग होता है, जिसे लाल या भूरे रंग की मिट्टी की पृष्ठभूमि पर बनाया जाता है। इस पेंटिंग्स में ज़्यादातर आकृतियों में त्रिकोण, गोलाकार और चौकोर आकार होते हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जैसे कि खेती, नृत्य, शिकार और धार्मिक अनुष्ठानों को। दोस्तों, इस कला के इतिहास के बारे में बात करें तो इस कला का इतिहास बहुत ही पुराना और समृद्ध है। इसका इतिहास करीब 2500 से 3000 साल पहले का महाराष्ट्र के वर्ली जनजाति से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इस कला का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान किया जाता है। दोस्तों, शुरुआत में वर्ली कला को दीवारों और मिट्टी की सतहों पर चित्रित किया जाता था, लेकिन आजकल वर्ली आर्ट का उपयोग केवल दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कपड़े, पेपर और विभिन्न प्रकार के सजावटी वस्तुओं पर भी किया जाने लगा है। यह एक लोकप्रिय आर्ट फॉर्म के रूप में भी उभरी है, जिसे लोग घरों की सजावट के लिए भी अपनाते हैं। समय के साथ वर्ली कला ने अपनी पहचान को बनाए रखा और आज इसे पूरे विश्व में सराहा जाता है। दोस्तों, वर्ली आर्ट न केवल एक कला है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर है, जो महाराष्ट्र की आदिवासी जनजातियों की जीवन शैली और परंपराओं को जीवित किए हुए है। इसकी सरल रेखाएं और प्राकृतिक सामग्री इसे एक अनूठी और पर्यावरण के अनुकूल कला बनाती हैं। वारली चित्रकला में निहित गहन भावनाएं और जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण इसे विशेष बनाता है। यह कला हमें प्रकृति और मानवता के बीच के संबंधों को समझने में मदद करती है और इसके माध्यम से हम आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को भी जान सकते हैं। दोस्तों, वारली आर्ट की यह यात्रा हमें न केवल भारतीय कला की गहराइयों में ले जाती है बल्कि हमें एक नई दृष्टि से जीवन को देखने का अवसर भी प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थी बातें वारली आर्ट के बारे में। आइए इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और अब इस गीत के बाद हम पुनः चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की छोटी इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्री आबादी को प्रभावित करते हैं और उनके रूप जीवन और जीविता को तय करते हैं। सामान्य अर्थों में जाने तो यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों और प्रक्रियाओं घटनाओं से मिलकर बनाई इकाई है। यह हमारे चारों ओर फैले हुए और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना भी इसी के अंदर संपादित होती है, तथा हम मनुष्य अपनी सभी क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी काफ़ी प्रभावित करते हैं, जो कि हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि यदि हम प्राचीन काल से देखें तो मनुष्य अपने चारों ओर की सुंदर प्रकृति को सहेज कर बड़े ही प्यार से रखते थे। उनका जीवन बहुत ही सीधा साधा और सरल रहता था। वह अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करते थे और साथ ही साथ अपने आसपास के पेड़ पौधों को भी पूरी लगन के साथ देखभाल करते थे, जिससे कि उनके चारों ओर एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ वातावरण रहता था। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आया और अपने कठिन परिश्रम से मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत सी प्रगति की और उनका रहन सहन और बेहतर होने लगा। धीरे धीरे समय बदला और मनुष्य ने अपने जीवन में नए नए आविष्कारों से न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, फैक्ट्रियां, मिलें, सड़कें आदि बन गई, और इन सभी उपलब्धियों के साथ साथ जाने अनजाने में वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी करते गए, जिससे कि हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा, जिसका उन्हें एहसास तक नहीं है। आज हम देखते हैं कि पहले जिस तरह से पेड़ पौधे, जंगल प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देते थे, उस तरह आज के समय में न के बराबर दिखाई देते हैं, जिसका कारण है वनों की कटाई। और यदि आज इसे ना रोका जाए तो यह हमारे भविष्य को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, उसके खराब रासायनिक तत्व जो जलाशयों में डाल दिए जाते हैं, उससे जल प्रदूषण फैलते जा रहा है और धुएं से निकलने वाली विषैली गैस हवा को प्रदूषित कर वायु प्रदूषण फैला रही हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान और प्रभावित कर रही हैं। और यदि इसी तरह चलता रहा तो भविष्य में मानव जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए इसे बचाने के लिए हमें इस विषय पर गंभीर रूप से विचार करना होगा कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हमें यह जागरूकता लानी होगी कि आसपास जहाँ भी संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और वृक्षों को काटे नहीं, साथ ही साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दें। जहाँ तक हो सके अपने आसपास सफाई रखें और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। क्योंकि यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा तो ही हम सुरक्षित यानी कि सेफ रह सकते हैं। तो दोस्तों बातें हम आगे और भी करेंगे, वक्त हो चला एक और गीत सुनने का, तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और अब इस गीत के बाद हम पुनः चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। दोस्तों आज के समय में हर युवा अपने करियर को एक नई दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके और उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो सके। लेकिन दोस्तों लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए एक अच्छे करियर का भी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो करियर बनाने के कई क्षेत्र हैं जिसको कि आप चूज़ कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है संगीत और गायन के क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में। दोस्तों आज के समय में लगभग हर कोई गीत और संगीत सुनना पसंद करता है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुनने के अलावा गाना भी पसंद करते हैं। यदि आपको भी इस फील्ड में दिलचस्पी या इंटरेस्ट है तो आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है सबसे पहले तो व्यक्तिगत कौशल का, यानी कि यदि आपको म्यूजिशियन बनना है तो उसके लिए आपको गायन और वाद्य यंत्र की बारीकियों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि पहले आपको सभी के बारे में जानकारी होना ही चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही क्रिएटिव भी होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है, इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपके अंदर धैर्य का होना आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र में लंबे रियाज की ज़रूरत होती है, तभी आप बेहतर सिंगर या इंस्ट्रूमेंटल एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इससे रिलेटेड कोर्स करें, जैसे कि दोस्तों BA ऑनर्स इन म्यूज़िक, BA ऑनर्स इन क्लासिकल वोकल म्यूज़िक, डिप्लोमा इन फोक म्यूज़िक, MA इन म्यूज़िक, और भी कई तरह के कोर्सेज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई संस्थाएं भी हैं जो इससे रिलेटेड कोर्सेज़ करवाती हैं, जैसे कि संगीत रिसर्च एकेडमी कोलकाता, संगीत निकेतन दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली और बनस्थली विद्यापीठ जयपुर जैसी संस्थाएँ हैं जिसमें एडमिशन लेकर संगीत और गायन की पढ़ाई आप पूरी कर सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बातें गीत और संगीत के क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में। आइए इन्हीं बातों के साथ सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, मनुष्य का स्वास्थ्य और जीवन ही मनुष्य की असली ताकत और उसकी पहचान होती है। और अच्छा और बेहतर जीवन जीने के लिए मनुष्य का हमेशा स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल के इस बिजी लाइफ में हम अपने सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें कई सारी परेशानियाँ, कई सारी समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सही और संतुलित आहार ही लें, इससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। भले ही आप कोई भी डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हों, लेकिन उसमें

इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी खाएं वो ताज़ा हो, क्योंकि खान पान के मामले में यह ज़रूरी है कि शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही हो। इसके अलावा दोस्तों, भारी चीज़ें जैसे कि अधिक तेल और मसालों से बने भोजन के बजाय हल्का और ऊर्जा से भरपूर भोजन ही लें। साथ ही दोस्तों, व्यायाम या योग ज़रूर करें। आपकी दिनचर्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसमें थोड़ा समय व्यायाम के लिए ज़रूर निकालें और कोशिश करें कि सुबह की शुरुआत ही व्यायाम के साथ हो। इससे पूरे दिन आपके शरीर में ऊर्जा का संचार बना रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। साथ ही दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए नींद भी अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर दोनों ही स्वस्थ रहता है। इसलिए रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद ज़रूर लें। इसके अलावा दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए खुश रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए कितनी भी चीज़ें क्यों ना कर लें, बगैर खुश रहे आप बेहतर परिणाम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि खुश रहने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी आधे से ज़्यादा बीमारियाँ तो अपने आप ही दूर हो जाती हैं और आप खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। साथ ही दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि आत्मविश्वास बेहतर स्वास्थ्य का दर्पण होता है। इसलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और खुद को हमेशा स्वस्थ रखिए। तो दोस्तों, बातें हम आगे और भी करेंगे, वक्त हो चला एक और गीत सुनने का, तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

दोस्तों इसी के साथ समय हो चला है प्रश्नोत्तरी का, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हमारे कल के पूछे गए प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों कल का प्रश्न था, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जिसका उत्तर है, विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण साथियों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: पंचो जय हिंद। हाँ भैया, देखा नारा लागल, अब अपन बैठकी शुरू भइल। और भैया कहल जाला कि अपन भारत देश तमाम ऋषि, महर्षि, विद्वान, ज्ञानी, चिंतक और तमाम दार्शनिक लोगन के साथे साथे समाज सुधारक, वैज्ञानिक, राजनेता, क्रांतिकारी, तमाम ऐसन लोगन से परिपूर्ण और भरपूर रहल बा। यही में एक नाम छत्रपति साहू जी महाराज के भी आवेला, जिनका राज पुण्यतिथि है। भैया हो इनकर नाम ऐसे भी अधिक होला, कहे से बहुत ज्यादे समाज सुधार भी कैले रहन। ई जैसे जो जातिगत भेदभाव रहे एहू के दूर कैलन। एकरे अलावा ई कहलन कि अगर इनके द्वारा जो 1902 में पिछड़े वर्गन खातिर सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण लागू कैल गई। भैया हो और इनका ई कहना रहे कि भैया समाज में समानता होएक चाहिए। ई जोन विधवा लोग होत रहिन उनके पुनर्विवाह खातिर भी एक बड़ा आंदोलन कैला। हां,
3: सबसे बड़ी चीज जोन बतौनी वेद भैया, हां, कि आज यहां के पुण्यतिथि है,
2: हां, 6 मई के भैया,
3: ऐसने ऐसने बड़े समाज सुधारक के,
2: हां,
3: ऐसने बड़े दलित जोन बाटे के बारे में सोचे वाले,
2: हां,
3: साथे साथे सबके बारे में सोचे वाले,
2: हां,
3: जोन

0: कहनी कि शिक्षा ही एगो मुक्ति के सबसे बड़ा शस्त्र
1: बा। हाँ, हाँ,
0: हाँ। एक प्रकार के विचार के व्यक्ति के आज महान व्यक्तित्व के आज पुण्यतिथि बा।
1: बिल्कुल,
0: सबसे बड़ी चीज। दूसर बात की यहाँ के जो शोषित वंचित आ पिछड़ा वर्ग खाती जो सोचनी आ जो यहाँ के शासन काल में जो महत्वपूर्ण काम कर वास्तव में संरक्षण से लिखल जाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आ दूसरी बात की जो बात बतौनी की पुनर्विवाह के जो कानूनी मान्यता यहाँ
1: कानूनी
0: जो बा बहुत बड़ी एगो यहाँ जो लड़ाई रहा वो सफल रहा आ एक वजह से जो बा
1: सामाजिक न्याय भी भैया सामाजिक न्याय के मसीहा भी रहा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और कोल्हापुर रियासत के राजा भी
0: राजा रहनी सबसे बड़ी चीज की जितना भी बात कहल जाए शब्द के माध्यम से कम बा। आज यहाँ के पुण्यतिथि पे यहाँ के दिल जाए जो बा बहुत बहुत जो बा बधाई। लेकिन सुखले हाथे नाई हम चाहब की एगो गीत के साथ।
1: बिल्कुल।

0: पंच हाँ भैया देखा गीत
1: गौराई भाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भैया। देखी जो अपने कार्यक्रम में भिन्न भिन्न प्रकार के जानकारी हम निकले के आवे, स्वास्थ्य संबंधित भी जानकारी हमेशा लेके आवे जाला। अगर देखल जाए तो सर के ऊपर के जितना अंग होला उ सब नाजुक होला, चाहे नाक हो के आंख हो के चाहे कान हो के,
0: पूरा शरीर के हर अंग महत्वपूर्ण बा भैया। लेकिन नाक कान गला के अगर समस्या हो जाला
1: नाजुक अंग,
0: नाजुक अंग कई जनबा कई गतिविधि रोक देला,
1: गतिविधि रोक देला। सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि नाजुक भले के नाते का जोन बात देख रेख में काफी सजगता चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आज ए विषय पे एगो भेंट वार्ता बा,
0: बिल्कुल भैया,
1: कि नाक कान गला की प्रमुख समस्याएं और इनका निदान, ये विषय जानकारी देते डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव जी, बात करते हैं डॉक्टर भजन नारायण जी। तो पंच भाई ये विषय पे जानकारी लें, अल्लाह उठा।
2: नमस्कार। देखिए, शरीर को जितना आप सहूलियत के साथ रखेंगे, जितनी सावधानी के साथ रखेंगे, उतनी आप स्वस्थ रहेंगे, आपका जीवन उतना आसान होगा, उतना सहज होगा। इसके बावजूद कई बार हम अपनी लापरवाही के कारण बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं, विशेषकर खान पान में पानी की गड़बड़ियों के कारण। खास करके गाँव के क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि इन्फेक्शन बहुत तरह के होते हैं। उनमें भी जो इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो है नाक और गले का इन्फेक्शन, और लोगों को सर्दी जुकाम पहले आती है, छींक बहुत पहले आने लगती है। तो ये क्यों होता है और फिर इसके साथ जुड़ी हुई और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, आज इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में प्रख्यात नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो आम समस्या है कि सर्दी जुकाम और छींक आना, ये बहुत ज्यादा सामान्य रूप से लोगों को आता है। कभी कभी तो होता है कि व्यक्ति सुबह उठता है उसके साथ ही उसे छींक आने लगता है। कभी कभी अगर मौसम बदल रहा है तो उस समय भी छींक बहुत ज्यादा आती है, सर्दी जुकाम होने लगता है। और कभी कभी किसी को लगता है कि आदतन उनके जीवन में हमेशा ही छींक आती रहती है, दिन भर छींक आना। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये जो छींक है ये कितना घातक है हमारे शरीर के लिए।
3: छींक घातक तो नहीं कह सकते, लेकिन छींक एक तरह का इंडिकेशन है जो आपको बता सकता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है। छींक एक लक्षण है, इसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आगे आप इसका इलाज करा सकते हैं। आमतौर पे भारतवर्ष में एलर्जी बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग हैं जो एलर्जी से पीड़ित हैं जिनको पता नहीं है कि उनको समस्या क्या है। तो बार बार छींके आना, नाक से पानी आना, नाक में खुजली बहुत ज्यादा होना, सुबह उठते हैं लगातार छींके आती हैं, तो ये लक्षण है। एलर्जिक राइनाइटिस होती है कंडीशन, नाक की एलर्जी जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। तो ये इनिशियल स्टेज होता है, एलर्जी नाक से चालू होती है। आदमी अगर व्यक्ति अपने इस दिक्कत को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनकी बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। यही है, अगर इस छींक को अगर हम आगे नहीं ध्यान देते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो आगे जाके जो आज के समय में हम लोग एस्थमा सुनते हैं बहुत कॉमनली, सांस की दिक्कत होती है, छाती में फेफड़े में चली जाती है एलर्जी, तो एस्थमा का रूप धारण करती है जो कि प्राणघातक होती है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर नाक कान गले की बात करें तो ये देखने में तो बड़ा छोटा लगता है कि इससे जान तो नहीं जाती है, लेकिन कई बार इसकी समस्या बहुत परेशान करती है।
3: बिल्कुल।
2: कान में अगर हल्का सा दर्द शुरू हो जाए तो कान तो बिल्कुल लगता है जैसे कि जीवन ही दूभर हो गया है। इसी तरह से नाक के साथ भी होती है, लेकिन जो मुख्य समस्याएं आती है नाक कान गले के साथ, वो क्या क्या समस्याएं आती है?
3: मेन समस्या सर, बीमारियां तो बहुत सारी हैं, बहुत बीमारियां हैं जो कान नाक गले से संबंधित हैं। कहने को तो बहुत छोटे से जगह है, कान बहुत छोटा सा होता है, नाक बहुत छोटा सा एक ऑर्गन है, गला छोटा सा है, लेकिन इनकी बीमारियां अनेक हैं। कान में बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि दर्द होना कान में बहुत कॉमन बात है, और कान का दर्द ऐसा होता है असहनीय होता है। जब तक आप किसी कान के डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, चांस बहुत कम है कि आपको दर्द में आराम आए। आप दर्द की दवा ले लेंगे लेकिन उससे फायदा नहीं होने वाला। तो कई कारण होते हैं, कान में बहुत कॉमनली इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। कान में पानी चला जाता है जिसकी वजह से कान के पर्दे में सूजन हो जाती है, कान में मैल जम जाता है, वो मैल बहुत ज्यादा दर्द करता है। कान में फंगस का इन्फेक्शन होता है, जो लोग डायबिटिक हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें कान में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और ये सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। वैसे ही गले में टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो गया, भोजन की नली में इन्फेक्शन हो गया जिसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं, सांस की नली में इन्फेक्शन है उसको लैरेंजाइटिस बोलते हैं। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो कि लोग ध्यान नहीं देते कि हाँ हो गया, ठीक हो जाना चाहिए, कुछ दिनों तक वेट करते हैं और वो आखिरकार सीवियर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही नाक में छोटी मोटी दिक्कतें चालू होती है, नहीं ध्यान देते हैं, तो आगे जाके नाक में कभी कभी मांस बन जाता है एलर्जी के कारण, कभी इन्फेक्शन के कारण नाक से खून आना बहुत कॉमन है।

0: वो माचिस की तीली से या कोई रुई लगाकर लकड़ी से वो साफ करते हैं और वो और घातक हो जाता है। तो ये जो कान में तेल डालने की जो परंपरा है ये कितने घातक है?
1: भगवान ने कान ऐसा बनाया है कि उसको खुद साफ करने के लायक बनाया है ऊपर वाले ने। कान में जो गंदगी होती है वो स्वयं अपने आप अंदर से बाहर प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है जिससे कि मैल बाहर निकलती जाती है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो कभी भी हमें अपने कान को खुद से साफ नहीं करना चाहिए, कभी भी उसमें तेल ना डालें। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, खुद से कान साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कराना है तो किसी भी कान के डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। कान में तेल डालना, कान में माचिस की तीली से साफ करना, ये सब इन्फेक्शन भी करते हैं। और कान का पर्दा बहुत बारीक होता है, 1 मिलीमीटर के भी आप 10 टुकड़े अगर कर दें तो 0.1 मिलीमीटर उसकी थिकनेस होती है। तो उसमें अगर डैमेज होता है तो कान के पर्दे में छेद हो जाता है और किसी किसी मरीज में फिर आगे जाके उसको ऑपरेट करना पड़ता है, वो बीमारी इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। तो कभी भी कान खुद से साफ नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कहीं पढ़ा था कि जो कान है वो सिर्फ सुनने का ही काम नहीं करता है बल्कि हमारे शरीर को बैलेंस करने का भी काम करता है। अगर कोई व्यक्ति डगमगा के चल रहा है और उसकी चाल कुछ चेंज हो रही है तो अगर ENT के डॉक्टर देखेंगे तो कहेंगे कि आपके आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो और उसका इलाज दूसरे तरीके से होता है। तो बैलेंस करने में शरीर को कान की क्या भूमिका है?
1: कान एक जो हमारा कान है उसका 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो जो सबसे अंदर का भाग होता है कान का, वहां से कान की नस जाती है जो दिमाग से कनेक्टेड होती है और उसका काम होता है शरीर के बैलेंस को मेंटेन करना। तो उस नर्व में जैसे उम्र के साथ कभी कभी नस कमजोर हो जाती है, कभी चोट की वजह से हो जाता है, कभी नसों के ट्यूमर के कारण हो जाता है, तो हमारे नर्व जो हमारे कान का इनर ईयर है वो मैकेनिज्म हमारा डिसबैलेंस हो जाता है।
0: जी, जी।
1: और वो जब डिसबैलेंस हो जाता है तो चक्कर आना
0: जी,
1: तो ये बहुत बड़ा लक्षण होता है जो कि आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता। चक्कर आता है तो उनको पता ही नहीं होता इलाज कराना किससे है।
0: जी, जी, जी।
1: तो मरीज परेशान होता है, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। तो बहुत कॉमन होता है कि और लोग इग्नोर कर देते हैं कि कान की भी समस्या है, उससे रिलेटेड चक्कर हो सकता है, ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो थोड़ा सा इस बारे में अवेयरनेस फैलाना काफी जरूरी है।
0: हाँ,
1: हम ही लोग को ये काम करना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे उनको जरूर समझ में आ रही होगी ये बात कि अगर आपको चक्कर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर की चोट हो या सिर में या आंखों में कोई दिक्कत हो सकती है, कान की भी दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में अपने फिजिशियन से संपर्क करने के बाद अगर आपको बहुत लाभ नहीं हो रहा है तो आप एक बार ENT के विशेषज्ञ से भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नाक की अगर बात करें तो जाड़े का अब समापन है और गर्मी आने वाली है और गर्मी में नाक सूखने की बड़ी समस्या होती है और सूखते हैं तो लोग उंगली से उसको कुछ कोशिश करते हैं उसको तर करने का और उस चक्कर में उनके नाक से खून भी आने लगता है। तो इसका रीजन क्या है और इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए?
1: मौसम चेंज की वजह से कई सारे लोगों में नाक की जो चमड़ी होती है वो काफी ड्राई हो जाती है, सूखा पन आ जाता है
0: जी।
1: तो चिकनाई की कमी के कारण ही वहां पपड़ी जमती है और लोग उसको आमतौर पर साफ करते हैं और वहां से ब्लड आना चालू हो जाता है
0: जी।
1: तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस इतना ही ध्यान रखें कि अपनी नाक की चिकनाई को मेंटेन करें। बिना मतलब नाक को जोर से छिनकना नहीं होता, नाक साफ नहीं करना है, इन चीजों से बचें, इन आदतों का थोड़ा परहेज करें।
0: हाँ।
1: और नाक में चिकनाई करें, जैसे घर पे आमतौर पे गांव में लोग अपने नाक में घी डालते हैं जो कि
0: हाँ हाँ।
1: पुरानी प्रैक्टिस है जो कि बहुत अच्छी चीज है।
0: हाँ हाँ।
1: ये नाक को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, तो ये अच्छी चीज है। नाक में थोड़ा बहुत तेल हल्का फुल्का कभी कभार डाल सकते हैं। तो ड्राइनेस बहुत बड़ा कारण है, वो क्रस्टिंग होती है नाक के अंदर।
0: हाँ हाँ।
1: और वो क्रस्ट निकलते हैं, पपड़ी निकलती है और वहाँ की जो सतह होती है नीचे की, वहां से ब्लड आना फिर चालू हो जाता है और वो काफी परेशान करता है।
0: तो श्रोताओ, दो बातें डॉक्टर साहब की आप ध्यान में रखेंगे कि कान में कभी भी तेल नहीं डालना है और नाक में अगर जरूरत हो तो हल्का सा घी लगा सकते हैं ताकि उसकी ड्राइनेस खत्म हो जाए और वो गीलापन बना रहे। डॉक्टर साहब, नाक से अगर हम थोड़ा अंदर की तरफ चले तो गला आता है और गले में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी कोई गटकने में लोगों को गले में दर्द होता है, कभी कुछ टोटका भी करते हैं लोग। तो गले में जो दर्द होता है कुछ गटकने में, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और गले की एक और समस्या जो बहुत आम है वो है खांसी आना। गले से जब खांसी आती है तो भी तकलीफ होती है, तो इन दोनों चीजों के विषय में कुछ बताइए।
1: गला तो सर इन्फेक्शन बहुत कॉमन है गले में आज के टाइम पे, प्लस मौसम चेंज की वजह से गले में एलर्जी भी बहुत प्रभावित करती है। तो हमारे भोजन की नली, सांस की नली और गले में टॉन्सिल्स होते हैं, ये 3 चीजें आमतौर पे अफेक्टेड होती हैं।
0: हाँ हाँ।
1: जिसकी वजह से खाना खाने में दिक्कत होना, थूक निकलने में परेशानी होना, गले में बहुत ज्यादा दर्द होना, ये कॉमन इन्फेक्शन होते हैं गले में। इसके अलावा हमारे भारतवर्ष में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इनका सेवन भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीजें भी गले को प्रभावित करती हैं, आगे जाके बड़े रोगों का, कैंसर का भी फॉर्म ले सकती हैं।
0: हाँ हाँ।
1: तो हमें सतर्क होना चाहिए, गले में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तुरंत आसपास किसी भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओरल कैविटी का कैंसर, मुंह का कैंसर और सांस की नली का, लैरिंग्स का कैंसर भारत का सबसे ज्यादा, ये दोनों मिला के नंबर 1 कॉजेज ऑफ कैंसर है इंडिया में। और इनके बारे में अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है लोगों में, लेकिन लोग आमतौर पर गुटखा, तम्बाकू,

0: सिगरेट इनको छोड़ नहीं पाते
1: हाँ,
0: और ये आगे बीमारियां करती ही करती हैं।
1: जी, जी,
0: तो
1: जी,
0: इनको बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल प्रयोग में ना लें, इन आदतों को छोड़ें और खाना पीना अच्छा रखें। बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाना, चाय पीना भी बहुत ज्यादा हानिकारक
1: जी,
0: होता है।
1: हाँ, तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चीजें हैं, कई बार कहते हैं कि टॉन्सिल की जो समस्या होती है, टॉन्सिलाइटिस जैसे कहते हैं, कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, गले में दर्द होता है और उसके साथ वो खांसी आती है, तो इसका उपाय लोग कई बार कहते हैं कि इसको ऑपरेट करके निकलवा देना। ये क्या ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है इसका?
0: सभी टॉन्सिल के मरीजों में ऑपरेशन जरूरी नहीं है, सब में किया भी नहीं जाता। टॉन्सिल में नॉर्मली इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की दवाइयां चलती हैं, एंटीबायोटिक्स और सूजन कम करने के लिए दवाइयां, ये सारी चीजें ज्यादातर 90% लोगों में कारगर होती हैं और इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है हफ्ते 10 दिन में। किसी किसी मरीज में ये बार बार होते हैं लक्षण, साल में कई बार जब होने लगे या कई सालों से लगातार दिक्कत करे, उन्हीं स्पेसिफिक मरीजों में हम ऑपरेशन करते हैं। हर मरीज में टॉन्सिल का ऑपरेशन जरूरी नहीं होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिनों पहले जैसे हम लोगों ने बहुत भीषण समस्या कोरोना के रूप में देखी, और कोरोना में लोग कहते थे कि गले का इन्फेक्शन नाक के माध्यम से इन्फेक्शन, हालांकि किधर से भी हो सकता था, लेकिन ये मुख्य माध्यम थे और इसके लिए हम लोगों ने मास्क लगाने की एक आदत डाली थी। वो मास्क कितना लाभदायक है, क्या सामान्य स्थिति में भी मास्क का प्रयोग करना चाहिए?
0: अभी के समय नॉर्मली हर इंसान को मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां धूल बहुत ज्यादा है, डस्ट बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन है, तो बिल्कुल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। नियमित तौर से रेगुलर मास्क का यूज मैंडेटरी नहीं है, सबको हमेशा जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी बैठे हो तो मास्क प्रयोग करें। अगर आप ऐसी जगहों पे हैं जहां की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, आजकल AQI इंडेक्स सबके फोनों में आजकल पता चल जाता है, तो अगर वहां की एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बिल्कुल मास्क का यूज करें, लेकिन रेगुलर इसका यूज बहुत जरूरी नहीं
1: है। नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड इरा की बात करें, जो हम लोग जिस 2021 के बाद अगर इस समय देखें, तो कहते हैं लोग कि बहुत सारी समस्याएं कोविड के आफ्टर इफेक्ट के रूप में बहुत सारी दिखाई पड़ती हैं। क्या नाक कान गले पर भी कुछ इसका प्रभाव है?
0: बिल्कुल, नाक में एलर्जी के केसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं कोविड के बाद। जो पोस्ट कोविड मरीज हैं, जो कोविड के संक्रमण के बाद वापस से नेगेटिव हो गए और वो ठीक हो चुके हैं, उन मरीजों में एलर्जी के लक्षण बहुत ज्यादा कॉमन दिख रहे हैं। कई सारे मरीजों को नाक से छींक आने की कंप्लेंट्स हैं। बहुत सारे मरीज हैं जिनमें महक चली गई कोविड के बाद से, वो वापस नहीं आई, जिसको एनोस्मिया बोलते हैं। ये कंप्लेंट्स भी काफी मरीजों में है। तो ओवरऑल तो नाक में ही इम्पैक्ट ज्यादा रहा है, लेकिन शरीर के हर अंग को किसी न किसी तरह से कोविड ने प्रभावित किया है।
1: तो उसका प्रॉपर देखरेख किया जाए, इलाज में रहे, अगर डॉक्टर के संपर्क में रहे तो शायद उसे
0: जी बिल्कुल किसी भी छोटे मोटे लक्षण को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: सरकार ने हर जगह प्राइमरी हेल्थ केयर दे रखा है, लोग उसका फायदा उठाएं, अपने आसपास के डॉक्टर से मिलें, जो भी अपनी तकलीफ हो कम से कम उसका इलाज कराएं।
1: हाँ, हाँ।
0: इग्नोर।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि जैसे नाक और कान जो हमारे हैं, वो सौंदर्य के भी बहुत बड़े अंग माने जाते हैं। कानों में कुंडल पहनना, बालियां पहनना, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है, नाक में भी लोग पहनते रहे हैं, क्या इसका कोई साइंटिफिक लाभ भी है? अगर कहते हैं लोग जैसे हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कान।
2: यही भेंटवार्ता के साथ भैया आपने बैठकी के समय समाप्त भइल। पंच भाई लोगों से विदा लिया जाए, चल जाए। पंचो जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब होंगे भोजपुरी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम थीम पर आधारित नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के समापन समारोह में हिस्सा लेने। यह मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहने कि रक्षा त्रिवेणी संगम टेक्नोलॉजी, ज्ञान और इनोवेशन के एक के मंच पर लौले का ऐतिहासिक कोशिश हो। वहाँ के कहने कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के पौले के दिशा में प्रभावी तरीका से आगे बढ़ रहा हो। श्री योगी कहलन कि उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तेजी से आगे बढ़त दिखाई दे रहा बा।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत आयात प्रधान से निर्यात प्रधान राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज उसका परिणाम क्या है? भारत 38,000 करोड़ रुपए से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद को निर्यात करने की सामर्थ्य विकसित कर चुका है और इसको तत्परता के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने जो अपने 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अपने यहाँ विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, उसके बेहतरीन परिणाम आए हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, यहाँ पे हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी नहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों का समस्या सुनने। ए दौरान वहां के गंभीर बीमारियन के इलाज बदे लोगों के हर तरह से मदद का आश्वासन देने। एगो रिपोर्ट।
2: जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज कराने में भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद व पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशानी न होना पड़े। बीमारियों के इलाज में मदद मांगने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल का एस्टिमेट मिलते ही विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलन में रेलवे परियोजना के मंत्रिमंडल का मंजूरी मिलने का स्वागत कर लिया हमें। एगो रिपोर्ट।
3: एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के जनहित से जुड़े फैसलों का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के लिए वर्ष 2026-27 चीनी उत्पादन सीजन के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना स्वागत योग्य कदम है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: सरकार सोशल मीडिया पर चल रहल ओ वीडियो का खंडन कैले बा जैमे रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के ई दावा करत दिखावल गेल बा कि पाकिस्तान पछिला साल 10 मई के भारत के सिस्टम के जाम कई देले रहे। मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन में 8 मई ले कहीं कहीं बरखा औरी गरज चमक के साथे बौछार पड़ले का संभावना जतौले बा। विभाग ए अंचल में बेहने कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्टो जारी कैले हो। ए बीचे गोरखपुर आए करे आसपास के कुछ जिलन में अजुओ बरखा भइले का समाचार हो। अगला एक हफ्ता के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का और न्यूनतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरियों को संभावना जतावल गई हो। आईपीएल क्रिकेट में बहने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेलल जाए। ये समाचार बुलेटिन हमने के यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी मौजूद हो। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भेल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम की थीम पर आधारित नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा त्रिवेणी संगम टेक्नोलॉजी, ज्ञान और इनोवेशन को एक मंच पर लाने का ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत आयात प्रधान से निर्यात प्रधान राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज उसका परिणाम क्या है? भारत 38,000 करोड़ रुपए से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद को निर्यात करने की सामर्थ्य विकसित कर चुका है और इसको तत्परता के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने जो अपने 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अपने यहाँ विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, उसके बेहतरीन परिणाम आए हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, यहाँ पे हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज में लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एक रिपोर्ट।
2: जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज कराने में भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद व पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशानी न होना पड़े। बीमारियों के इलाज में मदद मांगने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल का एस्टिमेट मिलते ही विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। एक रिपोर्ट।
3: एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के जनहित से जुड़े फैसलों का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के लिए वर्ष 2026-27 चीनी उत्पादन सीजन के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना स्वागत योग्य कदम है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में 8 मई तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इस अंचल में कल कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच गोरखपुर और इसके आसपास के ज़िलों से आज भी बारिश के समाचार मिले हैं। अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की भी संभावना जताई गई है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला जाएगा। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
1: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
2: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: पंचों जय जवान जय किसान। हाँ भैया, देखा नारा लागल अपन बैठकी शुरू भइल और भैया हो अपने किसान और पंच भाई के सबसे बड़ा उद्देश्य ही रहेला कि खेत अगर सही रही, खेत के उपज क्षमता बढ़िया रही तो ओकर जोने बा भैया धान गेहूं अरहर खरीफ दलहन कोनो भी फसल हो के ओकर पैदावार बढ़िया हुई। अब में खेत के तैयारी, बीज शोधन, खेत के रखवाली, सिंचाई के साथ साथ दूसर भी कई काम भैया महत्वपूर्ण होला फसल के उपज में।
4: बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज वेद भैया देखिए, समय गर्मी चल रहा है लेकिन पूर्वांचल में कहीं न कहीं कबो न कबो बरखा हो जाता है, इससे खेत जोन बा काफी हरा भरा।
3: बिल्कुल भैया,
4: लेकिन सब मिला जुला के गर्मी में जो जुताई के बात होला, अगर गहराई से अगर जुताई अगर हो जाए
3: बिल्कुल,
4: तो वास्तव में देखल जाए कि खेत इतना बढ़िया तैयार हो जाए कि ओकर आ वाला फसल पे बड़ा असर पड़ेगा। जब सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज कि अगर ऊपर से अगर धूप लगाता गहरा जुता गई बा तो जोन भी तत्व बने जोन बा हरिहर हो जाना है, अनुपयोगी तत्व बने जल जाने।
3: बिल्कुल,
4: ऐसे जोन बा मिट्टी जोन बाटे उपयोगी हो जाना आओ वाला फसल खाती।
3: लेकिन गहरी जुताई बहुत महत्वपूर्ण है।
4: हाँ, सबसे बड़ी चीज गहरी जुताई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी गहरी जुताई अगर हो जाला तो जो खर पतवार बना जैसे जिद्दी टाइप के दूब भइल घास भइल
3: निकल जाला,
4: वो भी निकल जाला, वो जोन बा घाम पड़े झुरा जाला।
3: बिल्कुल,
4: जिद्दी खर पतवार एक बहुत बड़ा समस्या है। पंच भाई आओ दिन देखल जाला कि कोनो फसल बोता ना,
3: बिल्कुल
4: अगर खर पतवार से परेशान बने तो इतना ज्यादा पैसा होकर निराई गुड़ाई में लग जाता कि जो बाटे हालत खराब हो जाता। तेसे पंच भाई निजात पा सके ना और गहरी जुताई कर देता है।
3: मतलब कुल ओर से फायदेमंद और लाभकारी।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो किसान भाई लोगन खातिर भैया ये सुझाव बा कि हमेशा खेत के गहरी जुताई जरूर करें।
4: बिल्कुल,
3: उसे कई स्तर से उनके लाभ
4: लाभ बटे। बिल्कुल पंच भाई, कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए। आई सुना जा पहले वो लोकगीत।

0: हाँ पंच भाई पूरा मनमन साइन भाई
1: बिल्कुल भैया,
0: लगले हाथे आई सुनिए एगो बातचीत। कद्दू वर्गी सब्जियों में फफूंदी जनित रोग, ये विषय जानकारी देते ना डॉक्टर पीके सिंह जी, बात करते ना विनय कुमार जी।
2: आ खरीफ मौसम में लता वाली सब्जियन का प्रमुख स्थान है। बहुत किसान भाई ऐसा न हो कि लता वाली सब्जी के तो खेती करेला, लेकिन उनके मन मुताबिक उत्पादन नहीं मिलेला। केहू कहला फर त लगत बा लेकिन बतिया टिकत नहीं बा, केहू कहता कि बतिया लगते नहीं बा खाली फूल लगत बा और वो मुरझा के गिर जात बा। कुछ लोग तो ऐसन कहे न कि एक एक बित्ता का बतिया हो जात बा आ फिर उ सड़ सड़ के गिरे लगत बा। कुछ लोग कहे न कि खूब हरियर बा पतई बढ़हन बा लेकिन ओमे न फर लगता आ न फूल लगता खाली नार बढ़त चल जात बा। यह कुल समस्या के समाधान खातिर आज हमारे साथ फोन लाइन पर उपलब्ध हूँ डॉक्टर पीके सिंह, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बाटे। डॉक्टर साहब ई जितना कुल हम बात बतौली हैं वो हमें लोग कहे ना, आपो लोग बार बार बताई ना कि जैसे मनई के रोग लागेला फफूंदी से खजुअट होला दिनाई होला उकवत होला अपरस होला, यही तरह से पौधन में भी फफूंदी जनित रोग होला, तो लता वाली सब्जियन में फफूंदी से कौन कौन रोग होला और ओकर सही में लक्षण का है कैसे लोग पहचाने?
3: तो विनय जी आपने बहुत सही मतलब इस समय ये प्रश्न किया कि जो कद्दू वर्गीय लता वाली फसलें हैं उनमें वैसे तो कई तरह के रोग होते हैं कि कुछ फफूंद से होते हैं, कुछ विषाणु जनित होते हैं और कुछ बैक्टीरिया से भी होते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि जो फफूंद जनित रोग हैं तो उनमें कुछ रोग प्रमुख हैं। जैसे एक तो पाउडरी मिल्ड्यू है जिसको हम कहते हैं कि चूर्णी लासिता, ये पत्तियां पे अगर आप देखें तो पत्ती की निचली सतह से ये शुरू होता है और छोटे छोटे पहले हल्के से धब्बे बनते हैं और उसके बाद ऐसे लगता है कि इसके ऊपर पूरा पाउडर जैसा लगा दिया गया है पूरी पत्ती पे,
2: रुई की तरह
3: नहीं, रुई की तरह तो जो डाउनी मिल्ड्यू आता है इसमें अच्छा। पाउडर जैसा रहता है, बिल्कुल पाउडर जैसा।
2: हाँ।
3: और आप देखें जब मौसम गर्म होता है और बारिश नहीं होती है उस समय ये ज्यादा जोर पकड़ता है, और जैसे खरबूजा है लौकी में इस समय ये काफी आ रहा है। तो इसके लिए एक तो ये होता है कि जब ये पूरा पाउडर जैसा पत्ती पे फसल पे लग जाता है तो प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल जो पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और अगर रोकथाम नहीं की जाए तो पूरी फसल जो है वो हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाती है। ये तो इसकी पहचान हो गई कि बिल्कुल पाउडर जैसा उसके ऊपर दिखाई देगा निचली सतह पर और बाद में वो फिर पूरे पौधे पे ऊपर नीचे फलों पे हर जगह हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए एक तो कार्बंडाजिम जो दवाई है इसको, कार्बंडाजिम को 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका छिड़काव करें। दूसरा पेनकोनाजोल है तो पेनकोनाजोल को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिलती है तो कैलेक्सिन एक दवाई है उसको 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका स्प्रे करें, और ये 5-6 दिन के अंतर पर 3 बार स्प्रे जरूर करें, मतलब इसको 2-3 बार दोहरा दें तब जाके इसका पूरी तरह रोकथाम हो जाती है। दूसरी एक बीमारी है जो वो फफूंद जनित है वो मृदरोमी लासिता, जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, जो आप बता रहे थे कि रुई जैसा हो जाता है वो इसमें होता है।
2: अच्छा।
3: और ये लगभग सभी कद्दू वर्गीय फसलें, चाहे आपकी लौकी तोरी कोहड़ा खरबूज तरबूज, लगभग सभी में आती है। और इसका भी होता है कि जब ज्यादा नमी, जैसे आप एक दिन बात कर रहे थे हम लोग कि पौधे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, नीचे वाली पौधे जो पत्ती बेल होती है वो पत्तियां उसकी पीली पड़ जाती हैं, जमीन में कहीं पानी रुक जाता है, तो जहां ज्यादा नमी होती है और गर्मी, तो इस समय जहां किसान भाइयों ने अगर ऐसी जगह लगाया हुआ है कि जहां पानी रुकता है, अगर उन्होंने सिंचाई की और पानी रुक गया वहां पे और गर्मी पड़ी रही है तो उस समय ये रोग आता है या बरसात होने पे आता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके पौधे के पत्ते हैं उसके ऊपर ढेर सारे पीले पीले और कोनेदार, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि पत्ती की ऊपर मोजेक जैसा बन गया है, और ये मोजेक बहुत तेजी से बढ़ता है और फसल को खत्म कर देता है। बहुत मतलब भयंकर बीमारी है ये मृदरोमी लासिता। तो इसके लिए बिल्कुल किसान भाइयों को जैसे ही लगे कि उनके खेत में पीले ढेर सारे पत्ते पे वो निशान आ रहे हैं, कोनेदार पत्तियां वो उसके बन रहे हैं धब्बे, तो तुरंत ही सतर्क

0: हो जाना चाहिए। और ये खरबूजा और आपका जो तोरी है धारी वाली तोरी, उसमें बहुत ज़्यादा इस समय आता है, तो उसके लिए मैंकोजेब को दो है दो या तीन बार 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करें, और इससे ये काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाता है। तीसरी एक बीमारी है एंथ्रेक्नोज। ये इसमें होता है कि पत्तों के ऊपर लाल भूरे रंग के और सूखे हुए धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिल जाते हैं और पूरा पत्ता जो है वो भूरा हो जाता है, और पत्ती का डंठल पे आप देखें तो ऐसे लगेगा कि पीले रंग का हो गया है, लेकिन उसमें पानी सोख गया है, तो वाटर सोक्ड मार्क बनता है, और ये फिर फलों में भी चला जाता है, फलों पे भी इसके निशान मिलते हैं। और ये भी तभी होता है जब ज़्यादा नमी हो या नम मौसम होता है, और नमी के लिए जैसे हमने बताया कि जो लोग मचान पे फसल लगाते हैं उनमें ये रोग कम आता है, तो इसके लिए भी आप मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, या जो जीनेब होता है जीनेब का भी स्प्रे कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर, और अगर ये नहीं मिलती तो कार्बन डाजिम को 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से भी ये नियंत्रित हो जाता है, तो उसका छिड़काव कर सकते हैं। चौथी बीमारी एक फ्यूजेरियम विल्ट है। ये किसान भाई हमारे बहुत कई बार होता है कि पौधा जैसे ही उगा, उन्होंने बीज बोया था, पौधा उगा थोड़ा, और पता लगा कि 4-6 दिन बाद ऐसे हुआ कि वो मुरझा गया और वो खत्म हो गया पौधा। तो ये बहुत आम बीमारी है जो ये लता वाली फसलों में आती है, और खीरा और जुकुनी में इसमें जो है, या स्क्वैश जो कद्दू है इसमें ये जड़ गलन होता है, वो भी फ्यूजेरियम की वजह से होता है, तो उसको जड़ गलन कहते हैं, और इसमें बाकी में ये उकठा हो जाता है, पौधा उकठ जाता है। इसमें बड़े पौधों में अगर आप देखें जो जमीन से जहाँ जुड़ता है पौधा, जमीन के ऊपर का हिस्सा और उसके जड़ नीचे का जड़ का हिस्सा, तो वहाँ पे पीला या भूरा रंग का होके और बिल्कुल ये सिकुड़ सा जाता है, तो ये मृदा जनित फफूंद है चूँकि फ्यूजेरियम, और इनका सबका जो नियंत्रण है वो कठिन होता है, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है कि अगर आप फसल को कैप्टान 2 ग्राम प्रति लीटर से छिड़काव करें और ड्रेंचिंग कर दें, छिड़काव किया ड्रेंचिंग करें, जो जो पौधे ऐसे हैं जिन पे ड्रेंचिंग। इन सब के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे आपको लगा कि कोई पौधा आपका बीमारी से ग्रसित हो गया है, चाहे वो पाउडरी मिल्ड्यू आ गई या डाउनी मिल्ड्यू आ रही है या फ्यूजेरियम विल्ट आ रहा है, तो उस पौधे को उखाड़ के और खेत से दूर कहीं उसको या तो जला दें, या फिर कहीं गड्ढे में उसको जमीन के नीचे 1-1.5 फीट गड्ढे में दबा दें, ताकि ये फैले नहीं, क्योंकि फफूंद है स्पोर के द्वारा फैलती है, तो वो माइसिलियम कहीं भी दूसरे पौधों पे फैल सकती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और एक और बीमारी है फल गलन जिसको कहते हैं, या फल सड़न, फ्रूट रॉट। ये जायद और खरीफ में सामान्यतया होता है, ये फाइटोप्तोरा नामक एक फफूंद होती है उसकी वजह से होता है, और हमारे किसान भाइयों बिना जी सबने देखा होगा कि परवल है, लौकी है, पेठा है, खरबूज है, इनमें फल बना और उसके बाद जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि वो फल काला हो जाता है या वो सड़ने लग जाता है नीचे से, और अगर आप देखें जब ये बीमारी अपने प्रकोप में पूरी तरह से होती है तो 3-4 दिन में पूरी फसल को झुलसा देती है, और इसमें जो निशान आते हैं बहुत वैसे निशान नहीं आते हैं फसल के पत्तों के ऊपर, लेकिन कहीं कहीं पे पानी जैसे सोख गया हो वैसा, और हल्की सी गलन ये फल के निचले हिस्से से शुरू होती है, ऐसा ये निशान पहला दिखाई देता है इसकी पहचान करनी हो तो, और ये फल पे ही निशान शुरू दे दिखाई देता है, और अगर आप जल्दी सुबह खेत में जाएं और जो फल हैं उनके ऊपर देखें, तो फलों के ऊपर आपको जहाँ से सड़न शुरू हो रही है वहाँ पे सफ़ेद फफूंदी जैसी दिखाई देगी, सफ़ेद रुई जैसी जमी हुई दिखाई देगी, तो ये इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं जब आप इसको मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो काफ़ी हद तक ये सुधर जाता है, और नियमित जो है फलन वो प्रारंभ हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कौन कौन ऐसा और विधि बा, कृषि कार्य बा या देखभाल बा या फसल चक्र बा, कि ओके अपनावल जा तो फफूंदी जनित रोग का जौन प्रभाव बा बहुत कम हो सकेला और स्वस्थ फल उत्पादन होई।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा था। अभी एक और बीमारी है जो इस समय किसान भाई अपने खेत में देख सकते हैं, एक तो गमी स्टेम ब्लाइट है, खरबूजा में ज़्यादा आती है, अगर आप देखें तो ये जो तना होता है उसमें गोंद जैसा निकलता रहता है, वहीं से फट जाता है, कई बार पौधों में देखने में आया है वो फट जाता है और गोंद जैसा निकल जाता है। लेकिन इसका शुरुआती लक्षण होता है जहाँ से ये जमीन के ऊपर पौधा होता है वहाँ पे पानी जैसा सोख जाता है तने में, ऐसे लगेगा कि इसके अंदर पानी सोख गया है और वो हल्का सा जैसे चारों तरफ तो हरा है ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे हल्का सा ऐसा दिखाई देगा कि हरापन खत्म हो गया है और बाद में वहीं से गोंद जैसा निकलने लग जाता है। तो ये और उसके अगर आप और गौर से देखेंगे तो तने के ऊपर छाल पे काली काली पिकनीडिया दिखाई देती हैं, ये फंगस का स्पोर जो होता है जिससे ये आगे फैलता है उसको पिकनीडिया कहते हैं, वो दिखाई देती है। तो इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से ड्रेंचिंग करें तो उससे ये बीमारी नियंत्रित हो जाती है। एक और बीमारी है जो फफूंद से होती है वो पत्तियों पर धब्बे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा प्रकोप इसका नहीं होता था लेकिन आजकल 2-4 वर्षों से ऐसा देखने में आया है इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है। और ये 2 तरह की फफूंद है, सरकोस्पोरा और अल्टरनेरिया, और लगभग सभी जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उन पे देखे जाते हैं, लेकिन लौकी तोरी और खरबूजा इस पे आजकल ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। गोल धब्बे बनते हैं और बाद में ये बढ़ते जाते हैं और जब फसल पकने की तरफ होती है तब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हल्के भूरे रंग से लेके गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं पत्तियों पर और उनके बीच में एक सफ़ेद निशान होगा। तो ये लीफ स्पॉट है, इसको बैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें और इन सभी बीमारियों में जो भी दवाइयाँ आप छिड़क रहे हैं उनका 5वें 6वें दिन दोबारा ज़रूर स्प्रे करें। और एहतियात के तौर पर किसान भाई, एक तो इनको जो भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं वो मचान पे लगाएं और अगर संभव है तो जमीन में जहां पौधे रोपित करते हैं वहां पे अगर ट्राइकोडर्मा 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जब आप पौधे रोपण करते हैं उस समय खेत में दें। अगर संभव हो सके तो हरी खाद जरूर खेत में बनाएं और खेत में ही उसको पलट दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीज उपचार अवश्य करें और जहां आपने फसल लगाई है वहां पे जल निकास का उचित साधन रखें, उचित ध्यान रखें कि जल निकास होता रहे ताकि पौधों के बीच में अंतरण भी जो उनका होता है दूरी का वो भी ध्यान रखें, पौधे लतर एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा चढ़े नहीं और जिससे कि उसके अंदर जो नमी है वो ज़्यादा नहीं बन पाए। और क्योंकि और दूसरा तीसरा एक और मतलब ये आखिरी एहतियात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ किसान भाई हमारे जो अपने खेत से ही बीज भी रख लेते हैं अगली फसल के लिए, वो जो बीज के लिए फल लें वो स्वस्थ पेड़ से लें। और दूसरा कि कोशिश करें कि जो गर्मी की फसल है जो आप जायद में ले रहे हैं उसी फसल से ही बीज के लिए फल रखें और उसी बीज को फिर आगे अपनी दूसरी फसलों में दूसरे सीजन में उसको इस्तेमाल करें। तो ये मुख्य बातें थी विनय जी, इनका किसान भाई हमारे एहतियात रखें तो बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है और उनको अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है।
1: डॉक्टर पीके सिंह इतना अच्छा जानकारी दी कि कद्दू वर्गीय सब्जियन में फफूंदी जनित रोग का लक्षण का है, पहचान का है और कैसे के बचावल जा सकेला, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हाँ भैया, देखा बातचीत अभी चल रहा है कद्दू वर्गीय सब्जियों में फफूंदी जनित रोग, जानकारी देते हैं डॉक्टर पीके सिंह, इनसे बातचीत करते हैं भैया विनय कुमार। अब आइए ठू गीत सुनल जा, ओकरे बाद अपन बैठ के आगे बढ़िए।

0: पंच
1: भैया
0: भाई।
1: देखा, अपन बातचीत चल रही कह
0: बिल्कुल
1: लो, फसल के
0: बिल्कुल।
1: ध्यान पंच भाई हमेशा रखें। और जैसे कि अपन बातचीत कहल गए भैया, फसल के साथ साथ भैया जौन अपन समय बा, समय के उपयोग हमेशा किसान भाई इनके करे के चाहिए।
0: हाँ
1: और अगर कहीं स्थानीय स्तर पर कोनो कृषि मेला के आयोजन बा, कृषि विभाग या कृषि रक्षा इकाई के, तो वहाँ जाके जौन संबंधित फसल के बारे में बा,
0: बिल्कुल।
1: ओकर पूरहर जानकारी, कैसे कीटनाशक दवा के छिड़काव करें, कैसे बचाव करें, कैसे उनका सुरक्षित कईल जा सकेला। और क्योंकि कोनो भी बढ़िया उत्पादन भैया, जब तक अपने बखारे में सुरक्षित अनाज, स्वस्थ अनाज पहुंचे नहीं, तब
0: पहुंचे ना।
1: तक कुल
0: बिल्कुल
1: उत्पादन बेकार
0: बिल्कुल
1: हो जाला
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भैया। हो बाकी सब बातचीत और चली, हम चाहती कि पंच भाई एठू और गीत सुने।

पंच भाई और किसान भाई यही लोग गीत के साथे अपन बैठकी के समय समाप्त भइल। अब विदा लिहल जाए, चलल जाए। पंचो जय जवान जय किसान।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना, जिसमें पहला नाम है अजय राजभर, पिता का नाम श्री बेचू राजभर। अजय राजभर ग्राम व पोस्ट मेउड़ी कला थाना हलधरपुर जिला मऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 40 वर्ष है। रंग गेहुआ, इकहरा बदन, लंबाई 5 फुट 4 इंच, गोल चेहरा, बाल काला, नाक कान औसत, दोनों हाथ को उठाकर चलते हैं, दिमागी रूप से विक्षिप्त है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें 8 8 0 8 6 7 3 0 9 6। इसी क्रम में अगला नाम है गौरव कुमार, पुत्र मनोज कुमार। गौरव कुमार सरोज ग्राम सरसेना पोस्ट छपरा थाना चिरैया कोट जिला मऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये 16 फरवरी 2026 से शाम 5 बजे से लापता है। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें 9 4 5 4 4 0 3 9 5 9। श्रोताओं, इसी क्रम में अगला नाम है खुशबू, पिता का नाम राजेश। खुशबू की उम्र 20 वर्ष है। लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ। यह ग्राम फतेहपुर पोस्ट फतेहपुर थाना रानीपुर मऊ की रहने वाली हैं। ये 6 मार्च 2026 सुबह 5 बजे से लापता है। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें 9 3 3 6 7 4 0 1 4 5। श्रोताओं, गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज के कलाकार हैं जय नारायण वर्मा व साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।

0: श्रोताओं, इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है। आज के कलाकार थे जय नारायण वर्मा और साथी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम देश अमर। इसमें आइए सुनते हैं कहानी बुना फुआ, उमेश चंद्र शुक्ल से।
1: बुना फुआ मिसुरपुर गांव के बहुते मान जाने वाली रहलिन। केहू उनके हुकुम अदूली करे के हिम्मत नाहीं कह पावत रहल। गांव भर में केहू के घर के सास पतोहू के झगड़ा होए या बूढ़ा बूढ़ी अपने बेटवा से रिसियाए के कहूँ जात होए और केहू घर में भाई भाई के बीच के अलगा बिलगा होए, बुना फुआ के पहुँचले पर हर तरह के मरहला शांत हो जात रहल। सफ़ेद सुच्चा साड़ी पहने वाली एकदम गोरहर शरीर यह बुना फुआ के पहचान रहल। 75 बरस के पुरनिया भैले के बादे भी उ लाठी जैसन सीधी रहलिन। गांव में शादी ब्याह लगन के समय वनके महातम औरे बढ़ जात रहल। नौकी दुल्हन के डोली से परछावन शुभ साहित गीत गौनई पहिल पहलौठी उन्हीं से शुरू होत रहल। मुसल्लम गांव के लोग कौने गोत्र और परवर में बिटिया के ब्याह करब उचित बाय ई सब उह सब लोगन के बतावत रहलिन। बुना फुआ के बारे में बताए देई कि उ जय मंगल मिसिर के इकलौती बिटिया रहलिन। 4 बेटवन के बादे भैले के नाते उ अपने माँ बाप के बड़ी दुलारी रहलिन। जय मंगल मिसिर अंग्रेजन के समय में अपने जवार के जमींदार रहलें। जिला भर के हाकिम हुक्काम महीना में एक दाई उनके घर पर दावत पे बुलावल जात रहलें। यही नाते कोरट कचहरी थाना आदि जगही उनके जाते काम बन जात रहल। बुना फुआ के बाबा मकरत ध्वज मिसिर बड़ा कड़क और खरखर जमींदार रहलें। उनके आदेश बंदूक के गोली जैसन तेज रहल। अपने बचन से टस मस होब उ नाही सीखले रहल। बकिर मकरत ध्वज मिसिर पुरान परंपरा रीत रिवाज शरीरी के साथे वढ़ले रहत रहल। शायद यही बदे उ 12 बरस के इकलौती बिटिया के पांव पूजब मुनासिब समझ के ओकर ब्याह तय कह दहने। बुना फुआ के ब्याह बाहिल पार के पंडित धरिक्षण तिवारी के बड़के लइका से तय हो गईल। पंडित धरिक्षण तिवारी मन के बड़ा फैलहर आदमी रहने। उन्हों अपने जवार के बड़वर धनी रहने। इज्जत बात मान प्रतिष्ठा खातिर 10-5 बीघा खेत बिक जाब उनके लिए गाजर मुरई नाई रहल। धरिक्षण बाबा बरात बहुत धूमधाम गाजा बाजा के साथ लेने। द्वार पूजा में हाथी घोड़ा के लाइन लग गईल। समूचा जवार ई बरात देखे खातिर उमड़ पड़ल। नच देखवा सझवें से लाठी भाला लई के खाभे लगने। धरिक्षण तिवारी के बरात और बहुते कामिल नाच के चर्चा आज भी गांव के पुरनिया लोग करें। कुआर बुना फुआ माथे में चुटकी भर सेनुर पड़ते सुहागिन हो गईनिन। बकिर विधाता के ई गाजा बाजा हाथी घोड़ा के धमा चौकड़ी तनिको भर नीक नाही लगल। विपत्ति के पहाड़ जयमंगल मिश्र के परिवार पर टूट पड़ल। बारात लौट के जब धरिक्षण तिवारी के घर ओरी जाए लगल, तब्बे राही में शराब पी के गाड़ी चलावे वाला ड्राइवर दुल्हा के गाड़ी पेड़े से लड़ाए दहलिस, जौने से दुल्हा सहबाला और नाऊ घटनास्थल पर ही आपन दम तोड़ दहने। ई दुखद सूचना मिश्रपुर गांव में बिजली नाइन पहुँच गई। जयमंगल मिश्र दमादे के सरग सिघरले के अशुभ समाचार सुनते पछाड़ खाई के गिर गई ने। बूना फुआ के ऊपर बज्जर गिर गई, उ बेहोश हो गईन। यखा गांव जयमंगल बाबा के दुआरे पर जमजमाई गई। पुरनिया मखरत ध्वज बाबा वही लागे से खटिया पकड़ लेन। यक्के महीना में बूना फुआ दुबराई के कांटा हो गईन। ई बज्जरपात उन्हें एकदम कमजोर कई दहलिस। साल भर बाद धरिक्षण तिवारी अपने विधवा पतोहू के लई जाए के लिए आईन। बूना फुआ अपने ससुरे जाए के तैयार हो गईन, लेकिन चारों भौजाई भाई बाबा मकरध ध्वज पिता जयमंगल मिश्र उन्हें नाहीं जाए देने। टोला टाटी पौनी प्रजा भी बूना फुआ के नाहीं जाए खातिर चिरौरी कैलिस। खटिया पकड़ लेवे वाले घर के मालिक मकरध ध्वज बाबा के हुकुम पर वही दिन में से गोदाम और तिजोरी के चाभी उन्हें पकड़ाए दिहल गईल। घर के अलावा गांव भर के लोग बूना फुआ के आपन बहिन फुआ माने लगने। दुल्हा दुल्हन पहल पहल उठी उनके गोड़ धई के आपन जिंदगी सुखमय बनावे खातिन आशीर्वाद लेत रहने। गांव जवार के गरीब लैकनी के ब्याहे में सहयोग करब बूना फुआ के जिंदगी के मिशन बन गईल। केहू के अनभल सोचब ईर्खा द्वेष करब उनके स्वभाव में नाहीं रहल। जयमंगल मिश्र के घर में अंदर से बाहर तक बूना फुआ के हुकुम चलत रहल। तीर्थ व्रत पूजा पाठ बूना फुआ के जिनगानी के हिस्सा बन गईल। गांव के मंदिर के शिलान्यास उन्हीं के हाथे से भइल। गांवे के लोग अपने मकाने के पहल की ईंट उन्हीं से रखवावत रहलें। गांव जवार घर परिवार के कौनो मनई कब्भों बूना फुआ के विधवा अभागिन अशुभ स्त्री के रूप में नाहीं देखने। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिने दुपहरिया में बिना कोनो बीमारी के बूना फुआ के प्राण पखेरू उड़ गएल। भौजाई लोगन पछाड़ खाए के गिर गए। चारों भाइन के हाल रोई रोई के बुरा हो गएल। बाप जयमंगल के फालिज मार दहलिस। नैहरे में सगरो जिंदगी बिताए देवे वाली न जानी कितनी बूना फुआ कुल दुख दर्द समेट के पुण्य जमाने में होती रहने।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश हमार। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे कहानी जिसका शीर्षक था बूना फुआ। कहानीकार थे उमेश चंद्र शुक्ल। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत भोजपुरी लोकगीत।

श्रोताओं, प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी में लोकगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 7:20 पर हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सात बजकर 31 मिनट पर होगा कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज के कलाकार हैं मुकेश। रात्रि के 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे हिंदी कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे कविता पाठ राम कृष्ण लाल जगमग से।

रात्रि के 8:15 पर होगा अस्थमा दिवस पर रेडियो रिपोर्ट। आठ बजकर 30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, जिसमें आज के कलाकार होंगे अभिजीत। रात्रि के 10 होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि के 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम की थीम पर आधारित नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 6 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीन पर साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा और एरोस्पेस नीति के माध्यम से निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
1: अपने डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी के माध्यम से हर उस इन्वेस्टर को जो इस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक है, उसे हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेंटिव भी उपलब्ध करवा रहे हैं, पॉलिसी का लाभ दे रहे हैं, लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अलीगढ़ रोड छोटे हथियारों और रक्षा उपकरणों तथा अन्य सैन्य सामग्रियों के निर्माण के रूप में यह केंद्र उभरा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि अब युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन बन चुका है।

0: आज युद्ध सिर्फ जलथल और मत तक सीमित नहीं रहा है, आज यह मल्टी डोमेन ऑपरेशन के युग में प्रवेश कर चुका है। हमने भी गतवर्ष ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी देखा है। आधुनिक युद्ध जल थल और वायु के साथ साथ साइबर स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आदि क्षेत्रों में एक साथ लड़ा जा रहा है। अब कीबोर्ड भी हथियार है। दुश्मन के पावर ग्रिड बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करना या अपने नेटवर्क को अवैध बनाना यह भी एक नई सुरक्षा रेखा बनी है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 11 मई को चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत BEL इकाई के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पहाड़ी स्थित परियोजना स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेडिंग, पिकेटिंग, यातायात प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य आपात सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इससे पहले कल से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा दी जाएगी। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि इन 15 दिनों में लोग अपना पूरा ब्यौरा खुद ही ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर लोगों को अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। जानकारी सबमिट करने पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा, जिसे प्रज्ञक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। मुख्य प्रधान अधिकारी ने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
2: प्रथम फेज हमारा 22 मई से 20 जून के बीच होगा उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले 15 दिन स्वगणना की विंडो सभी लोगों के पास है कि वो खुद पोर्टल पर जाकर अपने सभी प्रश्नों का आंसर रिकॉर्ड कर सके। तो अधिक से अधिक लोग स्वगणना करें, क्योंकि वो बहुत बार ये शिकायत करते हैं कि एन्यूमरेटर ने गलत डेटा रिकॉर्ड कर दिया, और आपकी जो भी स्वगणना आईडी है जब आपका प्रगणक आपके घर आता है उसके साथ साझा करें।
1: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन केंद्रीय कृषि मंत्री अब से कुछ देर में लखनऊ में प्रगतिशील निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रगतिशील निर्यातकों से संवाद में फल निर्यात बढ़ाने, बाजार की चुनौतियों को समझने और बेहतर रणनीति बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे देश के फल कारोबार को मजबूत करने और किसानों को बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में मदद मिलेगी। श्री चौहान कल केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ICAR में राष्ट्रीय फल निर्यात सम्मेलन फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद फल क्षेत्र में नई सोच, नई तकनीक और नए बाजार अवसरों के लिए रास्ते खोलना है। कार्यक्रम के दौरान किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और अन्य संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर फल क्षेत्र को नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और दिनेश प्रताप सिंह समेत कई वरिष्ठ वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देशभर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल नागदा, मथुरा और बुढ़वल सीतापुर के बीच तीसरी तथा चौथी रेल लाइन समेत अन्य रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के प्रस्ताव को भी पारित किया था। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के जनहित से जुड़े फैसलों का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा तिथि बदल दी है। आयोग के अनुसार हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषयों की मुख्य परीक्षा एक ही दिन 11 जुलाई को होगी। ये परीक्षाएं पहले अलग अलग तिथियों में होनी थी। इसी तरह से प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 भी अब 7 जून की जगह 14 जून को होगी। राज्य सरकार ने आम नागरिकों को राहत देते हुए खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। राजस्व विभाग की इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद खतौनी की नकल विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद जनपद, तहसील और गाँव की जानकारी भरकर संबंधित गाटा संख्या चुननी होगी। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते ही खतौनी की प्रमाणित प्रति तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी। प्रदेश भर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में महोबा में आज जिला जज रामनगीना यादव ने न्यायालय परिसर से जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मेरठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह ने बताया कि लोक अदालत में लंबित मामलों को निस्तारित करने की कोशिश की जाएगी।
4: ऐसे मामले भी हम खत्म कराना चाहते हैं जिससे कि समझौता करके उसे खत्म कराया जाए, जिससे लोगों के खर्च कम हो। और हम इसका लोक अदालत का उद्देश्य भी सस्ता और सुलभ न्याय है, जिससे लोगों को आसानी से न्याय मिल सके।
1: आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। मैच से पूर्व आज दोनों टीमों ने मैदान में जमकर पसीना बहाया। मुकाबले को देखते हुए कल दोपहर 3 बजे से मैच की समाप्ति तक स्टेडियम के आसपास यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा, प्रदेश के 6 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हो रहे हैं साकार। प्रदेश में कल से शुरू होगी स्वगणना की सुविधा। जनगणना के प्रथम चरण, मकान गणना से पहले 15 दिन खुद भर सकेंगे अपना डेटा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। राष्ट्रीय फल निर्यात सम्मेलन फ्रूट होराइजन 2026 को कल करेंगे संबोधित। और खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया हुई डिजिटल। राजस्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर मिलेगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 7।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज के कलाकार हैं मुकेश।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था यहूदी फिल्म से। इस गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। इस गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे सफ़र फिल्म से। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का था और शब्द लिखे थे इंद्रवीर ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंके, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
3: इसके शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: जज्जा

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे संगम फिल्म से। गीत के बोल थे शैलेंद्र के, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और आज आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज के कलाकार थे मुकेश। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत कविता पाठ, रामकृष्ण लाल जगमग।
1: कुछ मुक्तक प्रस्तुत है। दर्द हृदय में भर जाते हैं, दर्द हृदय में भर जाते हैं, मन को आहत कर जाते हैं। दर्द हृदय में भर जाते हैं, मन को आहत कर जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं। दर्द हृदय में भर जाते हैं, मन को आहत कर जाते हैं। दर्द हृदय में भर जाते हैं, मन को आहत कर जाते हैं। कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं। एक मुक्तक देखें कि खुद अपनी पहचान बनो, खुद अपनी पहचान बनो, मानवता की शान बनो। खुद अपनी पहचान बनो, मानवता की शान बनो, और कवि बनने से पहले जगमग एक नेक इंसान बनो। कवि बनने से पहले जगमग एक नेक इंसान बनो। खुद अपनी पहचान बनो, मानवता की शान बनो, कवि बनने से पहले जगमग एक नेक इंसान बनो। और एक मुक्तक है देखें कि गीत मिले संगीत मिले, गीत मिले संगीत मिले, काश किसी की प्रीत मिले। गीत मिले संगीत मिले, काश किसी की प्रीत मिले। भटक रहा हूं इसी खोज में, कोई मन का मीत मिले। भटक रहा हूं इसी खोज में, कोई मन का मीत मिले। और एक मुक्तक आप देखें कि मैं हूं खुला इतिहास, कोई राज नहीं हूं। मैं हूं खुला इतिहास, कोई राज नहीं हूं। स्वाभिमानी हूं मगर सरताज नहीं हूं। मैं हूं खुला इतिहास, कोई राज नहीं हूं। स्वाभिमानी हूं मगर सरताज नहीं हूं। जो कुछ भी मिला है मुझे मेहनत से मिला है, जो कुछ भी मिला है मुझे मेहनत से मिला है। मैं किसी की कृपा का मोहताज नहीं हूं, मैं किसी की कृपा का मोहताज नहीं हूं। मैं हूं खुला इतिहास, कोई राज नहीं हूं। स्वाभिमानी हूं मगर सरताज नहीं हूं। जो कुछ भी मिला है मुझे मेहनत से मिला है। मैं किसी की कृपा का मोहताज नहीं हूं। और एक मुक्तक देखें आप कि डाल पर कोई लटकता रह गया, डाल पर कोई लटकता रह गया, कोई अपना सर पटकता रह गया। डाल पर कोई लटकता रह गया, कोई अपना सर पटकता रह गया। कोई क्षण भर में ही मंजिल पा गया, कोई क्षण भर में ही मंजिल पा गया। कोई जीवन भर भटकता रह गया, कोई जीवन भर भटकता रह गया। डाल पर कोई लटकता रह गया, कोई अपना सर पटकता रह गया। कोई क्षण भर में ही मंजिल पा गया, और कोई जीवन भर भटकता रह गया। और एक मुक्तक देखें कि क्या बताऊं मैं हृदय की वेदना, क्या बताऊं मैं हृदय की वेदना। शेष रह गया है शेष क्या क्या देखना, क्या बताऊं मैं हृदय की वेदना। रह गया है शेष क्या क्या देखना, रह गया है शेष क्या क्या देखना। गिर गया है आदमी अब इस कदर, गिर गया है आदमी अब इस कदर। आदमी की मर गई संवेदना, आदमी की मर गई संवेदना। क्या बताऊं मैं हृदय की वेदना, रह गया है शेष क्या क्या देखना। गिर गया है आदमी अब इस कदर कि आदमी की मर गई संवेदना। और एक मुक्तक प्रस्तुत है कि देखिए दौलत के पीछे मर रहे हैं, देखिए दौलत के पीछे मर रहे हैं, देखिए दौलत के पीछे मर रहे हैं, अब नहीं भगवान को भी डर रहे हैं। देखिए दौलत के पीछे मर रहे हैं, अब नहीं भगवान को भी डर रहे हैं। दोस्तों कैसा जमाना आ गया, दोस्तों कैसा जमाना आ गया। बाप से बेटे बगावत कर रहे हैं, बाप से बेटे बगावत कर रहे हैं। देखिए दौलत के पीछे मर रहे हैं, अब नहीं भगवान को भी डर रहे हैं। दोस्तों कैसा जमाना आ गया कि बाप से बेटे बगावत कर रहे हैं। और एक मुक्तक देखा कि कितनी तीव्र वेदना सहती, कितनी तीव्र वेदना सहती मगर किसी से कुछ ना कहती, कितनी तीव्र वेदना सहती मगर किसी से कुछ ना कहती। और बेटे घर पर मौज उड़ाते, माँ वृद्धा आश्रम में रहती। बेटे घर पर मौज उड़ाते, माँ वृद्धा आश्रम में रहती। कितनी तीव्र वेदना सहती मगर किसी से कुछ ना कहती। बेटे घर पर मौज उड़ाते, माँ वृद्धा आश्रम में रहती। और एक मुक्तक समर्पित है कि सुर नर मुनि हर्षाए हैं, सुर नर मुनि हर्षाए हैं, नेह सुधा वर्षाए हैं। सुर नर मुनि हर्षाए हैं, नेह सुधा वर्षाए हैं, खुशियों की बरसात हो रही, खुशियों की बरसात हो रही, राम पुनः घर आए हैं। खुशियों की बरसात हो रही, राम पुनः घर आए हैं। सुर नर मुनि हर्षाए हैं, नेह सुधा बरसाए हैं, खुशियों की बरसात हो रही, राम पुनः घर आए हैं। और एक मुक्तक देखें कि कंटक मत को सुगम बनाओ, कंटक पथ को सुगम बनाओ, अंतर मन का कलुष मिटाओ। कंटक पथ को सुगम बनाओ, अंतर मन का कलुष मिटाओ, जीवन हो जाए आलोकित, राम नाम का दीप जलाओ। जीवन हो जाए आलोकित, राम नाम का दीप जलाओ। और एक मुक्तक आप देख रहे हैं कि अहंकार में गुब्बारे सा फूल गए, अहंकार में गुब्बारे सा फूल गए, भौतिकता की बाहों में हम झूल गए। अहंकार में गुब्बारे सा फूल गए, भौतिकता की बाहों में हम झूल गए। इस स्तर पर मूल्यों में आ गई गिरावट, इस स्तर पर मूल्यों में आ गई गिरावट, हम अपने आदर्शों को ही भूल गए, हम अपने आदर्शों को ही भूल गए। अहंकार में गुब्बारे सा फूल गए, भौतिकता की बाहों में हम झूल गए। इस स्तर पर मूल्यों में आ गई गिरावट, हम अपने आदर्शों को ही भूल गए, हम अपने आदर्शों को ही भूल गए। और एक मुक्तक देखें कि प्रेम नगर में आओ बाबू,

0: प्रेम नगर में आओ बाबू, प्रेम नगर में आओ बाबू, गीत प्यार का गाओ बाबू। प्रेम नगर में आओ बाबू, गीत प्यार का गाओ बाबू, सात जन्म तक रंग न छूटे ऐसा रंग लगाओ बाबू। सात जन्म तक रंग न छूटे ऐसा रंग लगाओ बाबू। प्रेम नगर में आओ बाबू, नेह प्यार के गाओ बाबू, सात जन्म तक रंग न छूटे ऐसा रंग लगाओ बाबू। और एक मुक्तक देखें कि हर पल गीत प्रेम के गाया, हर गल हर पल गीत प्रेम के गाया, नहीं किसी का हृदय दुखाया। हर पल गीत प्रेम के गाया, नहीं किसी का हृदय दुखाया। कौन करे अब लेखा जोखा, कौन करे अब लेखा जोखा, जीवन में क्या खोया पाया। कौन करे अब लेखा जोखा, जीवन में क्या खोया पाया। हर पल गीत प्रेम के गाया, नहीं किसी का हृदय दुखाया। कौन करे अब लेखा जोखा, जीवन में क्या खोया पाया, जीवन में क्या खोया पाया। और एक रचना प्रस्तुत है कि हम जीने का हुनर सिखाते, हम जीने का हुनर सिखाते, दुख के क्षण में भी मुस्काते। हम जीने का हुनर सिखाते, दुख के क्षण में भी मुस्काते। उन रिश्ते नातों को तौबा, जो मौके पर काम नहीं आते। उन रिश्तों नातों को तौबा, जो मौके पर काम नहीं आते। और प्यार मोहब्बत के बल पर हम पत्थर को भी मोम बनाते, प्यार मोहब्बत के बल पर हम पत्थर को भी मोम बनाते। हम जीने का हुनर सिखाते, दुख के क्षण में भी मुस्काते। उन रिश्तों नातों को तौबा, जो मौके पर काम नहीं आते। और प्यार मोहब्बत के बल पर हम पत्थर को भी मोम बनाते। नफरत की बस्ती में जाकर गीत मोहब्बत के हैं गाते, नफरत की बस्ती में जाकर गीत मोहब्बत के हैं गाते। हम श्रद्धा से शीश झुकाते, हम श्रद्धा से शीश झुकाते, उनके शव पर फूल चढ़ाते। हम श्रद्धा से शीश झुकाते, उनके शव पर फूल चढ़ाते, उनके शव पर फूल चढ़ाते। जो सीमा पर लड़ते लड़ते हंसत अपना प्राण गंवाते, जो सीमा पर लड़ते लड़ते हंसत अपना प्राण गंवाते। हम सीमा पर, जो सीमा पर लड़ते लड़ते हंसत अपना प्राण गंवाते। वंदनीय नभके वो बादल, वंदनीय नभके वो बादल, जो धरती की प्यास बुझाते। वंदनीय नभके वो बादल, जो धरती की प्यास बुझाते। सफल वही होते जीवन में, सफल वही होते जीवन में, तूफानों से जो टकराते। सफल वही होते जीवन में, तूफानों से जो टकराते। और नींद चैन की आती उनको, नींद चैन की आती उनको, जो मेहनत की रोटी खाते। नींद चैन की आती उनको, जो मेहनत की रोटी खाते। और करते हैं जो घोर परिश्रम, वही एक दिन मंजिल पाते। जो करते हैं घोर परिश्रम, वही एक दिन मंजिल पाते, वही एक दिन मंजिल पाते।
1: श्रोताओं, हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ रामकृष्ण लाल जगमग से। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के
1: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
2: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
1: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
2: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट अस्थमा दिवस पर।
7: मैं शफकत अली खान। गत दिनों गोरखपुर नगर में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अस्थमा जागरूकता रैली, अस्थमा पर क्विज और सेमिनार का आयोजन किया गया। अस्थमा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के विषय बताते हुए श्री अनुप सिंह।
8: विश्व अस्थमा दिवस है। विश्व अस्थमा दिवस जो है साल के मई मंथ के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसमें जो है मरीजों को जागरूकता फैलाई जाती है अस्थमा के बारे में, कि अस्थमा क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचाव किया जाए, और इसके संबंध में जो है एक क्विज जो है डॉक्टर साहब की तरफ से की गई है। क्विज में मरीजों को जो है प्रश्न और उत्तर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसमें मरीज जो है आराम से एक ही प्रश्न को पढ़ के और टिक लगा सकता है। प्रश्न बहुत ही आसान और जागरूकता अस्थमा के बारे में, जागरूकता के संबंध में है, जैसे अस्थमा के लक्षण क्या है। तो उस प्रश्न का चार ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे सांस फूलना, खांसी आना, बार बार कोई एलर्जी होना या सभी, तो इसमें मरीज जो भी उनको समझ में आता है वो अपने हिसाब से उसमें ऑब्जेक्टिव का उत्तर लगाएंगे। अस्थमा के बचाव क्या है, अस्थमा के बचाव में जैसे उत्तर दिया गया है कि अपना इन्हेलर सही तरीके से लें, दूसरा मौसमी बदलाव में अपने को बचाएं, तीसरा जैसे दिया गया है कि एलर्जन या धूल जैसे जगहों से बचें या सभी, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न दिए गए जिससे मरीज जागरूक हो पाए अस्थमा के बारे में।
7: जी, जब रैली आप निकाले तो क्या पब्लिक इससे अवेयर हो रही थी, ध्यान दे रही थी कि अस्थमा क्या है?
8: जी, हमारे जितनी भी पब्लिक थी वो सुन रही थी और पढ़ रही थी हमारे बैनर्स को, डॉक्टर साहब भी साथ में थे, तो हर चीज़ों को साथ में जितने भी जनता थी उन्होंने ध्यान से पढ़ा और कुछ ने पूछा भी।
7: इस अवसर पर डॉक्टर नदीम अरशद ने हमें बताया कि
9: अस्थमा ये फेफड़े की बीमारी है, इसमें जो सांस की नलियां होती है उसमें सूजन और सिकुड़न आ जाती है, जिसके वजह से मरीज आराम से सांस नहीं ले पाता। सांस ना जाने से साथ में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, और आगे चल के अगर ऑक्सीजन की कमी बढ़ गई तो मरीज भर्ती भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। अस्थमा जो है ये एक सांस का मर्ज है, इसमें सांस की नली में सूजन और सिकुड़न आ जाती है। सूजन के वजह से जो उसमें जो सांस की नली है और सिकुड़न की वजह से उसका जो अपर्चर है, जो होल है, वो पतला हो जाता है, जिससे पूरी तरह से आदमी सांस नहीं ले सकता, और उसको इसी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट परेशानी होती है कि मरीज कहता है हमको सांस फूलती है, या मरीज कहता है हमको खांसी आती है। सांस फूलने के साथ खांसी जो होती है अक्सर रात में या भोर में होती है, क्योंकि उस वक्त जो कि टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है तो सूजन और सिकुड़न बहुत बढ़ जाती है। पूरे विश्व में पहले ट्यूसडे ऑफ द मंथ ऑफ मे, यानी मई के पहले ट्यूसडे को पूरे विश्व में वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इसका डे फिक्स है, जब भी मंगल होगा पहला मंगल मई का हर साल मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि अस्थमा के बारे में पब्लिक को अवेयरनेस पैदा करना, जागरूकता पैदा करना, अस्थमा क्या है, कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स या लक्षण हैं, और कैसे इसको इसका ट्रीट किया जा सकता, कैसे इसको बचाव हो सकता है। जहाँ तक इसके सिम्टम की बात है, मैंने बताया कि जो अस्थमा मेनली जो होता है सांस की नली में सूजन और सिकुड़न होता है, ये दो कारणों से होता है। ज़्यादातर तो ये हेरिडिटरी होता है, जिसको कहते हैं एलर्जिक अस्थमा, कुछ केसेस में नॉन एलर्जिक भी होता है। इसमें होता क्या है, जो सांस की नली में सूजन और सिकुड़न आने का जो उसमें कुछ वजह होती है, जिसको कहते हैं ट्रिगर फैक्टर, जिससे मौसम चेंज हुआ, चेंज ऑफ सीजन में, एक तो जो पॉलेंस हैं पौधे से निकलते हैं वो जाते हैं सांस की नली में, उसको सूजन पैदा करते हैं। दूसरा जो पॉल्यूशन है, अगर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो ये ट्रिगर फैक्टर्स है। जो लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, जिसको कहते हैं बायोमास फ्यूल, उससे भी सांस का मर्ज बढ़ जाता है। स्मोक जो करते हैं, सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ या पान हुआ, तो जिससे हवा में उसकी जो वो जो डस्ट है वो उड़ते हैं, जो चाहे वो पॉल्यूशन की डस्ट हो, चाहे घर बन रहा हो वो डस्ट हो, चाहे बायोमास फ्यूल से जो धुआं निकल रहा है वो है, या चाहे स्मोक कर रहा हो, चाहे तंबाकू ले रहा है, चाहे चूल्हा जला रहा है, या मौसम में चेंज है, प्राकार बढ़ गए हैं, पॉलेंस बढ़ गए हैं, ये सब ट्रिगर फैक्टर्स हैं। ये सांस के नॉर्मल मरीज को ये अटैक को बढ़ाता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिगर। ट्रिगरिंग माने अटैक को स्टार्ट करना, शुरुआत करना। अटैक में होता क्या है, जब सांस का मरीज अटैक पे आता है तो उसको सांस बहुत फूलती है, और उसको सीने में दर्द होता है, उसको खांसी आती है, खांसी अक्सर रात में या सुबह भोर में आती है, और कभी कभी उसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से मरीज की को एडमिशन की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, और इससे अगर ऑक्सीजन नहीं दी गई वक्त पर तो मरीज को रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ हो सकती है। अस्थमा हर उम्र में होता है, अडल्ट में, बच्चों में, लेकिन अक्सर देखा गया है जो 6 साल से 11 साल है वो बच्चों में ज़्यादा होता है। नॉर्मली अगर अस्थमा 3-4%, 6% है तो बच्चों में 15% या 20% अस्थमा पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 300 मिलियन के आसपास जो है अस्थमा के मरीज रहते हैं, और इसमें हर साल करीब करीब 4,50,000 की पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में इसके डेथ हो जाती है। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में करीब करीब 13%, यानी समझ लीजिए कि 32 मिलियन के हिसाब से अगर 300 मिलियन है तो 32 मिलियन जो है इंडिया में पाए जाते हैं, और डेथ का सवाल है तो करीब करीब 42% जो डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में, उसके आधे से कम, यानी 1/3 से ज़्यादा डेथ पूरे भारत में भी होती है। इतना खतरनाक है। अब इसको कैसे बचाव किया जाए, तो अस्थमा के हमने सिम्टम बता दिए कि ये इसके लक्षण हैं, और सांस का फूलना, सीने में दर्द होना, खांसी आना और ऑक्सीजन कम हो जाना, तो ये इसके लक्षण हैं। इसको चूँकि इसमें दो प्रॉब्लम होता है, सांस की नली में सूजन आता है और सिकुड़न हो जाती है, तो सूजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सूजन को कम करने की, सूजन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेमेशन, तो सबसे कारगर दवा जो इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है। क्योंकि अस्थमा लॉन्ग टर्म बीमारी है, इसको अगर आप टैबलेट इंजेक्शन जो कि गांव में अभी भी चलता है उसको दे गए तो उसके साइड इफेक्ट होंगे, तो साइड इफेक्ट ना हो रेगुलर दवा को लेना है। इसलिए इस दवा सांस के मरीजों में दवाओं को इनहेलेशन फॉर्म में देते हैं, यानी सूंघ के देते हैं। उससे दो फायदा होता है, एक तो उसमें जो दवा की अमाउंट है वो बहुत कम होती है, तो जारी बात है। दूसरे, चूंकि ये डायरेक्ट फेफड़े में दी जाती है, तो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है। जो चीज़ बहुत कम एब्जॉर्ब होगी ब्लड में तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो ब्रांकोडायलेटर यानी शुक्लन को चौड़ी करने दवा देते हैं। तो जो विश्व एस्मा दिवस जो मनाया जाता है वो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्मा जीना, और ये हर साल एक थीम के साथ देती बनाया जाता है। इस साल का थीम है एक्सेस द एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर टू एवरीवन विद एस्मा, इट्स ए अर्जेंट नीड। यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर सब मरीजों को जिसको दमा या अस्थमा है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी माने सूजन को कम करना, और चूंकि साथ में शुक्लन भी होती है इसलिए हम लोग टू इन वन इनहेलर देते हैं, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक ब्रांकोडायलेटर। एंटी इन्फ्लेमेटरी को कहते हैं कंट्रोलर और ब्रांकोडायलेटर कहते हैं रिलीवर, यानी इमीडिएट सांस की नली चौड़ी होगी थोड़ा सा आराम मिल गया। तो हमने ये बताया कि सांस की नली में सूजन और शुक्लन होती है, शुक्लन दूर करने के लिए सांस की नली को चौड़ी करने वाली दवाएं देती जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांकोडायलेटर, यानी ब्रांकाई माने सांस की नली, डायलेट माने चौड़ी करना, और दूसरी जो इन्फ्लेमेशन जिसमें सूजन हम कहते हैं उसमें जो दवा कारगर है उसको कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। सबसे इम्पॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा जो पूरे विश्व में अवेलेबल है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो दोनों दवा इनहेलेशन फॉर्म में देते हैं, इसलिए हमने कहा टू इन वन।
10: क्या गवर्नमेंट तरफ से क्या इस पे टैक्स माफ वगैरह कुछ है?
9: गवर्नमेंट तरफ से टैक्स तो नहीं माफ है, लेकिन कुछ इनहेलेशन थेरेपी जो डीपीसीओ में दे दिए उसके दाम कम है उसको हम लोग देते हैं। इसीलिए जीना ने कहा है कि हर एक आदमी जिसको पूरे विश्व में पूरे दुनिया में दबा हो उसको इनहेलेशन थेरेपी अवेलेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए, यानी कास्ट चूंकि महंगी है तो अवेलेबल भी हो पूरे दुनिया के लोगों को और अफोर्डेबल भी हो, यानी अफोर्ड भी कर सके, मिले भी और सस्ते दाम से मिले जिससे मरीज अफोर्ड कर सके।
10: जी डॉक्टर, जिस सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है ये दवाएं?
9: हर जगह उपलब्ध
10: है,
9: प्राइवेट अस्पताल में भी उपलब्ध है और गवर्नमेंट अस्पताल में उपलब्ध है, सब जहाँ उपलब्ध है। लेकिन कभी कभी दवाओं को अक्सर मरीज को खरीदना पड़ता है, इसलिए दवाएं अभी भी बहुत महंगी हैं और सबके पहुंच से बाहर है। इसीलिए लोग पुराने जमाने का जो इलाज है टैबलेट और वो सीरप, वो ये इंजेक्शन ये सांस के मरीज में देते हैं जो कि इसको नहीं देना चाहिए। ये सीधे दवाएं ब्लड में जाती हैं, फेफड़े में कम काम करती हैं और इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। चूँकि ये महंगी होती है इसलिए भी देखा गया है कि अभी भी हिंदुस्तान में 60% लोग 40% लोग ही इनहेलेशन थेरेपी ले पाते हैं, 60% नहीं ले पाते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में जो लो इनकम कंट्री है उसमें एस्मा की डेथ 96% है दवा न लेने से।
10: जी डॉक्टर साहब, आपको रोकने थोड़ा, ये जैसे आम पब्लिक में ये धारणा बनी ओपिनियन है कि जब इंजेक्शन लेंगे या टैबलेट लेंगे तभी दवा सूट करेगी, ये इस पर क्या कहना चाहेंगे?
9: नहीं नहीं, ये आप जो कह रहे हैं वो इनहेलेशन थेरेपी के बारे में एक मिथ है कि साहब ये आखिरी दवा है सूखने वाली और इसको लेने से आदत पड़ जाती है, ये बिल्कुल गलत है। इनहेलेशन थेरेपी जो है डायरेक्ट फेफड़े में काम करती है, इसमें दवा की खुराक बहुत कम होती है, ये ब्लड में दही के बराबर अब्सॉर्ब होती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। बनिस्बत वो दवा जो पूरे पहले दी जाती थी जानकारी ना होने की वजह से, टैबलेट इंजेक्शन सीरप, ये दवाएं डायरेक्ट फेफड़े में ना जा करके ब्लड में जाती हैं, अमाउंट भी ज़्यादा होता है, ब्लड में अब्सॉर्ब होती हैं और इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं।
10: जी डॉक्टर, इस मौके पर आप आकाशवाणी गोरखपुर के सामीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
9: सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सांस के मरीज हैं, जैसे आपको चलने में सांस फूलती है या खांसी आती है, बलगम आता है, तो आप जाकर के सांस के डॉक्टर को दिखाएं, और बहुत सिंपल टेस्ट है सांस का मर्ज है कि नहीं है, बहुत सिंपल टेस्ट है, इसको हम लोग कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट, यानी कि स्पायरोमीट्री, ये फूक करके जांच होती है, 2 मिनट में पता लग जाता है, 5 मिनट का टेस्ट है कि आपका सांस का मर्ज है कि नहीं है, सांस की नली में सूजन और शुक्लन है कि नहीं है। अगर स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट कराने से पता लग जाता है तो आप रेगुलर जो दवा हम लोग बताते हैं वो इनहेलेशन थेरेपी वाली दवा ही कारगर है, उसको रेगुलर लें, और साथ साथ इसको बचाव के लिए टीका भी आ गया है जो हम लोग सांस के मरीजों को देते हैं। जब साथ साथ दवा भी देते हैं और जब मरीज काफ़ी हद तक ठीक होने लगता है तो दवा को भी कम कर देते हैं, इनहेलेशन थेरेपी और साथ में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अक्सर देखा गया कि सांस के मरीज में इन्फ्लुएंजा बहुत होता है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हर साल देते हैं हम लोग, साल में एक बार अप्रैल मई जून यही महीना है जो WHO ने रिकमेंड किया है, हर सांस के मरीजों को अप्रैल मई जून में सांस का इन्फ्लुएंजा का टीका साल में एक बार जरूर लगाएं। साल में एक बार लगाने से ये फायदा होता है कि सांस का मर्ज पढ़ेगा नहीं और एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरीज ठीक रहेगा।
7: इस अवसर पर हाटा कुशीनगर से आए हुए अस्थमा के मरीज के जिम्मेदार श्री निमतुल्ला खान ने हमें बताया कि
11: जी तो आपके वालिद साहब को क्या प्रॉब्लम होती है?
12: अस्थमा की परेशानी है।
11: तो इसमें किस तरह की दिक्कत होती है?
12: सांस का फूलना, खांसी का आना, सीना जकड़ जाना, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस लगती है फूलने।
11: तो इसकी शुरुआत कितने दिनों से है? ये
12: लगभग हमको लग रहा है ये 10 साल से ज्यादा हो गया।
11: तो इस बीमारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
12: बहुत खराब ही बीमारी है। हम चाहेंगे कि जो भी प्रिकॉशन हो ले, कम से कम परेशानी लोगों को हो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हो जाते हैं बड़ी परेशानी दिक्कत होती है उनको, तो उसकी दवा भी कराएं टाइम से और उसका परहेज जो भी हो डॉक्टर साहब बताएं उसका प्रिकॉशन लें और डॉक्टर साहब के हिसाब से चले हों।
11: जी विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा था, इसे आप क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए?
12: मैं चाहूँगा कि लोग और इसको जागरूक करें, जिससे लोग जानें कि अस्थमा क्यों होता है, इसमें किस तरह की दिक्कत होती है और जिस तरह से गांवों में देहातों में ज़्यादा पेशेंट पाए जाते हैं, कारण उसका है कि लकड़ी पे खाना बनाना, प्रदूषण का होना, तो इन सबों की जानकारी अगर जनता को दी जाएगी, लोगों को दी जाएगी तो लोग उसका बचाव करेंगे और इससे भी बहुत कम होगा। जब खांसी आने लगती हैं एकदम सांस टंग जाता है
11: तो उस वक्त आप लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं?
12: जो भी डॉक्टर साहब बताए रहते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो ये इन्हेलर है वो खींचने वाली सांस, तो वो बताते हैं कि अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो ये वाली तो उस हिसाब से डॉक्टर साहब के हिसाब से अपना करते हैं।
7: इसी के साथ ही रेडियो रिपोर्ट का ये अंक समाप्त होता है। वाचन व संकलन शफकत अली खान का था।
6: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आस्था दिवस पर अस्थमा दिवस पर रेडियो रिपोर्ट। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम जिसमें आज के कलाकार हैं अभिजीत।

0: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
2: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
1: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभिजीत को। इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब होंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा

0: ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई, जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
1: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
2: सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। सीबीआई ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सीबीआई ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
3: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका

0: चर्चा का विषय है।
1: समय की धारा में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भूगोल की सीमाओं से नहीं बल्कि विश्वास, संघर्ष और साझा सपनों से तय होते हैं। भारत और वियतनाम, दो देश, दो संस्कृतियां, लेकिन एक समान धड़कन, स्वतंत्रता, संप्रभुता और शांति की। इतिहास गवाह है कि जब दो सभ्यताएं बुद्ध के शांति संदेश और साझी विरासत से जुड़ी हों, तो उनकी दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती है। आज भारत और वियतनाम के संबंध कुछ इसी मोड़ पर हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं और ये यात्रा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि जज्बाती और रणनीतिक भी है। 1972 में स्थापित कूटनीतिक संबंध और 2016 में बनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आज 2026 में ये एक नए पड़ाव पर खड़ी है। राष्ट्रपति तो लम की बोध गया कि पवित्र धरती से शुरू हुई ये यात्रा अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई इबारत लिख रही है। रक्षा सौदों से लेकर सेमीकंडक्टर तक और चंपा सभ्यता के मंदिरों के संरक्षण से लेकर डिजिटल पेमेंट की जुगलबंदी तक, आज हम वियतनाम के साथ एक ऐसा भविष्य बुन रहे हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि का आधार बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज का हमारा विषय है भारत और वियतनाम के मजबूत संबंध। हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत आसियान के गुरजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: गुरजीत जी। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो भारत और वियतनाम के रिश्ते हैं, इनका बहुत समृद्ध इतिहास है, लेकिन राष्ट्रपति तो लम ने अपनी यात्रा की शुरुआत जो बोध गया से की, कूटनीतिक नजरिए से इस सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक जुड़ाव के क्या मायने हैं?
2: जैसे आप जानते हैं कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है और प्रेसिडेंट तो लम उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसलिए जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अपना विजिट एक सांस्कृतिक जगह से शुरू करते हैं
1: जी,
2: तो थोड़ा अचंबा होता है, लेकिन यही दिखाता है कि वियतनाम भी कितना बदल गया है। पिछले 2 साल में जब भारत से गौतम बुद्ध की कुछ रिलिक्स वहां भेजे गए थे, तो जो पॉपुलैरिटी उनको वहां मिली वो देखने लायक थी। तो मेरे ख्याल अब वियतनाम के लीडर्स को भी ये पता चल गया है कि उनके देश में अभी तक बुद्धिज्म का प्रभाव काफी है, इसलिए जब बुद्धिज्म के जन्म स्थान भारत में आओ तो वहां पर ये बात जरूर करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां से शुरू किया और अगर आप जो अग्रीमेंट्स हुई हैं वो देखें, उसमें भी बुद्धिज्म के ऊपर नालंदा से और अक्सर कई और जगह से संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है।
1: जी बिल्कुल। भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया और अब लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC पर बात हो रही है। वियतनाम के लिए भारत एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में कैसे उभर रहा है? थोड़े हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में इसे आप बता पाए।
2: जो आसियान के देश है वो अक्सर भारत को चीन के मुकाबले में एक बैलेंसिंग देश की तरह देखते हैं। वियतनाम उन देशों में से है जिसकी चीन के साथ एक रंजिश रहती है, खासकर क्योंकि जब से चीन ने जो कई टापू होते हैं उनको अपने घेरे में ले लिया और वहां जहां पर वियतनाम की लोग थे या कोई ऑयल ड्रिलिंग थी या कोई सेना की टुकड़ी थी उनको भगा भेजा, जैसे वो अब फिलीपींस के साथ कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये वियतनाम के साथ भी किया। तो वियतनाम की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना है उसमें भारत एक अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत वियतनाम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके बाद 10 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और तब से ये जो सुरक्षा के संबंध हैं वो आगे बढ़े। 2023 में शायद एक इंडियो वियतनाम डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया। तो ये एक स्तंभ है भारत और वियतनाम के रिश्तों का जो बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जिससे उन्होंने भारत से छोटे पेट्रोल क्राफ्ट लिए भारत ने INS कृपाल उनको भेंट में दिया और भारत अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कई सालों से चली हुई बातचीत जो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर है वो कब निर्णय दौर तक पहुंचेगी।
1: प्रोफेसर मिश्रा, वियतनाम ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बन रहा है। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं?
0: देखिए, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वियतनाम ये चाहता है कि 2045 तक, और इस साल उनके दो इमो रिफॉर्म्स के 40 साल पूरे हो रहे हैं, जो एक व्यापक पैमाने पे आर्थिक रिफॉर्मेशन जो वियतनाम में हुआ 1986 से उसका नतीजा है। तो अब वियतनाम चाहता है कि वो आर्थिक विकास के सेकंड स्टेज में पहुंचे और एक विकसित देश बने 2045 तक। इसको मद्देनजर रखते हुए वियतनाम की अपनी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम की जो नीतियां हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भारत से मेल खाती हैं। भारत और वियतनाम की आकांक्षाएं इन तमाम क्षेत्रों में मेल खाती हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम दोनों साझा प्रयास कर सकते हैं कि भारत और वियतनाम दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करें और दोनों ही देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में रीजनल हब्स बने, अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही साथ सोलर और बैटरीज का प्रोडक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें लिथियम बैटरीज का बड़ा योगदान है, निकल की उसमें बहुत ज़रूरत है, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार हो सकता है। आसियान के बाकी देश भी हैं जिनके साथ भारत सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, इसमें सिंगापुर भी है और मलेशिया भी है। पूर्वी एशिया के देशों को हम देखें तो उसमें ताइवान भी आता है, जापान और साउथ कोरिया हैं जो बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। तो वियतनाम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें भारत के साथ काम कर सकता है, चिप्स के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में भारत के साथ काम कर सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी

0: टेक्निकल नो हाउ है, हमारे पास वो चिप्स बनाने की क्षमताएं तो हैं, लेकिन हमें वो रिसोर्सेज के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी हैं उनके लिए जो रिसोर्स चाहिए, उनके लिए जो माल और मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर भारत और वियतनाम मिलकर काम करते हैं तो शायद इन क्षेत्रों में ये कमी पूरी की जा सकती है, जहाँ भारत की तकनीकी क्षमता और वियतनाम एक बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं लेकिन उनका मिनरल जो रिसोर्सेज हैं और मिनरल जो कैपेसिटीज हैं उनका हम फायदा उठा सकते हैं और दोनों देशों का इसमें लाभ होगा।
1: आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले समय में भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट यानी आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर सहमति भी बनाई जा रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: हमने भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस सुनिश्चित करेंगे।
1: गुरजीत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट जो आईटीका है इसको अपडेट करने की बात चल रही है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि इससे दोनों देशों के बीच जो पहल है वो किस स्तर पर जाएगी, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ भी है और एनर्जी सहयोग पर भी चर्चा हो रही है।
3: आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ये 2009 में शुरू हुई थी और 2019 से इसका रिव्यू होना था, लेकिन आसियान के देशों ने उसका रिव्यू काफी डिले किया और ये रिव्यू जाके 2023 में फाइनली शुरू हुआ और उम्मीद ये थी कि एक या दो साल में हो जाएगा, हम तो चाहते थे कुछ महीने में हो जाए, लेकिन आसियान ने बोला 2025। आप देखिए 2025 तो निकल गया और हम 2026 के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वो रिव्यू कंप्लीट नहीं है। अब इस रिव्यू में अगर आप देखें तो वियतनाम जैसे देश जो भारत के इकोनॉमिक पार्टनर हैं उनको एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए कि ये अग्रीमेंट जल्दी हो, लेकिन मेरे को लगता है कि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों के अलावा जो बाकी भारत के पार्टनर्स हैं, खासकर इंडोनेशिया और वियतनाम जो बड़े पार्टनर, उनमें कोई दिलचस्पी कमजोर नजर आती है, तो वो डॉक्यूमेंट में तो डाल देते हैं कि हाँ इसे जल्दी होना चाहिए, लेकिन जब बातचीत होती है उस समय पीछे हट जाते हैं। सब जगह स्टेटमेंट में यही आता है कि वियतनाम भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है आसियान, लेकिन अगर आप देखें जो 16 बिलियन डॉलर की ट्रेड है वो वियतनाम को पांचवें स्थान में रखती है आसियान के अंदर। भारत का आसियान का जो ट्रेड है 120 बिलियन डॉलर है, उसका 10% से थोड़ा ऊपर वियतनाम का है, सबसे बड़ा इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड और मलेशिया, तो वियतनाम तो बीच में आता है और वियतनाम अब कह रहा है कि हम अगले 4 साल में इसको शायद 30 बिलियन डॉलर तक ले जाए, हो सकता है। लेकिन जो ये ट्रेड बढ़ रही है इसमें वियतनाम की एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रही हैं, भारत की एक्सपोर्ट्स कम बढ़ रही हैं, तो इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। अब वियतनाम की दिलचस्पी आईटीका में तब बढ़ेगी जब वो समझता है कि उसके एक्सपोर्ट भारत की मार्केट में ज्यादा आ सके, लेकिन वो जो अपनी मार्केट एक्सेस देना चाहिए इंडोनेशिया और वियतनाम उन देशों में से हैं जो अपनी मार्केट एक्सेस भारत के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए जो वियतनाम है ना उसका जीडीपी पर कैपिटा भारत से दुगना है, तो वो कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्री नहीं है कि जैसे कि म्यांमार हो या कैम्बोडिया हो, तो उसका भी दर्जा आगे बढ़ चुका है और उसके देखिए क्या एफटीएज है यूरोप के साथ और जापान के साथ और अब वो सीपीटीपीपी में भी शामिल है, तो वियतनाम एफटीए से डरता नहीं, वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको हमेशा दिलचस्पी वही होती है कि बड़ी मार्केट्स में मेरे को मार्केट एक्सेस, और जापानीज और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल एरिया में काफी मजबूत है और उससे वो और देशों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। भारत से वो क्या चाहता है? भारत से वो चाहता है पहले बफलो मीट जाता था, दवाइयां जाती हैं, अब उसको चावल की जरूरत पड़ती है। पहले तो चावल अपने आप काफी मंगा, चावल की जरूरत पड़ती है, कुछ और खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है। सो डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए आसियान देशों के लिए भारत महत्वपूर्ण है और वियतनाम के लिए भी।
1: जी बिल्कुल, प्रोफेसर मिश्रा आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार अब $16 बिलियन को पार कर गया है और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो $25 बिलियन का है। ऐसे में आईटीका की समीक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है?
0: देखिए, भारत और वियतनाम के जो व्यापार संबंध है उनमें द्विपक्षीय जो आयाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम के व्यापार संबंध पहले से ही, जब ये इंडिया आसियान FTA नहीं साइन हुआ था उसके पहले से ही काफ़ी मजबूत थे। उसकी अपनी सीमाएं जरूर थी, उसकी अपनी लिमिटेशंस जरूर थी, लेकिन ये इवन कील पे चल रहा था, एक अलग पायदान पे चल रहा था। भारत आसियान FTA का जहां तक सवाल है, ये भारत और आसियान के 10 देशों के साथ व्यापार संबंधों का एक प्लेटफॉर्म है, तो उस लिहाज से तमाम जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस आईटीगा से या भारत आसियान FTA से बहुत फायदा उठा रहे हैं और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। वियतनाम उन देशों में नहीं है जिसके साथ भारत को इस व्यापार समझौते में दिक्कत है। समीक्षा होनी चाहिए उन क्षेत्रों में जहां भारत इन आसियान के देशों से इम्पोर्ट तो कर रहा है लेकिन उसे एक्सपोर्ट करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, पर्याप्त अवसर नहीं मिल। वियतनाम के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, आज ही जो 13 MOU साइन हुए हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि क्रिटिकल मिनरल्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो या EV व्हीकल्स हो, वियतनाम EV व्हीकल्स में बहुत एडवांस लेवल पे है। और अगर भारत चाहता है कि चीन के साथ हमारे EV व्हीकल्स को लेकर के एग्रीमेंट्स में जो समस्याएं आ रही हैं उसको कोई देश रिप्लेस करे तो वियतनाम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो मुझे लगता है आईटीगा के संदर्भ में भारत की चिंताएं दूसरे देशों से ज़्यादा हैं बनस्पत वियतनाम के, और उन देशों में वो देश आते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत को ऐसे मौके नहीं दे रहे हैं जिससे भारत का व्यापार बढ़े। सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें तमाम देश, सिंगापुर को और मलेशिया को छोड़ दीजिए तो तमाम देश सर्विसेज सेक्टर में भारत को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, और ये वो जिसमें फिलीपींस आता है, एक बड़े पैमाने पर एक देश आता है। एग्रीकल्चर फिशरीज एक्सपोर्ट्स में भारत आसियान क्षेत्र में जगह बनाना चाहता है। सर्विसेज सेक्टर जैसा कि मैंने कहा उस क्षेत्र में भी समस्याएं हैं, तो आईटीगा का जो री एवेल्युएशन होता है उसमें इन चिंताओं को दूर किया जाएगा। और भारत सरकार ने भी कहा है कि आईटीगा का जो फिर से मूल्यांकन होगा उसमें हम उन समस्याओं को रेखांकित करेंगे। आसियान एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म के तौर पे उस समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। वियतनाम के साथ संबंध आगे बढ़ाते हुए हम इस काम को कर सकते हैं, आसियान के साथ इन चिंताओं को आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश के साथ।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस विषय पर, और प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आज किन किन समझौते पर भारत और वियतनाम के बीच हस्ताक्षर हुए।
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुँच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच MOU से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के ड्रियन और पोमेलो का।
1: आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की भी बात उन्होंने कही कि बहुत जल्द ये जोड़ने की चर्चा चल रही है। आप कैसे देखते हैं कि इससे दोनों देशों के पर्यटन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे लाभ होगा?
0: पिछले 5 सालों में भारत से जो आउटबाउंड टूरिस्ट है, भारतीय सैलानी जो वियतनाम जाते हैं, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जब एक भारतीय सैलानी वियतनाम जैसे देश में जाता है जहां उसे चीज़ों को समझने में और अपनी ख़रीदारी करने में, होटल्स में जाने में, जब उसे अपना UPI सिस्टम और अपना जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है वो दिखता है तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक हिस्सा है, एक छोटे पैमाने पे जहाँ कंज्यूमर कस्टमर को की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इससे मुझे लगता है दोनों देशों के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, वियतनाम की तरफ से भी, क्योंकि वियतनाम की करेंसी को अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तो बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन भारतीय रुपये के मुकाबले भी काफ़ी वो कमज़ोर है। तो जब वियतनामी एक टूरिस्ट भारत आता है और खास तौर पे बुद्ध गया जैसे जो हमारे बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं वहाँ जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना बहुत आसान होगा और इससे इन सैलानियों को भी ये समझ आएगा कि भारत में यात्रा करना काफ़ी आसान हो गया है और उनके लिए इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है काफ़ी सुगम होगा और काफ़ी आसान होगा उनके लिए भारत में यात्रा करना या भारतीयों के लिए वियतनाम यात्रा करना।
1: और आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे।
1: गुरजीत जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी अभी जिक्र कर रहे थे कि चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मंदिरों के संरक्षण के प्रयासों में भारत सहयोग देगा। आप भारत की विरासत और विकास की नीति को कैसे देखते हैं?
3: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप वियतनाम की जो चंपा सिविलाइजेशन है उसके पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएं, खासकर माइसौन के ऊपर एक अग्रीमेंट भी इस बार ही साइन किया गया डिजिटाइजेशन। अब माइसौन में शिव की जो मूर्तियां हैं और शिव के मंदिर हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वहां देखा जाता है कि भारत का प्राचीन जो एक इन्फ्लुएंस था वो कहां चंपा तक पहुंच गया। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए भारत का सहयोग बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे लिए वो केवल सहयोग नहीं, हमारी तो विरासत है
1: जी।
3: और हम वियतनाम के साथ उसको साझा करना चाहते। यही अब आप सांस्कृतिक प्रक्रियाएं अभी नए इस दौर में देखें तो आप देखेंगे जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो बहुत बढ़ गया। सबसे ज्यादा तो देखिए कि जो वियतनाम की एयरलाइंस हैं, वियतजेट फॉर वियतनाम एयरलाइंस, वो भारत बहुत आ रही है और उसके बाद भारत की एयरलाइन ने वहां जाना शुरू कर दिया डायरेक्ट। अब यहां से हर हफ्ते 90 फ्लाइट्स भारत के शहरों से वियतनाम के शहरों में जाती है और ये सब बड़े शहरों में से ना शुरू होती है ना खत्म होती है। वियतनाम के छोटे शहरों में भारत के टियर टू शहरों में जाते हैं। आजकल आम हिंदुस्तानी वियतनाम की छोटी छोटी जगहों का नाम जानता है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां हो आए। तो पिछले साल तकरीबन 1 मिलियन टूरिस्ट भारत से वियतनाम गए। वियतनाम से यहाँ इतने को ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, इसलिए बुद्धिस्ट सर्किट को उचित रूप से आगे बढ़ाना अभी हमारा काम है। लेकिन ये वहां से भारत की ओर आने वाले जो लोग हैं वो केवल टूरिज्म के लिए नहीं आए। तो आज की जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण रोल है, वो बढ़ाएगा पीपल टू पीपल करे और बिजनेस बढ़ाएगा। तो ये दो चीजें अगर आगे बढ़े तो मेरे को लगता है कि हमारी जो विरासत है उसका नया रूप भी आगे आएगा और वो वहां से आकर हमारी विरासत देख पाएंगे और हमारे लोग जाकर वहां पर चंपा की विरासत देख पाएंगे और देखेंगे उसमें भारत का कितना इन्फ्लुएंस।
1: प्रोफेसर मिश्रा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं या फिर विजन सागर की बात करते हैं तो वियतनाम भारत के लिए कितना अनिवार्य है?
0: बहुत सालों पहले जब भारत की लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति नहीं आई थी तब भी भारत वियतनाम के साथ ऐसे ही मजबूती से खड़ा था जैसे आज है। जब उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में संघर्ष हो रहा था तब भारत ने होचिमिन का साथ दिया। होचिमिन 1959 में भारत आए और तब से लेके 1972 में जब वियतनाम का एकीकरण हुआ तब से भारत वियतनाम के साथ है। 1979 में भूतपूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी चीन की यात्रा बीच में रद्द करके इसलिए चले आए क्योंकि चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। ये सब एक्ट ईस्ट नीति से पहले ही हुआ था। तो भारत और वियतनाम की जो दोस्ती है वो मुझे लगता है कि आसियान के कॉन्टेक्स्ट में या एक्ट ईस्ट नीति के कॉन्टेक्स्ट में एक सेंट्रल पिलर है जिसमें भरोसा सिर्फ इस बात का नहीं है कि दोनों देशों का फायदा हो रहा है, भरोसा इन दोनों देशों के बीच में, जनता के बीच में है, नेताओं के बीच में है, पॉलिसी मेकर्स के बीच में है। और ये जो डीप ट्रस्ट है दोनों देशों के लोगों के बीच में, इनके पॉलिसी मेकर्स के बीच में, ये मुझे लगता है कि वियतनाम को एक्ट ईस्ट का सेंटर बनाता है। और भारत की जो सागर नीति थी अभी महासागर में परिवर्तित हो चुकी है उसको हम देखें या इंडो पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव देखें या एक्ट ईस्ट को ही देखें जिसमें सामरिक तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे हुए, 2026 में पूरे हो रहे हैं, और अब हमने इसे एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया, जिसमें रक्षा का मामला हो या सामुद्रिक सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक विकास हो या पर्यटन शिक्षा क्षेत्र हो या न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में वियतनाम के साथ भारत साथ काम करना चाहता है।

मिलकर काम करना चाहता है और इस न सिर्फ इन द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है बल्कि साथ ही वो चाहता है कि वियतनाम की भी आसियान क्षेत्र में वियतनाम भारत के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद देश के तौर पे स्थापित रहे और इससे दूसरे देश भी सबक लें। जैसे भारत की रक्षा क्षेत्र में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इस बार भी हमने 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड

0: लाइन है या दक्षिण पूर्व सागर में उसकी जो आक्रामक नीतियां हैं उससे निपटने के लिए भी वियतनाम को एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो रक्षा के एक्सपोर्ट में उससे फायदा ना उठाए। सो प्रॉफिट मेकिंग भारत की विदेश नीति में या भारत के रक्षा एक्सपोर्ट में नहीं है। वियतनाम इसको समझता है, इसको अप्रिशिएट करता है और इसलिए भारत और वियतनाम के संबंधों में इतना ज्यादा ट्रस्ट लेवल है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप रक्षा क्षेत्र की बात करें, दोनों देश सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसे विनबैक्स के नाम से जाना जाता है, इसके थोड़े प्रभाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: दोनों ही देशों के बीच में तमाम मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, नेवी के बीच में हो रही है, एयरफोर्स के बीच में हो रही है। बीते दिनों में जंगल वॉरफेयर के क्षेत्र में दोनों देशों ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की। ये जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं उसके कई उद्देश्य होते हैं जिसमें चार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस कि आप जिस सागर में, जो हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट आपको वियतनाम से जोड़ता है, उस क्षेत्र को समझना, जिसको हम कहते हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस करना, पहला उसका एस्पेक्ट है। दूसरा है थ्रेट अवेयरनेस कि हम दोनों देशों के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में, दूसरे देशों से कोई हमें सामरिक चिंताएं हैं या मैरिटाइम पायरेसी है या गन रनिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नार्कोटिक्स है, इन तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों की साझा चिंताएं क्या हैं, उनको हम दूर करें। और तीसरी चीज़ है इन तमाम चिंताओं से निपटने के लिए हम इंटरऑपरेबिलिटी की ओर आगे बढ़ें। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम दोनों ही देश ये जो कॉमन चैलेंजेस, ये जो साझा खतरे और चिंताएं हैं, उनको साथ मिलकर के कैसे, कंधे से कंधा मिला के हम कैसे इन चिंताओं को दूर करें, तो ये प्रमुख तौर पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन साथ में ये भी होता है कि दोनों ही देशों की आर्म फोर्सेस, नेवी हो या एयरफोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी हो, ये तमाम जो भारत और वियतनाम की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे को समझें कि इस तरह के आगे आने वाले समय में कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि भारत और वियतनाम को साथ मिलकर कोई युद्ध लड़ना हो या इस तरह की टेरेन में जाना हो, तो उनके लिए ये एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस ना हो। तो डोमेन अवेयरनेस जरूरी है, टेरेन अवेयरनेस जरूरी है और साथ में इंटरऑपरेबिलिटी जरूरी है कि दोनों देश मिल करके कैसे एक साझा चिंता या चैलेंज या खतरे को से कैसे निपट सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आने वाले समय में कई क्षेत्रों में भारत और वियतनाम आगे बढ़ने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे।
1: प्रोफेसर मिश्रा, युवा, तकनीक और स्किल डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये तीन मजबूत स्तंभ हो सकते हैं भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों के बीच? चूंकि आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें शिक्षा भी एक है।
0: जी बिल्कुल, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को हर जगह कहते हैं, दूसरे हमारे तमाम मित्र देशों के साथ जो भी हाल के दिनों में समझौते हुए हैं उसमें युवाओं को लेकर के हमेशा एक स्पेसिफिक फोकस रहा है, क्योंकि भारत की आधी जनता ये युवा वर्ग है और जिसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की। तो युवाओं को कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको कैसे रीस्किल किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के और शिक्षा संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकें और उन्हें वापस आकर भारत के विकास में कैसे अपना योगदान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर मित्र देश के साथ MOU में ये शिक्षा का क्षेत्र या स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र दिखता है। नई जो तकनीक आ रही है ये युवाओं पर ही निर्भर है कि नई तकनीक को सीखा जाए, उसको विकास में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकलकेट किया जाए, उसको विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कैसे जो नई स्किल्स को सीखा गया है उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उसको कैसे भारत के आर्थिक विकास में और आर्थिक प्रगति में कैसे उसको जोड़ा जाए, तो ये हमेशा से ही मुझे लगता है कि एक प्रमुख फोकस का मुद्दा रहा है और इसीलिए ये MOUs में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है।
1: गुरजीत जी, आपसे बहुत संक्षेप में ये समझना चाहेंगे कि भारत वियतनाम संबंधों को अगले एक दशक में आप कहां देखते हैं?
3: मैं समझता हूं भारत वियतनाम के जो संबंध है उनको चीन का प्रिज्म से हटा देना चाहिए। ना हमको समझना चाहिए कि वो चीन से कभी लड़ने को तैयार होंगे, वो नहीं होंगे, और ना उनको समझना चाहिए हम चीन के अगेंस्ट बैलेंसर हैं। इसको अगर हमने हटा दिया तो फिर बराबरी के हिसाब से अगर देखें तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है। भारत की तकरीबन $1 बिलियन का निवेश है वियतनाम में,

0: वियतनाम का निवेश आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, अभी तो तकरीबन 60 मिलियन तक पहुंचा है, लेकिन उनके पास नई आधुनिक टेक्नोलॉजीज है और उससे वो समझ लीजिए आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आजकल वियतनाम से भी इंडिया में बन रही है और बिक रही है। तो हमें ऐसी चीजों, हाई इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ, इन चीजों से मिलकर एक सप्लाई चेन बनानी चाहिए। हमारा फायदा है अगर हम आईटीगा के अंडर एक सप्लाई चेन बना ले वियतनाम के साथ, तो जो वियतनाम के इतने सारे एफटीज हैं उनका साझा करके भारत की कंपनियों को भी बहुत फायदा हो सकता है। मैं ये समझता हूँ हमारे आगे का दौर होना चाहिए।
1: गुरजीत जी, प्रोफेसर राहुल मिश्रा आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: भारत और वियतनाम, ये रिश्ता सिर्फ समझौतों और आंकड़ों का नहीं है, ये भरोसे, सम्मान और साझा मूल्यों का रिश्ता है। बोध गया की शांति से लेकर इंडो पैसिफिक की रणनीतिक गहराइयों तक दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है, तब भारत और वियतनाम एक स्थिर, संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी का उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। राष्ट्रपति तो लम की ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसे भविष्य की, जहां सहयोग, विकास और सुरक्षा तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा कहती है, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और दोनों मिलकर अंधकार को दूर करते हैं। भारत और वियतनाम के बारे में यही कहा जा सकता है, दो राष्ट्र, एक साझा रोशनी। ये कार्यक्रम आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
3: चर्चा का विषय है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न,
4: जिसे मुकेश ने अपनी आवाज दी है, इंदिवर साहब की कलम से निकले इस गाने की धुन बनाई है कल्याण जी, आनंद जी ने।

0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे शराबी फिल्म से। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आइए सुनते हैं अमर प्रेम फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे अमर प्रेम फिल्म से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जो हमने लिया है हाथी मेरे साथी फिल्म का।

0: कोई हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

खेल खेल में फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इसमें आइए सुनते हैं राग पात विहाग पंडित उल्लास कशालकर से।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग पात विहाग पंडित उल्लास कशालकर का गायन। अब आइए सुनते हैं राग चंद्रकांस पंडित शिवानंद पाटिल का गायन।

श्रोताओं, पंडित शिवानंद पाटिल के इसी गायन के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब होंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. The Prime Minister said, to keep the shared heritage alive, India is restoring the My Son and Nan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization. President Tho Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India, as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. Briefing the media after bilateral talks between Prime Minister Modi and the Vietnamese President, Secretary East in the Ministry of External Affairs P. Kumaran said both countries agreed to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. Acknowledging the advancements made by the Indian pharmaceutical industry, the two sides agreed to explore ways for the potential participation of Indian companies in the procurement of medicines for Vietnamese public healthcare facilities from 2027. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bova in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jaishankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations today will further deepen and diversify India-Suriname ties. In his statement to the press after the Joint Commission meeting, Dr. Jaishankar said the talks also touched on global multilateral issues. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. TVK has approached other parties also, as it is short of the majority mark by 11 seats. Vijay, who contested from two constituencies, will have to vacate one seat. Meanwhile, Congress, having five MLAs, took the decision to support the TVK and met Vijay and offered the letter of support today. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports, preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. The government has debunked an image circulating on social media claiming that Union Home Minister Amit Shah has said that West Bengal will become a dry state from September 30. The fact-check unit of the Press Information Bureau informed that the image is fake and digitally edited. PIB has further stated that no such announcement or statement has been made by the Home Minister. The Ministry of Health and Family Welfare has highlighted a remarkable case of multi-organ donation at Command Hospital, Chandi Mandir in Haryana, where the family of a brainstem dead woman saved four lives through organ donation. The Health Ministry said that the 41-year-old woman, wife of a serving Indian Army colonel, was declared brainstem dead on the 2nd of May following a severe brain hemorrhage. In a courageous decision amid personal grief, her husband and two daughters consented to donate her organs, including the heart, kidneys, liver and pancreas, enabling life-saving transplants for four critically ill patients, including a 14-year-old boy. India's young boxers have ensured 27 medals in the Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent, Uzbekistan. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Punjab Kings by 33 runs at Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad tonight. Put into bat first, Sunrisers Hyderabad posted 235 for 4 in stipulated 20 overs with the help of Henrik Claassen's 69 runs off 43 balls and Ishan Kishan's 55 off 32. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये प्रसारण सभा। कल प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।